पहला सुचया पुए सुचै बिठाया।

पंडू हो दोस्ती पंडू चल रहा हो पंड पालिए पंड हो बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान पंडू ही पंडू पजै पंडे बाज ना कोय नानक पंडे बारे को सच्चा सोए जेत मुक्ष दासा लाइए भागा रची चार नानक ते मुख उजले तित

0: सवारी है
1: पौड़िया पे ही करना की उगलिया पे ही तारी है देखा कि अपना दर्द चिपकी सारी है जो ऐसो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है।

जिन पेट मेरा पूरा सतगुरु नाम राम राजे जिसकी तृष्णा पुख

ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਐਸਾ।

0: एक विदा तप से जो पाइए नान सक्रमात सर कुठे जो मिले महला
1: दूसरा सुन जाए
0: नानक से वो कंडी है वैसे तिख सम समाए पड़े नानक राजा पड़े राते पारावार अपराय साक्षी आए मार एक नगली जीरिया एक तुरी सैर बिस्यार

बौड़ी नान के दिन जतनी हता के परवार आप क्रय शक्ति फिर आप क्रय मार एक नकली जजीरिया की तुरी चढ़ाप से आप क्रय करे आप हों का शुक्री पुकार नानक करना जिनकिया फिर ते से ही करनी सा।

0: जिनको नजर करे महला दूजा।
1: आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप सृजन तो पाए कहा नानका सक्षाते आप सब किसे आते।

0: सो करे जित सर जाए सुध।
1: मेरी मत बोरी

ਹਜ ਨਾਲ ਕਿਨ ਬਹੁ ਗਏ।

हे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज से तैखा सवाए तवा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ए डीडी फ्री डिश ते बुधी सकंदा आयो। प्रोग्राम शुरू थी चुको है, डिटेल्स कुछ न तरह थोड़ी देर में अवा भगत कंवरराम साहब जन जे मिठड़े आवाज में कलाम बुधंदा, तंखा पोए वन महाउत्सव ते एक नंढी तकरीर पेश कंदी, ए पोए प्रोग्राम में कुछ हब वतनी गीत पेश कया वेंदा। इहा ते असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कंवरराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

0: अवां भगत करण साहब जन जे सदाबार आवाज़ में कलाम दी रहा ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए हिंसर पेश आए नंढी तकरीर उनवान है वन महोत्सव।
1: वन महोत्सव हर साल भारत में जुलाई के पहले हफ्ते दौरान मल्हायो वेंदो आहे। इहो वण पोखण वारो हिकु उत्सव आहे जेको जंगलनि खे बचाइण ऐं वणनि जी अहमियत बाबति शौर वधाइण ते ध्यानु ॾींदो आहे। इहो प्रोग्राम साल 1950 में शुरू थियो, तंहिंखे वॾी समत ते वणनि जे पोख खे हथी ॾियण लाइ क़दमु आंदो वेंदो आहे। इन प्रोग्राम जो मक़सदु आहे माहौलियाती तवाज़न, हयातियाती तनाउ खे बहितर बणाइण ऐं आबोहवा जी तब्दीली खे रोकणु। वन महोत्सव जो मतिलबु आहे वणनि जो मेलो, जेको उमीद ऐं अमल जी रोशनी तौर उभरे थो। 1950 में उन वक़्त जे ज़रई ऐं खुराक वारे मर्कज़ी वज़ीर श्री के एम मुंशी पारां शुरू कयो वियो। हिकु सालियानो वण लॻाइण वारो उत्सव आहे जेको 1 जुलाई खां 17 जुलाई ताईं पूरे भारत में मल्हायो वेंदो आहे। इन प्रोग्राम दौरान सॼे मुल्क में वणनि जे पोख लाइ मुहिम हलाई वेंदी आहे। भारत में पहिरियों क़ौमी वण लॻाइण वारो हफ़्तो 20 जुलाई खां 27 जुलाई 1947 ताईं हलायो वियो, जंहिं जो बंदोबस्त भारतीय इतिहासकार, सिविल सर्वेंट ऐं नबातात जे माहिर श्री एम एस रंधवा कयो। 20 जुलाई 1947 ते पहिरियों प्रोग्राम सुबुह जो दिल्ली जे कमिश्नर श्री खुर्शीद अहमद खान पारां बोहिना जे वण जे पोख सां शुरू थियो। मंझंदि जो बियो प्रोग्राम पुराणे किले ते अबोरी हुकूमत जे नायब सदर श्री जवाहरलाल नेहरू जी अॻवाणी में थियो। हिकु ॾींहुं लेडीज ॾींहुं तौर मल्हायो वियो, जंहिं दौरान कुतुब मीनार इलाइक़े में वण लॻाया विया, जंहिं में लेडी माउंट बेटन पिण शामिल हुई। इहा रवायत बरक़रार रही ऐं 1950 में खुराक ऐं ज़राइत जे वज़ीर श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इन खे क़ौमी सरगर्मी बणायो। तॾहिं खां वठी करे इन खे जुलाई जे पहिरें हफ़्ते में मुंतकिल कयो वियो ऐं इन जो नालो वन महोत्सव रखियो वियो। छो जो भारत में बरसात जी मौसम जुलाई जे महीने खां शुरू थिए थी, जेको वण जे पोख लाइ बहितरीन वक़्तु सम्झो वेंदो आहे। हिन वक़्तु पोखियल वण जे बचण जा इम्कान तमामु घणा जजा हूंदा आहिनि। वन महोत्सव लॻाइण जा मुख्य मक़सद आहिनि माण्हुनि में वणनि बाबति ॼाण वधाइण ऐं इन सां मुहबत पैदा करणु, ॿियो मिटी जी हिफ़ाज़त ऐं इन जे कटाई खे घटिताई खे रोकणु, ॿियो आहे ॻोठनि फार्मनि म्यूनिसिपल ऐं अवामी ज़मीन ते वण जी पोख खे मक़बूल बणाइण जमालियाती माशी ऐं हिफ़ाज़ती ज़रूरतनि लाइ, चोथों आहे ॿारनि जी फ़राहमी त जीअं इन सां गोबर खे बहाण तौर इस्तेमालु करे सघिजे, पंजो आहे मेवनि जी पैदावार वधाइण ऐं मुल्क जे खुराक जे वसीलनि में इज़ाफ़ो आणणु, छो आहे ज़रई ज़मीन जे चौधारी वाह जे रोक लाइ वणनि जे कतार जी तकलीफ़, सतों चौपाए माल जे चरण जे पतनि जी फरहमी जीअं महफ़ूज़ ॿेलनि ते चरण जो दॿा घटिजी वञे, ऐं ॿियो आहे मंज़रनामे लाइ छांव ॾींदड़ ऐं सिंगारियल वणनि जी फरहमी, ज़रई औज़ारनि घरनि जी तामीर ऐं लोड़ो ॾियण लाइ काठनि थमनि जी फरहमी। वन महोत्सव जश्न जे हिसे तौर 1950 खां पोइ पूरे मुल्क में ॿेला बचाइण जे लाइ वण लॻाइण जी मुहिम शुरू कई वई, त जीअं ख़तम थींदड़ ॿेलनि खे रोकियो वञे ऐं वॾे पैमाने ते वणनि जे कटाई सबबि माहौल खे थींदड़ नुक़सान खे घटि कयो वञे। शहरनि जी ख़ूबसूरती ऐं शहरी तरक़ीअ जे मुक़ाबले में वणनि खे वॾी रुकावट सम्झियो वियो। रोडनि, फ्लाईओवरनि, इश्तिहारी बोर्डनि ऐं ॿियनि शहरी ज़रूरतुनि जे लाइ वाट में ईंदड़ वणनि खे हटायो वियो, जंहिंजे करे वणनि जी घटिताई सबबि मौसम में पिण तब्दीलियूं अची रहियूं आहिनि। वणनि जी पोख हिकु अलामती अमल आहे जेको ॿेलनि में वधंदड़ हर शइ लाइ असांजे अक़ीदत जो इज़हार आहे। मरहूम श्री ए के मुंशी चयो त वण माना पाणी, पाणी कणक ऐं मानी पैदा करे थो ऐं मानी ज़िंदगी ॾिए थी ऐं इन खे क़ाइमु रखे थी। वणनि ऐं ॿेलनि खां सवाइ भॻवान इंद्र जा बादल असां ते महिरबानी न थींदा। पाणी खां सवाइ न दरिया थींदा ऐं न बरसाती ॿेला, ऐं बिना ॿेलनि जे, बिना वणनि जे हिन धरती ते इंसानी ज़िंदगी जो वजूद नामुमकिन आहे। 18वीं सदी जे ब्रितानवी शायर क्रिस्टोफर स्मार्ट हिकु बैत लिखियो। हुन लिखियो त वण ॿूटा, गुल ऐं दुआऊं गॾिजी असांजी ज़िंदगीअ खे ख़ूबसूरत, बामक़सद ऐं फ़ाइदेमंद बणाए रहिया आहिनि।

बूटा ए नेक जड़ वारा गुल कीमती गुल मेवो डींदड़ हवा की उदासी से शुक्रगुजार सजे के मालामाल कन। ये दुनिया जेका हुन ठाई शानदार रोशनी आराम डींदड़ छाव वादियों मैदान बाग ए टकरियों जिते राजदारी खुशी से रहे थी ए दानाई पंजो फसल लिकाए थी। हेड़ा सजा कदीम आगाटा वेद सिखारन ता प्रार्थना करो ए मालिक मुखे अड़ा ऊंचा जबल अता कर जेके नदियों ए मेवेदार वणन से भरपूर झंगलन के जन्म दियन अमन भरे हुए बूटन ए बेलन में खुदा की हुकुमरानी नदी ते भी पर उमन हुए भगवान ब्रह्मा भी पर अमन हुए तो सजी दुनिया में अमन हुए ए अमन हर रूप में जाहिर थे। वन महोत्सव के मौके ते वण लगायण धरती के हिफाजत लाए एक जश्न मल्हायण जो बेहतरीन तरीको है। वण आबादी की तब्दीली के असर के घटता कन छो जो यही माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड जजब करे ऑक्सीजन ता पैदा कन। वण जडे फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड जजब करे इनके पेंजे काठ पनन ए पाड़न में महफूज था कन जैसा ग्रीन हाउस गैसेज जो इफेक्ट तमाम घट तो थे। एक वण सालनो 22 किलोग्राम तई कार्बन डाइऑक्साइड जजब कन्दो आए। वण बेशुमार जीवत के नस्ल लाए रहायश फराहम कन था ए गोर शोर के घट करण में पिण मददगार ता साबित थन एन अनुसार जे तो वण दिसण में तमाम सुहणा आया। कार्बन डाइऑक्साइड जजब करण के अलावा वण बया केतरा ही माहौलियाती फायदा था मैसर करें जी त हवा के मायार के बेहतर बनाण जीवत लाय रहायश मैसर करें मिट्टी के कटाई के घट कर। वण पोखण जा फायदा ये भी हैं तो हयातियाती तनाव में वाधारो साय कवर में इजाफो इंसान जंगली जीवत के तकरार में घटताई गोठाणन लाय रोजगार जा मौका ए जंगली जीवत के रहायश में सुधारो। वण पखियन जानवरन जीतन ए बेन जीवत के रहायश पैदा था करें। वण लगायण से नवन रहायशन की तकलीक थे थी हयातियाती तनाव के सहारो तो मिले कुदरती माहौल में वक्त गुजारण से दबाव घट तो थे ए मिजाज बेहतर तो थे। वण लगायण से नवा सवा इलाका बर्पा था थियन जिते मानू फितरत में लुत्फ अंदाज ता थी सकन। वणन जो समाज से पवंदड़ असर है कि वणन की पोख समाजी ए कम्युनिटी सतह से घणा थी फायदा दे। वण लगायण की कम्युनिटी सर्विस माण्डन के वेझो थी आने ए समाजी लागापन के वधाए थी। वण लगायण की तकरीब में शिरकत करण से कम्युनिटी लाय फखर ए मालिकी जो अहसास थो थे। वणन की पोख माहौल बाबत सीखण जो मौको थी मैसर करें ए वणन की अहमियत बाबत जान थी वधाए। वण लगायण ए इन तजुर्बे के बेन से वंडन से तवा बेन के भी माहौल लाय कदम खण लाय हिमथाए था सको जेको समाज ए दुनिया में मुस्बत तब्दीली आने सके तो। अवा वन महोत्सव ते एक नंडी तकरीर बुधरिया ये आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: हींअर पेश आहिनि हुबवतनी गीत।

0: तवां देशभक्ति गीत ॿुधी रहिया ये आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांगन में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा

0: इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रूपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमरीका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमरीका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ 11810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोता, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। आज के गीतों भरे सफर में मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट सिद्धार्थ के साथ आज मैं हूँ नवीन सक्सेना। तो अगले आधे घंटे का सफर खूबसूरत गीतों के साथ और हम दोनों के साथ, और उम्मीद है ये आज आपका दिन बेहद शानदार बना देगा। बिल्कुल, तथा श्रोताओं के साथ गुड मॉर्निंग नवीन, जब हम दोनों हैं तो अंदाज भी गुड मॉर्निंग का कुछ इस तरह से होना चाहिए। बच्चे ये नहीं चल रहा।

राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा

जिन ये संदेश लेकर पूरब से आता है, जिन ये संदेश लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिल के खाता है, हंसे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके, ओहो।

0: यहाँ यही संदेश आता है कि हमें अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करनी है। और अगर नवीन हम बात करें तो बावर्ची फिल्म का ये गीत अपने आप में इतना मोटिवेशन देता है, इतनी प्रेरणा देता है कि पूरे जीवन का सार इस गीत में कहीं ना कहीं मुझे छुपा लगता है। और अगर दिन की शुरुआत कुछ हम ऐसी करें, कहते हैं कि वेर बिगिनिंग इज हाफ डन, जब आप शुरू अच्छा करते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है। तो क्या कहेंगे नवीन आप इस बात पर?
1: सुबह की शुरुआत अगर इतने खूबसूरत गीत और इतने अच्छे विचारों के साथ होना सिद्धार्थ, तो चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान।

0: रखी जाती है। एंड आई बिलीव कि अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है ना, तो कम से कम आप दिन में दो दोस्त तो जरूर बना लेंगे, और हाँ, और जो आपसे रूठे हुए हैं ना, उन्हें तो मना ही लेंगे।
1: रूठियों को मनाने की अगर बात चल रही है, तो क्यों ना आज के दिन की शुरुआत, हम आज छुट्टी का दिन है, आपके पास समय भी है, तो क्यों ना हम समय की शुरुआत इस चीज से करें कि हमने जिस दोस्त को, अपने जिस अपने को बहुत समय से फोन नहीं किया है, उसका हाल नहीं पूछा है, उसके बारे में कई बार मन में आया लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उससे बात करने की, तो आज कुछ ऐसा करते हैं कि आज उनको कॉल लगाते हैं, उनसे बोलते हैं अपने मन के बात, अपने दिल के बात उनसे करते हैं, और एक छोटा सा सॉरी बोलकर रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई पहल करते हैं।
0: लेकिन ये सब करना प्लीज इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि बहुत सारे खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, सॉरी बोलिए और एक नई शुरुआत कीजिए। सिद्धार्थ, ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए।

जी हाँ, परवाह ही तो है, क्योंकि तेरा यूं रूट जाना भी मोहब्बत की निशानी है, मगर हर बार मनाना भी मेरी कहानी है।

दोस्तों, जो रूठे हैं उन्हें दूर नहीं जाने देना है। और आज जैसा कि नवीन ने आपसे कहा कि आज का दिन खास नजर रखना है उन लोगों के लिए जो आपसे रूठे हुए हैं, वो रिश्ते जो थोड़े दूर जा चुके हैं।

0: लोगों को बनाने के लिए।
1: स्मार्ट हर वक्त जीतना भी जरूरी नहीं है
0: जी,
1: हर वक्त मजबूत रहना ये भी जरूरी नहीं है, या हर वक्त भागते रहना ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनों से जीत जाने के बजाय हार जाना, कभी कभी मुश्किल वक्त में मजबूत होने के बजाय रो लेना, जीवन की इस यात्रा में जब भागते हुए थक जाओ ना तो थोड़ा ठहर जाना, और जब तुम जान पाओगे कि जीवन में हारना रोना ठहरना कितना खूबसूरत होता है।
0: बिल्कुल, और कहते भी हैं कि नाराजगी लाख सही रिश्ता तो अपना है, आओ गले मिटाएं, यही प्यार का सपना है। तो गले अगर हम मिटाएंगे तो प्यार का सपना आपका जरूर पूरा होगा, और ये जो गले शिकवे रूठना मनाना मिलना जुदा होना और फिर मिल जाना, यही तो जीवन है। और नवीन, कई बार हमारे तुम्हारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम कुछ कहना तो चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, किसी से सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। कई बार हम इसी में रह जाते हैं कि पहन कौन करे
1: बस, और उस वक्त आपकी आंखें बोलती हैं। अपनी आंखों में वो सारा समा, वो सारी बातें आप ले आइए, चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ले आइए, और वो सब कहने की कोशिश करनी चाहिए जो आप कहना चाहते हैं, कहने पाते हैं, लेकिन आंखें बोलती हैं, आपके होंठ बोलते हैं।
0: जी हाँ, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो सॉन्ग है हम डेडिकेट कर रहे हैं उनको जो आपसे रूठे हुए हैं, और उनको बहुत ही प्यार से जब आप आवाज देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज पर वो दौड़े चले आएंगे।

0: मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नासों से, और जब कोई इस तरीके से दिल से पुकारता है तो आना ही पड़ता है, क्योंकि दिल से जो सदा निकलती है उसको कोई टुकड़ा भी नहीं सकता है, क्योंकि दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचती है। और आज की तो भरी गुड मॉर्निंग के इस शो में नवीन और सिद्धार्थ है आपके साथ, और ये बात हो रही है दिल से दिल तक की, बात हो रही है रिश्तों की, बात हो रही है जीवन की, बात हो रही है सुबह की, कि किस तरीके से जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो रिश्तों का मांझा है उसे हम सुलझा लेते हैं, किसी अपने को मना लेते हैं। नवीन
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, थोड़ा सुकून, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, तुम्हारी गोद, तुम्हारा मेरे हाथों में हाथ, तुमको पाकर जाना मैंने, कितना कुछ नहीं था मेरे पास तुम्हारे बिना। कभी कभी कोई इतना खूबसूरत साथ आपके साथ चल पड़ता है कि आपको लगता है कि अगर वो नहीं है तो जीवन कुछ अधूरा सा लगता है। अधूरे जीवन को पूरा करना चाहते हैं, लंबा साथ चाहते हैं, तो जैसा हमने कहा था ना, रूठे को मना लीजिए। जिंदगी बहुत छोटी सी है, और इस छोटी सी जिंदगी में अगर आप साथ छोड़ते चले जाएंगे ना तो अकेले रह जाएंगे। रूठना, मनाना, गिले, शिकवे सब एक तरफ, तेरा मेरा साथ एक तरफ।
0: बिल्कुल, तेरा मेरा साथ एक तरफ जीवन चलने का नाम है, और कहते भी हैं कि मंजिल मिले न मिले इसका गम न कीजिए, जिंदगी सफर है मुस्कुरा कर तय कीजिए, गिरकर संभलना ही इंसान की पहचान है, और चलते रहना ही तो जिंदगी का नाम है।

0: जी हाँ, जीवन चलने का नाम और चलते रहो सुबह शाम, हिम्मत की बात कही गई है इस गीत को। जब भी हम सुनते हैं तो सच मानो तो जैसे पूरे जीवन का सार मिल जाता है और एक नई ऊर्जा से हम भर जाते हैं। क्यों ना भर जाएं, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है, ये इस गीत के बोल ही ऐसे हैं। क्या कहेंगे नवीन आप?
1: दिस इज ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग सिद्धार्थ, और हमें लगता है कि आप जब भी थोड़े से परेशान हो, जब भी आपको लगे कि आपके आसपास कुछ हो नहीं रहा, या आपको लगे कि आपके जीवन का जो ग्राफ है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, जस्ट लिसन दिस सॉन्ग, इस गीत को सुन लीजिए। बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है। और सिद्धार्थ, लोग कहते हैं कि जीवन बहुत मुश्किल से बीत रहा है, कभी कहते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, थक गया हूं। कभी उनकी सोचे जिनके पास काम नहीं है, काम से कभी कोई नहीं थकता मेरे दोस्तों। काम करते रहिए, चलते रहिए, जीवन चलता रहेगा।
0: बिल्कुल, काम करते रहिए, चलते रहिए, जीवन चलता रहेगा। और साथ में इस जब आप इस जीवन के सफर में चलते हैं तो थोड़े जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो मेहनत है, जो आपके हम कभी कई बार हम नवीन ये कहते हैं कि जो तकदीर है वो हमारे साथ नहीं है, तो एक जंग सी शुरू हो जाती है तकदीर और तदबीर के बारे में। लेकिन हम आपसे यही कहें

0: ही तकदीर के भरोसे बैठना भी क्या अजब बात है, तकदीर से ही अक्सर मुकद्दर बदल जाता है।
1: और जिस गीत की ओर इशारा कर रहे हैं सिद्धार्थ, वो गीत हम बिल्कुल आपको सुनाएंगे, लेकिन इतना याद रखिए, मेहनत करेंगे ना तो हाथों की लकीरें भी बदल जाएंगी।
0: बिल्कुल, तकदीर भी झुक जाती है तदबीर के आगे, मेहनत का दिया जलता है तकदीर के आगे।

0: जी हाँ, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, क्योंकि तदबीर के हाथों में जब मेहनत का उजाला होता है तब जाकर तकदीर का हर बंद दरवाजा खुलता है। तो नवीन और सिद्धार्थ आज आपके साथ हैं, तो वही गुड मॉर्निंग में, और धीरे धीरे घड़ी की बढ़ती सुइयां हमें इशारा कर रही है नवीन कि अपने श्रोताओं से विदा लें।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं से हम विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज जो हमने बातें आपसे की, और अगर आपने उसको थोड़ा भी ध्यान लगाया होगा ना, तो आज का दिन तो आपका बन ही जाएगा। बहरहाल, इजाजत, नमस्कार।

0: सुन रहे थे मैं तुम्हारी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीटर वे 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 8 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का

0: विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई यह योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे के वहां पे बिजनेस पे विद्यार्थियों पे हर क्षेत्र के वर्ग को हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के सारण में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उभर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
0: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रूपये प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज

0: का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है। गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो चला तो करे हम राष्ट्र को मिला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से सुनता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौती होने खेरा। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है, साथ ही कुछ कम्पेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है, ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूरदराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
1: उड़ान योजना

0: के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जहां मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
0: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
1: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आवास इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आवास से 100 से ज्यादा नए 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनान में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमी कंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट ओएसएडी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़ी सीमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी ओएसएटी मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निजाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
0: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: उन्होंने मजीद कहा कि सनान का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
0: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: इससे कल सनान पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1,875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन की उम्र, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफे जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की महबूद के महकमे 2000

0: 25 के दूसरे पेश की तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा जखीरा काफी है और इस वक्त जखीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुर्गी सतह पर प्याज की औसत खुदरा कीमत 31 रूपये फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद उमर।
1: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुतला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तस्वीर नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इस्तेमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इस्लाहात भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का हदफ मुकर्र किया गया था लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पर काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: आकाशवाणी खबरों का शोभा अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत आज शजरकारी और माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए काम कर रहे देवेंद्र सूरा से की गई बातचीत नशर की जाएगी।
3: शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, और भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है। मैं गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो चला जो करे हम राष्ट्र को मिला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को लेकर बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
4: की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये बातचीत आज सुबह 10:30 101.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इक्तिसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है जो मजबूत इक्तिसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। 3 मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ओमान के दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो अकवामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल UNSC की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता

0: मेरी मातृभाषा मेरी मां की गोद है, लेकिन एक सीमा के बाद जब मुझे विस्तृत गोद चाहिए तो वो भारत माता की गोद है, और वो भारत माता की गोद में मुझे हिंदी ही बिठा सकती है। तो इसलिए हिंदी को मैंने अपना जीवन का आधार बनाया। साहित्य, पत्रकारिता, अन्य सभी क्षेत्रों में हिंदी मेरा सबल रहा है।
1: सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए।
0: मेरा जन्म अविभाजित पंजाब, आज वो क्षेत्र हरियाणा में है, करनाल के एक छोटे से गांव में हुआ। देश का विभाजन हुआ था, बड़ी कठोर परिस्थितियां थी, परिवार वहां आया, अनेक प्रकार के अभावों को हमने देखा, झेला, लेकिन उसका भी एक सुख था, एक आनंद था, सीखने का भाव था। मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई ने विभाजन से पूर्व एक शब्दकोश खरीदा था अंग्रेजी का, और बाद में विरासत में वही मुझे कई बहन भाइयों के बाद मुझे प्राप्त हुआ। बहुत गड़ चुके हैं पेट, लेकिन मैंने उसे संभाल के आज भी रखा हुआ है। वो दौर था जब साधन नहीं थे लेकिन साधना थी, अभाव था लेकिन जीवन को जीने का, नैतिक मूल्यों से जुड़ने का भाव था। तो उस परिस्थितियों के अंदर जब हमारे पास पुस्तकों का भी अभाव था, सिलेबस की किताबें नहीं होती थी, स्कूल पैदल जाना होता था कई मील दूर, लेकिन हंसते खेलते जाते थे। एक और विशेष बात कहना चाहता हूँ कि वो केवल मेरे लिए नहीं था, वो पूरा परिवेश ही ऐसा था। उस दौर के लगभग हर व्यक्ति ने उन कठिनाइयों को, जीवन के उन दौरों को देखा हुआ है, तो मेरा बचपन भी कमोवेश उन्हीं जैसा रहा। मैं उस कठिनाइयों के दौर को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता हूँ, उसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
1: आपने 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेखन का शौक कहाँ से लगा?
0: मैं समझता हूँ इससे भी पूर्व ये प्रश्न होना चाहिए कि साहित्य का शौक कहाँ से लगा। मेरी माँ उस दौर में कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन वो चार भाषाएं जानती थी, पढ़ना लिखना। उस दौर में हिंदी गुरमुखी घर में सीखी, उन्होंने घर में कोई आके सिखाते थे। उन्होंने उर्दू भी सीखी और अंग्रेजी हम सब बच्चों से सीखी। उन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, वो कहानियां पढ़ के सुनाती थी, मेरी दादी नानी भी। लेकिन मेरी माँ के एक विशेष गुण था जो मैं अब महसूस करता हूँ उनके इस संसार से जाने के लगभग 40 साल बाद, कि वो कोई कहानी सुनाती थी तो अंत में उसे यूं ही छोड़ देती थी और वो बोलती थी अब आगे बताओ क्या होगा। तो उसको लेकर के जो ध्यान से सुन रहे होते थे उन सबकी कल्पनाशीलता बढ़ी, उसका मुझे बहुत लाभ मिला उन कहानियों को सुन करके कि अब आगे कैसे जाना है। वो जो कल्पनाशीलता माँ से मुझे प्राप्त हुई उसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूँ कि वो माँ से जो प्राप्त हुआ वो केवल आधार मैं मान सकता हूँ। परिवार में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे साहित्य से पूरी तरह से जोड़ा। मुझसे एक बड़े भाई थे, वो अस्वस्थ रहते थे, तो किसी ने सुझाव दिया कि इसे एक पुस्तकों की दुकान खुलवा दो। उस दौर में उपन्यास आदि किराए पे दिए जाते 5 पैसे 2 पैसे में, कि ये बैठा रहेगा कुछ इसको आय हो जाएगी। अब परिवार में किसी को साहित्य की बहुत जानकारी नहीं थी, तो हमारे बड़े भाई ने उसी व्यक्ति को कहा कि आप बताओ कहाँ से किताबें मिलेंगी। तो कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने आकर बताया एक पुस्तकालय बिकाऊ है, आप ले लो। वो पुस्तकालय खरीद लिया गया, उस भाई को दुकान खुलवा दी, लेकिन 15 दिन में एक भी पुस्तक किराए पर नहीं गई। वो निराश हो गया और उसको जगह पर ताला लगा के रख दिया गया। कुछ दिनों बाद बरसात हुई, दौर था बरसात, आज की तरह लेंटर नहीं होता था, टुकड़ी होती थी, लकड़ी की कड़ियां होती थी, उसमें कुछ टक्का, वो किताबें भीग गई। मैंने उनको सब कुछ सुखाया और सबको पड़ गया। उस दौर में जो किराए पर दी जाती थी वो जेम्स वार्ड और गुलशन अंदा और न जाने कौन कौन थे, वो एक भी नहीं थी। वो पुस्तकें थी देवकीनंदन खत्री की, वो अचार्य चतुर सेन जी की, उसमें विदेशी साहित्य भी बहुत था, चेखव को मैंने उन्हीं पुस्तकों में पढ़ा। तो धीरे धीरे मैंने सब पुस्तकें पढ़ दी। उन पुस्तकों को पढ़ते हुए हाथ में लेते हुए हाथ काले हो जाते थे, वो बरसात में भीगने से ऐसा हुआ। तो उससे जो वो साहित्य की नींव थी उसमें और मेरी जानकारी बढ़ी, लिखने की रुचि बढ़ी, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैं कर सका उसका श्रेय मुझे नहीं उन परिस्थितियों को है। यदि वो परिस्थितियां नहीं होती तो शायद मैं एक सामान्य पाठक तक ही सीमित रह जाता।
1: पाठन तो आपने बहुत किया, और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसके आगे लेखन का सफर कैसे शुरू हुआ?
0: मैं जब महाविद्यालय में गया तो वहाँ ये तय हुआ कि एक वर्ष में विद्यालय की पत्रिका प्रकाशित होगी स्मारिका, तो मुझे भी कुछ लिखने के लिए कहा गया। लेकिन उससे पूर्व की एक घटना है, मैं शायद 5वीं या 6वीं में पढ़ता था, तो एक दिन हमारे जो शिक्षक थे उस दौर में गुरु जी कहा जाता था, तो मैं कुछ बोल रहा था तो अचानक उन्होंने कहा अरे तुम तो कविता बोलता है, कविता करता है। मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे हैं। अक्सर हमारे घर

0: करना, जो समसामयिक घटनाएं होती थी उन पर चिंतन करना, उन पर लिखना, वहां से ये यात्रा आरंभ हुई। लेकिन सब कुछ मैंने अपने परिवेश से ही लिया। मैं एक अपने बहुचर्चित कहानी संग्रह की कहानी का उल्लेख यहाँ जरूर करूंगा। उदयपुर स्टेशन पर मैं पहुंचा, मुझे दिल्ली आना था, गाड़ी में भी 2 घंटे बाकी थे, मैं वहां इंतजार कर रहा था। अचानक देखा कि उस स्टेशन पर बहुत से विकलांग लोग घूम रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने कहां से आए। तो पता लगा यहाँ एक ऐसा संस्थान है जो विकलांगों के कृत्रिम अंग आदि देता है। तो जब भी कोई गाड़ी आती है वहां से उनका कोई वाहन आता है, उनको ले जाता है, फिर उनको अंग देते हैं, सिखाते हैं, बाद में छोड़ कर जाते हैं। एक व्यक्ति वहां मेरे आगे घूमते घूमते मेरे साथ के बेंच पर आकर बैठ गया। उनका एक पैर नहीं था। मैंने उनसे पूछा ये क्या हुआ। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, बड़ी करुण गाथा है वो। उसी को आधार बनाकर मैंने एक कहानी लिखी, फटाकोट। वो बहुत चर्चित हुई, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो इसलिए लेखन के लिए सामग्री हमें अपने परिवेश से ही मिल जाती है। एक सत्य है कि पूरी तरह से यथार्थ नहीं लिखा जाता, उसमें कुछ कल्पना का सहारा भी लेना है, कुछ आदर्श चीजें भी डालनी है, कुछ जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको भी लेना है, और पाठक को उसमें अपनत्व महसूस हो, कुछ वो चीजें भी रहेंगी। बाकी साहित्य तो वास्तव में संवेदना है। ईश्वर ने मुझे थोड़ी सी संवेदना दी, उस नाते से मैं कुछ लिख सका।
1: अपने 50 के करीब पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों?
0: ये वास्तव में बड़ा कठिन प्रश्न है। मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने लिखा वो उन परिस्थितियों में श्रेष्ठ सोच कर लिखा। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरी जो पहली कविता थी जो स्कूल की स्मारिका में प्रकाशित हुई, आज वो देखने पर बड़ी अटपटी लगती है, शायद उसको आज की कवि कविता से भी खारिज करें। लेकिन मेरे लिए वो भी प्रेरणा है, मेरा वो नींव है, मेरा वो शुरुआत हुई, और जो कुछ लिखा उस काल के लिहाज से वो बहुत सही था। पर सबसे महत्वपूर्ण अगर चुनना ही पड़े तो कोरोना काल के अंदर हमारे कुछ शिष्य थे देश भर के क्षेत्रों में जो शिक्षा से जुड़े हुए थे, वो बार बार मुझे कहते थे रोज कुछ न कुछ लिखा करो, सोशल मीडिया पे डालो, लिखो, जिससे कि जो समाज के अंदर एक निराशा व्याप्त हो गई है, एक नए प्रकार का अनुभव था जो विश्व ने पहली बार अनुभव किया। तो उसमें मैं रोज प्रेरक कुछ घटना कुछ कहानी लिखता था। बाद में हमारे ही एक मित्र जो भीलवाड़ा के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने उनका एक संकलित प्रकाशित किया और उसका नाम ही रखा लॉकडाउन डायरी। तो मैं अनुभव करता हूँ कि वो शायद सर्वकालिक है, उसको पढ़ते हुए पाठक को अवश्य कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। लेकिन इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाकी मेरी 52 में से 51 पुस्तकें हैं मैं उनको कमतर नहीं कह रहा, लेकिन बदलते परिवेश में उनका महत्व एक अलग है।
1: हिंदी के अलावा और किन भाषाओं में आपकी कलम चली?
0: कि जो अधिकार मातृभाषा पर होता है वो अन्य भाषाओं पर बहुत नहीं हो पाता। मेरी मातृभाषा पंजाबी रही है। देश के विभाजन जब हुआ, भारत का वो हिस्सा जिसे अभारत बना दिया गया, तो वे लोग जो अपने आप को भारतीय रखना चाहते थे उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, विस्थापित कहलाए और न जाने किन किन नामों से रहे। तो मातृभाषा और वो संस्कृति उनके साथ रही, तो मातृभाषा में भी मैंने कुछ लिखा है। यूं अन्य कुछ और भाषाएं की भी मुझे जानकारी है, लेकिन लेखन इन्हीं दोनों में रहा है। छुटपुट संस्कृत में भी है, लेकिन मुख्य हिंदी में ही है।
1: आज के समय में साहित्य काफी बदल गया है, तो साहित्य की भूमिका बदल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: बदलता हुआ दौर जिसमें नई नई तकनीक आ रही है, उसने एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में किया कि पढ़ने की प्रवृत्ति घटी है। आज पाठ्य पुस्तकें भी कम पढ़ी जाती हैं, उनके लिए भी छोटी छोटी कुंजियां और गाइड आ गए हैं, बच्चे उन्हीं से काम चलाकर परीक्षा पास कर लेते हैं। तो ऐसे दौर में जब पुस्तकें पढ़ने का प्रचलन कम हुआ है, सोशल मीडिया का दौर आया है, तो साहित्य ने भी अपना आपको नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है। आज सोशल मीडिया पर बहुत कुछ मौजूद है, इंटरनेट पर बहुत कुछ साहित्य प्रकाशित होता है, और इसने एक बड़ा काम ये किया कि पहले कुछ साहित्यकार होते थे जो लेखन करते थे, इस नए दौर ने, इस नई तकनीक ने लगभग हर व्यक्ति को साहित्य से जोड़ दिया, कुछ न कुछ लिखने लगे। ये बात अलग है कि जो व्याकरण के शास्त्री हैं वो उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस रूप में मान्यता देते हैं। लेकिन युग बदलता है तो हर चीज बदलती है, पर साहित्य भी उसका अपवाद नहीं हो सकता।
1: एक लेखक के साथ साथ आप एक संपादक भी हैं और पिछले 25 वर्षों से राजकिंकर का संपादन कर रहे हैं, इस दौरान पत्रकारिता में सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या देखा 25 सालों में?
0: पत्रकारिता को पहले तो मैं ये बताऊं कहना चाहता हूं, पत्रकारिता भी साहित्य है। एक साहित्य जो सुचिंतित होता है, चिंतन मनन करके लिखते हैं, उसको हम साहित्य कह देते हैं। उसे जल्दबाजी में लिखा जाए उसको हम पत्रकारिता कह देते हैं। घटनाओं को पत्रकार जो समाज में घटित हो रहा है वर्तमान में उसका चित्रण करता है। लेकिन आज उस पत्रकारिता में और आज में बहुत बदलाव हुआ। जब हम अपने बचपन की दौड़ की

0: पत्रकारिता देखते हैं, जब सरस्वती पत्रिका जैसी अंक थे, आज वो बहुत बदल चुका है। आज यदि हम किसी समाचार पत्र को उठा करके देखें तो उसमें नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों ने पत्रकारिता की परिभाषा ही ये कह दी कि वेयर देयर इज नॉनसेंस देयर इज न्यूज। तो हमने नकारात्मकता को ही समाचार घोषित कर दिया, तो सकारात्मक घटा है। वो पत्रकारिता जिसने अच्छा काम किया है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज के दौर में उसका बहुत कम वर्णन होता है, चित्रण होता है।
1: आपने 18 देशों की यात्राएं कर भारतीय संस्कृति और हिंदी का प्रचार किया है, विदेशों में हिंदी को लेकर आपके सबसे सुखद अनुभव कौन से रहे?
0: जहाँ जहाँ भारतवंशी है वहाँ वहाँ हिंदी है। एक गुजराती की एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। वहाँ के एक कवि ने कहा है कि जहाँ जहाँ गुजराती तहाँ सदा काल गुजरात। तो मैं ये उसी तर्ज पर कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भारतवंशी है वहाँ हिंदी है। पुराने लोग जहाँ भारत में पहुंचे वो अपने साथ भाषा और संस्कृति भी ले गए। वहाँ दुनिया के कई देशों में जहाँ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है वहाँ विद्यालय भी हैं। लेकिन मेरे अनुभव की बात करें तो मैं तो स्विट्जरलैंड में भी गया, तो वहाँ के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर मुझे 3 भाषाएं दिखाई दी, एक वहाँ की लोकल भाषा, एक अंग्रेजी और एक हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दिया। तो मुझे सुखद लगा, मुझे लगा कि दुनिया में इतनी भाषाएं हैं, उनमें से उन्होंने एक अपनी मातृभाषा के साथ साथ मेरी मातृभूमि की भाषा को भी सम्मान दिया, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ वो क्रिस्टल्स के लिए प्रसिद्ध है। क्रिस्टल्स म्यूजियम में गए तो जो ही अंदर गया तो वहाँ जो सामने एक गाइड महिला थी उसने देखते ही बोला कि नमस्कार भारत, आपका स्वागत है। बाकी सब कुछ उसने हिंदी में नहीं कहा, लेकिन एक वाक्य कहा तो मुझे गौरव महसूस हुआ कि मेरी मातृभाषा, मेरी मातृभूमि की भाषा यहाँ भी मेरा स्वागत कर रही है, मुझसे मिलने के लिए यहाँ भी मौजूद है।
1: देवनागरी लिपि और भारतीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर आपने लंबे समय तक काम किया है, आज इसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
0: दरअसल हिंदी आज बोली तो बहुत जा रही है, लेकिन लिखी कम जा रही है। आज हिंदी को देवनागरी में लिखने की बजाय अनेक लोग रोमन में लिखने लगे हैं, जैसे नए माध्यमों में SMS है या सोशल मीडिया पर लोग रोमन में लिखने लगे। तो देवनागरी लिपि जैसी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि, वैज्ञानिक भी मानते हैं, भाषाविद मानते हैं कि ऐसी और कोई नहीं है, क्योंकि देवनागरी में जो कुछ लिखा जाता है अधिक संभव वही पढ़ा जाता है। कोई पहली बार भी पढ़ेगा तो उसका सही उच्चारण करेगा, जबकि और भाषाओं में जो हम उसके स्थान पर अपना रहे हैं उसकी लिपि में ऐसा नहीं है। छोटे छोटे उदाहरण जो आपने 100 बार 1000 बार सुने होंगे, बीटिबट और पीयूटीपुट, तो ये देवनागरी में नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, तो देवनागरी का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि केवल हिंदी नहीं, जो महाराष्ट्र की मराठी है, कोंकणी, यहाँ भोजपुरी और अनेक भाषाएं, यहाँ तक नेपाल की जो नेपाली भाषा है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो यदि भारत की सभी भाषाएं अपनी भाषा की अपनी लिपि के साथ साथ अगर देवनागरी को भी अपना लें तो भारत की एकता बहुत सशक्त हो सकती है, और उन भाषाओं के शब्द भी भारतीय भाषाओं में हिंदी की मुख्य धारा के अंदर आ सकते हैं। अभी हमें जो मजबूरी में विदेशी भाषाओं के शब्द लेने पड़ते हैं वो वहां से लिए जा सकते हैं। जैसे आज सर्वत्र चर्चा होती है फ्लाईओवर की, जबकि बंगला में इतना सुंदर शब्द हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद जानकारी न होने की वजह से हम उड़ान पुल का इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे एक हमारे देश का एक रेल मंत्री बंगला रहा तो उन्होंने एक ट्रेन चलाई दुरंतो, अब बंगला का शब्द आज हर भारतीय को उसका अर्थ मालूम है। तो अगर देवनागरी में उन भाषाओं का चलन भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाषाएं अपनी लिपि छोड़ दें, वो अपनी लिपि को रखें, लेकिन देवनागरी भी अगर इस्तेमाल की जाए तो उन भाषाओं का तो होगा ही विकास, भारत की एकता की कड़ी और सशक्त होगी।
1: जी, माता पिता पहले रोल मॉडल होते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के। आपके रोल मॉडल कौन रहे, आपके पथ प्रदर्शक कौन थे?
0: अगर मैं अपनी बात को ही कहूँ तो सबसे पहले तो माता पिता ही होते हैं जी। और बल्कि मैं सच कहूँ तो पिता से अधिक मेरी माँ मेरी रोल मॉडल थी। लेकिन बदलते दौर के अंदर बच्चे के पहले रोल मॉडल होते हैं, जब वो बड़ा होता है तो विद्यालय में जाता है, उनमें से कोई शिक्षक ऐसे होते हैं। तो मैंने मेरे क्लास टीचर थे उस समय गुरु जी कहते थे, थोड़ी देर पहले भी जिनका मैंने उल्लेख किया, स्वर्गीय यशोदानंद जी, मुझसे बहुत स्नेह करते थे, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। मैं उनको जब देखता था कि सादगी की प्रतिमूर्ति, जब भी समय मिलता कोई किताब लेकर पढ़ते रहते थे, संस्कृत के और गणित के प्रखंड विद्वान थे, उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उनका निवास स्थान था स्कूल से और 2-3 किलोमीटर दूर था हमसे भी ज्यादा, लेकिन वो पैदल आते थे, मेरे घर के आगे से गुजरते और मुझे आवाज लगाते, और बहुत तेज चलते थे, तो मैं भी उनके साथ लगभग दौड़ता हुआ जाता, और वापसी भी मुझे छोड़ते और रास्ते भर मुझसे संस्कृत की, गणित की और चर्चा करते रहते थे। आज भी मैं अपना गुरु उन्हें मानता हूँ, उन्हें

0: आदर्श मानता हूं और उनको स्मरण करते हुए जो मुझे सुखद अनुभूति होती है वही मैं अपना सारा साहित्य जो कुछ मैं कर सका मैं उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूं।
1: जीवन का कोई ऐसा अनुभव सर जिसने आपकी दिशा बदल दी हो, क्योंकि हर उम्र में हर समय के अपने अलग अनुभव होते हैं, तो कोई एक ऐसा अनुभव जिसने आपको लगता हो कि जीवन की दिशा बदल दी हो?
0: उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर रहे, उस समय पंजाब था, बाद में हरियाणा बन गया और 10वीं कक्षा पास करने के बाद दिल्ली आ गए। यहाँ 11वीं में दाखिल होना था, उस समय हायर सेकेंडरी होती थी, सीनियर सेकेंडरी नहीं होती थी। वहां से प्रमाण पत्र ले लिया स्कूल छोड़ने का, स्कूल में पहुंचे, उन्होंने कहा इसमें ये कमी है, इसकी मोहर लगवा कर लाइए। कई दिन चक्कर लगवाने के बाद वो मोहर लगी, मैं फिर स्कूल पहुंचा तो उन्होंने कहा जी ये तो उस समय जो शिक्षा अधिकारी उसकी हो गई, लेकिन जब राज्य आप बदलते हैं तो जिला अधिकारी की भी मोहर लगती है। फिर वहां पहुंचे, ये सब आसान नहीं था। 3 महीने बीत गए जिस दिन मोहर लगी और मैं यहाँ दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अब परमिशन का टाइम खत्म हो गया, अगले साल आना। एक साल खाली बैठना घर में, फिर मैं रोने लगा घर पर आकर। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, किसी ने जानकारी दी कि प्राइवेट कर सकते हैं, मैं वहां पूछने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि 37 रूपये लगेंगे, इसमें से पता नहीं 17 या 27 रूपये फीस है और 10 रूपये हमारे हैं, तो हम आपका 11वीं में प्राइवेट एडमिशन करा देते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, घर आकर बताया मैंने। मैं इसे अपना दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं, घर में 37 रूपये उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने हड़ताल कर दी। मैंने कहा मुझे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। 4 दिन हो गया मैंने सिर्फ पानी पिया, अचानक मेरे पैर में चोट लग गई, बहुत खून बहने लगा, मेरी मां रोने लगी। उन्होंने अपने कान की बाली उतार के मुझे दी कि बेटा इसको भेज दो और तुम 37 रूपये अपने स्कूल की फीस दे दो। मैंने कहा नहीं, आज से मैं घर से 1 पैसा भी नहीं लूंगा, मैं खुद ही कोशिश करूंगा। मैंने दिन भर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया और उसके बाद जहां तक भी पहुंचा मैंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने स्कूल की फीस दी, अपनी किताबें खरीदी। और यही कहते हुए मुझे गर्व होता है कि मेरी सबसे बड़ी जो विश्वविद्यालय है ये मेरी मेहनत मजदूरी रही। मैंने 1 महीना एक होटल पर जूठे बर्तन धोए हैं, वहां से जो मुझे अनुभव मिला उसने मुझे जीवन के मूल्य सिखाए। बेशक वहां से प्रमाण पत्र नहीं मिला उस यूनिवर्सिटी से, लेकिन इस यूनिवर्स को, इस विश्व को जानने का अवसर मिला। वो टर्निंग प्वाइंट मैं उसे ही मानता हूं और आज तक भी मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अगर कोई सहारा हो सकता है, कोई सबल हो सकता है, तो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही हो सकता हूं अपना। तो यानी हर बच्चे में ये भाव जागृत हो तो एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये निर्भरता समाप्त हो सकती है। और मुझे वो सब कुछ करके वो कठिनाइयां, वो जो टर्निंग प्वाइंट जिसने आपने जीवन का परिवर्तन बिंदु की बात की, मैं उसे बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मानता हूं। मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूं कि मुझे उसने वो चुनौतियां दी, उन चुनौतियों से पर विजय पाने का भी मार्ग मुझे सुझाया।
1: जी, इतनी सक्रियता, इतना लेखन, इतनी जगहों पे जाना, इतने देशों की यात्रा, सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये साहित्यिक और सामाजिक यात्रा के बीच के लिए ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं?
0: किसी भी व्यक्ति में कोई ऊर्जा जुटा नहीं सकता, उसे ईश्वर देता स्रोत प्रेरणा होती है। और जो कुछ भी मैं कर सका मुझे रुचि रही। मैं आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ। मैं जब किसी देश में या अपने देश के किसी भी प्रांत में या विदेश में गया, मैं वहाँ के बच्चों के बीच में जाना, उनसे बात करना, उनके अनुभव को जानने में मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है और मैं आज भी अपने आप को उन्हीं जैसा अनुभव करना चाहता हूँ। तो उन बच्चों के बीच में रह करके उनकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उसका एक अंश मुझे भी मिलता है, ये मैं इसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ। और मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ मैंने किया वो मेरा नहीं, परिस्थितियों का प्रभाव है, ईश्वर की कृपा है, वो ईश्वर ही ऊर्जा देने वाला है, उसने मुझे अब तक स्वस्थ रखा, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। यही सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ा वरदान है मेरे लिए।
1: आपने शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता जैसे अनेक क्षेत्रों में लंबे समय तक काम किया है, अगर आज आपकी अपनी पूरी यात्रा को एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो आप क्या कहेंगे?
0: मैं एक यात्री के रूप में ट्रेन में बैठा हूँ और वहां बहुत से लोग से बहुत सी परिस्थितियों से मुझे मिलने का अवसर मिला। उन परिस्थितियों पर मैं जो कुछ कर सका मैं यही मानता हूँ। और सच तो यह है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया परिस्थितियों ने किया, उस परमात्मा की दी हुई जो प्रेरणा ने दिया, जो मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले बाल्यकाल से जीवन में जिन्होंने लगातार मुझे प्रोत्साहित किया, तो इसलिए मेरी सारी यात्रा प्रेरणाओं का एक प्रसाद है।
1: बहुत अच्छी बात हुई आपसे रोज बब्बर जी, कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: मेरा साहित्यिक सफर क्रम में अभी आप वरिष्ठ साहित्यकार श्री विनोद बब्बर से उनका साहित्यिक सफर सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रही थी वरिष्ठ लेखिका श्रीमती वंदना अग्रवाल।

0: आप सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही है युवा पत्रकार डॉक्टर तन्वी त्यागी।
1: विगत 25 जून को साहित्यिक संवाद कार्यक्रम के दौरान लेखक श्री रोहित दुबे ने युवाओं के लिए आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व विकास और संवाद कौशल पर जोर दिया। उनका मुख्य संदेश यह रहा कि सिर्फ डिग्री पर्याप्त नहीं बल्कि भाषा, विचार और व्यवहार में भी निखार जरूरी है। यह बात सीधे किसी पुरस्कार या पुस्तक घोषणा के बजाय साहित्यिक विमर्श की दिशा को दिखाती है। 28 जून को श्रद्धा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के प्रांगण में अजय साहित्यिक एवं सामाजिक मंच व देवशील मेमोरियल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भव्य साहित्यिक महोत्सव अत्यंत गरिमामय, सुव्यवस्थित एवं सार्थक वातावरण में सम्पन्न हुआ। प्रातः 9:30 बजे प्रारंभ होकर संध्या तक चले इस विराट साहित्यिक आयोजन ने साहित्य प्रेमियों, कवियों एवं विद्वानों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां शब्दों की साधना और सृजन की सरिता पूरे दिन अविरल बहती रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी, हरियाणवी व संस्कृत के विद्वान व हरियाणा के राजगीत लेखक डॉ. बालकृष्ण शर्मा ने की। कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं संयोजन में श्री विनोद कौशिक, डॉ. प्रीता पवार, श्री राजपाल यादव, श्रीमती रश्मि अभय, श्रीमती मंजू तंवर, डॉ. विकास शुक्ल, श्रीमती प्रेरणा सिंह, श्री विवेक एरन तथा श्रीमती पारुल राज की उल्लेखनीय भूमिका रही। श्रद्धा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉ. गजराज सिंह आर्य के आत्मीय आतिथ्य एवं उत्कृष्ट व्यवस्थाओं ने आयोजन की गरिमा को और अधिक ऊंचाई प्रदान की। इस साहित्यिक महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि श्री दिनेश रघुवंशी और गाजियाबाद से नीरज त्यागी जी की स्नेहिल व प्रबुद्ध उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से सबका मन मोह लिया। हरियाणा गीत के रचयिता बालकृष्ण शर्मा जी को सम्मानित किया गया। 2 सत्रों में संपन्न हुए इस आयोजन के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईपीएस श्री सुधीर चौधरी तथा द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि आईजी जेल हरियाणा डॉ. संजय सिंह रहे। विशिष्ट अतिथियों में वरिष्ठ गीतकार श्री भूदत्त शर्मा जी, नीरज त्यागी जी, वरिष्ठ गजलकार डॉ. गुरविंदर बांगा, वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार श्री सत्य प्रकाश शर्मा, श्रीमती अलका सैनी, वरिष्ठ कवि श्री सत्येंद्र शर्मा, प्रतिमा शर्मा पुष्प जी, श्रीमती नेहा वैद, श्रीमती भावना सक्सेना सहित अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों की गरिमामय उपस्थिति रही। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 60 कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का प्रभावशाली पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ साथ नवांकुर युवा कवियों ने भी अपनी सशक्त अभिव्यक्ति से खूब सराहना बटोरी। विशेष रूप से कबीरा हालाती शायर सत्यम पांडे, सागर ठकराल, रुद्र प्रताप, विशाल, नेम सिंह सहित अन्य युवा कवियों ने अपने ओजपूर्ण एवं भावपूर्ण काव्यपाठ से भरपूर तालियां अर्जित की। इस अवसर पर अजय युवा मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आलेख प्रतियोगिता के विजेता युवा प्रतिभागियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत भी किया गया। 29 जून को सप्ताह के दौरान विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद, युवा लेखन और डिजिटल साहित्य की बढ़ती भूमिका पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। भारतीय भाषाओं पर विचार विमर्श जारी रहा। विशिष्ट साहित्यकारों ने कहा कि भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद से साहित्य का पाठक वर्ग बढ़ रहा है और युवाओं में भी इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। महाकवि डॉ. कुंवर बेचैन के अवतरण दिवस 1 जुलाई की शाम को देवप्रभा प्रकाशन का 6वां कार्यक्रम बातें कुंवर की संस्मरण और काव्य संध्या का आयोजन गरिमामय ढंग से संपन्न किया गया। इसमें अनेक कविगणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में देश भर से आए कवियों और साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया। आयोजन की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉ. मधु चतुर्वेदी ने की, जबकि मंच संचालन में वरिष्ठ रचनाकारों ने सहभागिता निभाई। साहित्य सम्मान, संस्मरण पाठ और कविता पाठ के क्रम में डॉ. बेचैन की रचना धर्मिता, व्यक्तित्व और हिंदी काव्य जगत पर उनके स्थायी प्रभाव पर विस्तार से चर्चा हुई। दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ डॉ. कुंवर बेचैन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके लोकप्रिय गीतों और गजलों के

0: पंक्तियां स्वरबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गईं, जिन पर श्रोताओं ने भावभीनी प्रतिक्रिया दी। संस्मरण सत्र में उनके सहयात्रियों, शिष्यों और मंच सहकर्मियों ने मंचीय कवि सम्मेलनों से जुड़े संस्मरण साझा किए। किस तरह डॉक्टर बेचैन ने आधुनिक गजल को आम जनजीवन के निकट लाते हुए नई संवेदनात्मक भाषा दी और युवा पीढ़ी के कवियों का मार्गदर्शन किया। काव्य सत्र में प्रतिभागी कवियों ने गीत, गजल और नई कविता के माध्यम से उन्हें स्मरण किया। कई कवियों ने उनकी रचनाओं के पाठ के साथ अपनी समर्पित कविताएं पढ़ी। समापन सत्र में डॉक्टर मधु चतुर्वेदी ने अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए कहा कि डॉक्टर कुंवर बेचैन की काव्य परंपरा मानवीय सरोकारों, सरलता और मंच संवादिता की निरंतर कड़ी है। उनका काव्य सौंदर्य बोध और सामाजिक संवेदना का संतुलित प्रतिमान है।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर तन्वी त्यागी। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही सम्पन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण बीणा।
2: आकाशवाणी डीए का इंद्र प्रेस चैनल है। मीटर हुए 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ देर के बाद प्रसारित होगा कार्यक्रम हमारे अतिथि। इसके बाद आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। मिट्टी दी महक के बाद समय होगा समाचारों का। समाचार के बाद प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भारत के उच्चायुक्त और पूर्व राजनयिक राधा वेंकटरमण से निर्मल कानिया की बातचीत। प्रस्तुत है काजल सूरी की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।

0: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारी अतिथि हैं सुश्री राधा वेंकट रमन जी। आप विदेश सेवा अधिकारी रही हैं, पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आपने कार्यभार संभाला और सर्बिया, बेलग्रेड, जर्मनी, बेलारूस, पुर्तगाल, भूटान, श्रीलंका और स्वाजीलैंड में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत ही विविधता भरा समृद्ध अनुभव है आपका, तो आज हम राधा जी से बातचीत करते हुए बहुत कुछ जानेंगे विदेश सेवा के बारे में। राधा जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। जैसा कि आपका परिचय हमने बताया अपने श्रोताओं को, तो इतने सारे नाम आपके साथ जुड़ते हैं, तो एक बहुत ही लंबा ये सफर आपका रहा होगा। आई एम श्योर बहुत कुछ है आपके पास हमसे शेयर करने के लिए, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो पहली आपकी पोस्टिंग थी भारत से बाहर, वो कब थी और कैसा अनुभव आपका था?
1: 83 में अप्रैल में मुझे अपना ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम देना था। वापस आई, फिर मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लिया, तो काम सीखना शुरू किया। मेरे साथ जो काम करते थे बहुत ही इतने अच्छे लोग थे कि आज के दिन तक, जो हम अभी 45 साल बाद की बात कर रहे हैं, अभी भी मेरे दोस्त हैं। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, बेबी ऑफ द टीम जिसको बोला जाता है, तो उन्होंने सबने अपने मुझे अपने अंडर में विंग में लिया, और तो मेरा ग्रास्पिंग पावर भी बहुत अच्छा था, तो मैंने बहुत अच्छा पिकअप किया और करीब साढ़े तीन साल मैंने दिल्ली में काम किया
0: जी,
1: जिसको हम मिनिस्ट्री में हेडक्वार्टर से बोलते हैं। तो मेरे उस टाइम के जो मेरी बॉस थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें तो सोनोग्राफी आती है, तुम सोनोग्राफी का एग्जाम क्यों नहीं दे रही हो? तो मैंने कहा कि मैं न किसी के साथ काम नहीं करना चाहती सोनोग्राफर, लेकिन मेरे साथ तो करोगी। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुम सोनोग्राफर से एग्जाम दो, और हमारा उस टाइम में मिनिस्ट्री के अंदर एक एग्जाम होता था, तो हमने वो उसमें बैठ गई मैं, और ये बिलीव नहीं करोगी, आई टॉप द लिस्ट, जितने लोगों को चुना गया मैं नंबर वन।

0: करते हूँ, तो मेरी मेरे से ज्यादा मेरी बॉस जिन्होंने मुझे इनकरेज किया वो खुश हुई। मैं कहा मैंने खा और तुमने लिया और तुम अव्वल नंबर पे आई हो। फिर उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री में ही जो सेक्शन हमें डिप्लॉयमेंट देता है इधर काम करने के लिए, उनसे जाके बोला ये लड़की स्टेनोग्राफर बनी है मेरे साथ काम करने के लिए, तो आप और किसी के साथ इसको नहीं अटैच कर सकते, मेरे साथ अटैच करिए। तो इसलिए स्टेनोग्राफर्स को ना और जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलता है इंडिया से बाहर जाने का, बिकॉज वो किसी ऑफिसर के साथ अटैच होते हैं और उनके साथ उनका पर्सनल काम करते हैं, तो उनका बाहर जाने का मौका भी जल्दी आता है। इस कारण क्लरिकल स्टाफ होने के बावजूद मेरे को 7 साल नहीं वेट करना पड़ा, 3.5 साल में मेरे को सबसे पहले इंडिया से बाहर जाने का मौका मिला। तो मेरा सबसे पहला असाइनमेंट ही सीधे यूरोप में हुआ और मैं 24 साल की थी। तो 1987 में मैंने मिनिस्ट्री ज्वाइन किया था 30 दिसंबर 1982 को, और मई 86 में मेरे को यूगोस्लाविया जाने का मौका मिला।
1: तो आपका लगभग 40 साल का करियर रहा है
0: जी, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस दौरान कोई ऐसी विशेष बात है जो आपको बहुत याद आती है, या कोई ऐसा टाइम गुजरा जो बहुत ही टफ था और वो आपने सहज ही कर लिया और आज लगता है कि वह बड़ी उपलब्धि थी।
2: हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। जो फाइनल मेरा असाइनमेंट था जो स्वाजीलैंड है
1: जी,
2: जिसको एस्वातिनी कहा जाता है आजकल, तो एस्वातिनी में मेरे रहते हुए छोटा एक सिविल अनरेस्ट भी हुआ था, मगर गवर्नमेंट ने, वहां के गवर्नमेंट ने 3-4 दिन में उसको कंट्रोल कर लिया, तो हम कोई यू नो बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल किया या इतना बड़ा चैलेंज काम तो मैंने नहीं किया है,
1: इंडिविजुअली नहीं किया लेकिन कलेक्टिवली
2: सबने हैंडल की सिचुएशन, वो हमने सबने जो वहां 7-8 एम्बेसी है स्वातिनी में, तो हम सबने मिल के बात करके जो भी किया था, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने भी वहां एक्शन लिया तो वो कंट्रोल हो गया। अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो उस जमाने में हमारे एम्बेसी वहां करीब 25 कंट्रीज में थे, तो गवर्नमेंट 2018 के करीब मेरे ख्याल एक कैबिनेट डिसीजन हुआ कि हमारी जो है फुटप्रिंट्स बनने चाहिए अफ्रीका में और एम्बेसीज बनने चाहिए, और उन्होंने आइडेंटिफाई 18 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया जहां नए एम्बेसी खुलने हैं। तो अप्रैल 2018 की बात है जब कैबिनेट डिसीजन हुई, तो उसके बाद जो है काफी स्पीड से काम किया गया और इन एम्बेसियों को खोलने का पूरा काम जो है तेजी से हुआ, और 2019 के बिगिनिंग में मैंने अप्लाई किया था स्वाजीलैंड के लिए, स्वातिनी के लिए। तो जब मैं अपने प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबिलिटी देख रही थी, तो मुझे लगा कि स्वाजीलैंड जो है, स्वातिनी जो है वो एक पीसफुल देश है, छोटा देश है, और हमारा पहली बार एम्बेसी खुलने वाला है, तो कंपैरेटिवली मैं बाकी अफ्रीकन पड़ोसी देशों को चेक करूं तो ये मेरे लिए और सूटेबल होगा। इस कारण मैंने एप्लीकेशन दिया था, और क्योंकि पहले मोजाम्बिक में जो हमारा हाई कमीशन था, स्वाजीलैंड एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है, किंगडम है, राजा है वहां, और उनके दो ही नेबर्स हैं
1: जी,
2: रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एक नेबर है जो तीन तरफ से उनको घिरता है, और एक तरफ मोजाम्बिक है, तो उनके दो ही नेबर्स हैं, और एक छोटा सा किंगडम है, और बहुत ही सुंदर देश है, और मौसम बहुत अच्छा है, कूल है, तो एस्वातिनी सारे मेरे उससे पीसफुल देश है,
1: चेकलिस्ट पूरी हो रही थी वहां पर।
2: उसके बाद प्रोसेस जो है सब अंदरूनी है, बाहर लोगों को पता नहीं चलता
1: जी,
2: तो मैं तो नहीं जानती क्या प्रोसेस था, और बट एक्सेप्ट हुआ और अनाउंसमेंट भी हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ
1: जी,
2: और एक नए एम्बेसी एस्टेब्लिश कर, नया हाई कमीशन एस्टेब्लिश करने के लिए। आपको पता होगा हाई कमीशन और एम्बेसी में क्या फर्क है
1: जी।
2: हाई कमीशन है कॉमनवेल्थ का मेंबर जो है, जो पहले की ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था उसके बाद कॉमनवेल्थ का मेंबर बना, वहां जो भी हमारा दूतावास खुलेगा उसका नाम हाई कमीशन होगा, और जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ के नहीं है वहां हमारी एम्बेसी बनेगी, राजदूतावास को एम्बेसी बोला जाएगा। तो स्वातिनी और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कॉमनवेल्थ कंट्रीज होने की वजह से जो ऑफिस हमारा खुला स्वातिनी में उसका नाम उसको हाई कमीशन नाम दिया गया, तो जो भी ऑफिसर रिप्रेजेंट करेगा तो हाई कमिश्नर आ जाएगा
1: जी।
2: तो मेरा हाई कमिश्नर टू एस्वातिनी सिलेक्शन हुआ था मेरे ख्याल से अप्रैल 2019 में, और मुझे बोला गया था कि जल्द से जल्द जाके वो एम्बेसी खोला जाए।
1: आप राधा जी 7-8 देशों में आप रही हैं, अलग अलग पदों पर आप रही हैं, और आपने वहां की संस्कृति को नजदीक से देखा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि विदेशों में भारतीय मूल के जो लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी उनकी रहती है, तो ऐसे में जो अभी हम भारत की विकास यात्रा की बात करते हैं, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो योगदान कर सकते हैं इसमें?
2: वो योगदान एक्चुअली बहुत कर रहे हैं
1: जी।
2: जो आप हम सभी लोग जानते हैं, जो इंडियन होता है ना वो दिल से इंडियन होता है
1: जी।
2: उसको वो कभी अपने रूट्स को जो है अपने आप से अलग नहीं कर पाता है। तो जितने भी इंडियंस बाहर गए हैं और वो काम कर रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियली वो बहुत ही यू नो अपने आप की सिचुएशन उन्होंने बहुत अच्छी कर ली है अपनी, तो वो वहां रहना तो चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं, बट उनका दिल हमेशा इंडिया के साथ ही रहता है। तो आपको बहुत ही कम एनकरेजमेंट से आप उनको अपने लिए जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, और वो करेंगे भी इंडिया के बारे में। मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में तो उतना नहीं, वैसे तो आपको रेमिटेंस वगैरह तो बहुत मिलता ही है
1: जी।
2: इंडिया का रेवेन्यू बहुत उससे बनता है, तो यहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए वो सपोर्ट करते हैं, यस कई लोग करते हैं।
1: हम भारत की सॉफ्ट पावर की अगर बात करें, योगा है या सिनेमा है या हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज जो हैं, तो ये कैसे अलग अलग देशों को आपस में जोड़ती हैं, भारत की छवि क्या बनाती हैं?
2: इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ही बड़ा है
1: जी।
2: परहैप्स कुछ तरीके से हमारा गवर्नमेंट उसको जो है पूरा उसका 100% यूटिलाइजेशन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं और उनके बहुत सारे प्रायोरिटीज होते हैं। तो हमारा सॉफ्ट पावर जो है इमेंस है और वो जो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने जैसे कहा यूरोप में 4 देशों में काम किया, उसके बाद मैंने भूटान में काम किया, उसके बाद श्रीलंका में काम किया, और फाइनली मैंने एस्वातिनी में काम किया। वहां तक एस्वातिनी तक कई सालों से वहां के स्टूडेंट्स इंडिया में आके पढ़ रहे हैं, ये एक और सॉफ्ट पावर है हमारा कि हम स्कॉलरशिप भी देते हैं उनको, और कुछ तो अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग भी यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टॉप लेवल के होते हैं
1: जी,
2: और हमारा एक प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री का, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में आईटेक बोला जाता है उसको
1: जी।
2: उसमें हम ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग देते हैं, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो हमारे मंत्रालय के साथ जुड़ के फॉरेन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं वहां उनको मौका दिया जाता है
1: जी,
2: ताकि वो जाके अपनी गवर्नमेंट में बेहतर तरीके से काम करें। और जैसे हिंदी भाषा की जो है पॉपुलैरिटी इतनी है फिल्म म्यूजिक की वजह से, फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीलंका की बात आपको बताऊंगी, वहां एक जुनून है
1: जी
2: बच्चों में हिंदी सीखने का। मैंने उनसे पूछा अभी, तो कहते हैं कि हम हिंदी भाषा को प्यार करते हैं। तो क्यों सीखना चाहते हो? हम बहुत सारी हिंदी फिल्म्स देखते हैं, हिंदी सीरियल्स देखते हैं हम, मगर हम उसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं
1: जी।
2: ये नहीं कि हमने फिल्म देखा और वो सुपरफिशियल उसका नॉलेज नहीं, हम अच्छी तरह समझना चाहते हैं डायलॉग क्या बोला जा रहा है, क्या क्यों बोला जा रहा है। तो उन्होंने हिंदी सीखना शुरू किया। इसी दौरान मेरे को एक मौका मिला, और यहाँ एक एक्सपर्ट थे जो रेलवे मिनिस्ट्री में डायरेक्टर हिंदी रह के रिटायर हो चुके थे
1: जी,
2: उनके साथ मेरी किसी बात में मुलाकात हो गई, हम दोनों पार्टनर्स बन गए। किस बात पे? हिंदी सिखाने के बात पे
1: जी।
2: हिंदी के ऊपर जो मेरा लगाव और प्यार है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही डीप है
1: जी।
2: और ऐसी बात नहीं है कि मैंने अपनी मातृभाषा को भूल गई हूँ इस प्रोसेस में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मातृभाषा में भी उतनी ही प्यार रखती हूँ जितना मैं हिंदी में रखती हूँ। तो हमने एक इनिशिएटिव किया कि मैं पोस्ट रिटायरमेंट जो है उनको सपोर्ट करूंगी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली, और वो एक क्रिएट करेंगे हम, एक हमने एक वेबसाइट खोला है।
1: वो तो स्टूडेंट्स इस तरह की वेबसाइट से बल्कि बहुत लाभ उठा रहे हैं, वो सकते हैं
2: स्टूडेंट्स माने कोई भी जो हिंदी सीखना चाहे, जो अपनी हिंदी को इम्प्रूव करना चाहे, बोल चाल की हिंदी को
1: जी।
2: हम इस पर कोई एग्जाम नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, आपको टेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम सिंपली चाहते हैं।
1: कैसे सीखते हैं उस वेबसाइट?
2: इसका नाम है एडुटेनमेंट, हमने एडुटेनमेंट इसलिए नाम रखा है उस वेबसाइट का, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट
1: जी।
2: तो क्योंकि

0: श्रीलंका में देखा कि लोगों का प्यार हिंदी फिल्मों के ऊपर इतना है, और वो जो आपने देखा होगा इंडियन डायस्पोरा जहाँ भी रहता है
1: जी,
0: या इंडियन डायस्पोरा नहीं भी रहता हो, जैसे रशिया फॉर एग्जांपल है, जो राज कपूर को प्यार करता है, राज कपूर नरगिस फिल्में या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में इतनी पॉपुलर है वहाँ आज के दिन तक,
1: बिल्कुल
0: वो हिंदी को प्यार करते हैं, वो हिंदी फिल्मों को देख के हिंदी सीखा हूँ, तो वो हमने कहा कि वो अट्रैक्ट होंगे इससे, और हमने हिंदी फिल्म गानों को चुना, तो हमने कहा ऐसे ऐसे गाने हम चूज करेंगे, उस गाने को लेके हम ड्रामेटिकली उसमें टीचिंग पॉइंट्स जो है वो निकाल के वो मेरे एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया मैंने, तो मेरा ये मन में जो इंस्पिरेशन आ रहा था कि इसको लेके हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं।
2: उच्चायुक्त और राजनयिक राधा वेंकट रमन जी से हमारे अतिथि कार्यक्रम में रोचक बातें हो रही हैं। अगले सप्ताह हम आपको सुनवाएंगे इस इंटरव्यू का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम प्रोड्यूसर काजल सूरी के साथ अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को हमारे अतिथि कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे अतिथि। इसमें आज आपने सुना नाना वेंकटरमन, कड़ी पहली ये भारत के उच्चायुक्त एवं पूर्व राजनयिक। आपसे बात कर रहे थे नीलम मलकानिया। हम आपके सुनने वालों को बताते हैं 10:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। इसमें हम आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों को शामिल करेंगे। आप अपने फरमाइशी फिल्मी गीत हमें भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। ईमेल आईडी एक बार फिर नोट कर लें ipradiodelhi@gmail.com। पहुंचकर 30 मिनट होने को है। अब वक्त है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का।

सामिन अदर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 बजे हैं। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशियात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

9:35 मिनट पर सुबह ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और आज सवेरे प्रोग्राम आप सुनेंगे 9:45 पर। पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबारी सर्रे पर मैं शम्मे फरोजा। अगले प्रोग्राम में आज के फनकार हैं मुनव्वर हुसैन जमाली और सीमा परवीन। आप पेश करेंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। अगले प्रोग्राम का वक्त आएगा सुबह 10:05।

मिनट और 10:30 पर रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ ब्रॉडकास्टर जनाब जी आर सैयद के साथ की गई एक बातचीत आप सुनेंगे। ग्यारह बजे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरी पसंद और 11:30 पर गीतों भरी कहानी पेश की जाएगी मेरे साजन, तहरीर मोहतरमा सलमा सुल्ताना की। दिन में 12 बजे खबरें नशी की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम जारी रहेगा 12:45 तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 तारीख सास प्रोग्राम में आज का मौजू है खवातीन का संग। पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सुर्खियों में और दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशी की जाएंगी। 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशी खिदमत प्रोग्राम सुबह ही प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए शब्द।

0: सबका ही प्रोग्राम में अभी आप समाप्त कर रहे थे, शब्द पेश कर रहे थे भाई सोहन सिंह रसिया और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 5 जुलाई 2026, तो 1687 में क्या हुआ था आज के दिन?
2: जी बहुत इम्पोर्टेंट हुआ था, आइजैक न्यूटन्स ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक ट्रीटीज फिलोसफीए नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका कॉमनली नोन एज द प्रिंसिपिया वाज पब्लिश्ड बाय द रॉयल सोसाइटी इन इंग्लैंड, फंडामेंटली ऑल्टरिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है।
1: अच्छा, तो ये मेरा तो मैथ्स के पेपर जब जब होता तब पेट में दर्द शुरू हो जाता था।
2: मेरे 99/100 आए थे मैथ्स में।
1: जी। और अब आगे बढ़ते हैं, 1954 की बात कर लेते हैं। बीबीसी ने टेलीविजन इतिहास में पहली बार अपने दैनिक टीवी समाचार बुलेटिन का सीधा प्रसारण शुरू किया था। 1971 में अमरीका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने संविधान के 26वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया, जिसके तहत मतदान करने की कानूनी आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 1994 में अमरीकी व्यवसायी जेफ बेजोस ने वाशिंगटन के बेलव्यू में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में अमेजन की स्थापना की, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना।
2: जी।
1: और अब आइए इतिहास में, तो हमने बात कर ली, कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। तो आज जन्मदिन है भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का। इन्होंने बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता और इससे पहले 2016 में ब्राजील में खेले गए रियो ओलंपिक में बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक भी हासिल किया। और अब आइए याद कर लेते हैं प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक बीरेंद्रनाथ सरकार को। 30 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के बैनर तले बीएन सरकार ने प्रारंभ दो मूक फिल्मों का निर्माण किया। कला के क्षेत्र में बीएन सरकार के योगदान को देखते हुए उन्हें 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वो दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लिया। भारतीय सिनेमा के विकास में उनके जैसे महान व्यक्ति और मजबूत नींव डालने वाले निर्माता का एक बहुत बड़ा योगदान है।
2: Today is also the birthday of Zayed Khan, who was born on the 5th of July 1980. He is an Indian former actor and producer who worked in Hindi films. He is the son of Bollywood actor Sanjay Khan. He has received a Filmfare Award nomination after graduating in business management at the Montgomery College and Film Institute at the London Film Academy. He made his acting debut in 2003 in the film Chura Liya Hai Tumne. His other films include Shabd, Das, Rocky the Rebel, Yuvraj, ब्लू एंड अनजाना अनजानी। बट आई एम श्योर फरहत, आपने 2004 में मैं हूं ना देखा होगा।
1: हाँ, बिल्कुल देखी थी। फेमस भी थे, उसके गाने भी काफी लोकप्रिय रहे।
2: एग्जैक्टली, तो उसी का गाना सुन लेते हैं।
1: जी।

श्रोताओं, आज हम बात कर लेते हैं भारतीय तैराक सचिन नाग की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। नई दिल्ली में 1951 के पहले एशियाई खेलों में सचिन नाग ने जब तैराकी में 100 मीटर फ्रीस्टाइल का स्वर्ण पदक जीता, तो खुद प्रधानमंत्री

0: जवाहरलाल नेहरू ने उनके गले में स्वर्ण हार डाला था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एशियाई खेलों में किसी भारतीय तैराक को इसके बाद आज तक स्वर्ण पदक हासिल करने का गौरव हासिल नहीं हुआ। और आज जाने माने पार्श्व गायक जावेद अली का भी जन्मदिन है। युवाओं में इनका काफी क्रेज देखने को मिलता है। उनकी आवाज सूफी गानों के लिए हो या फिर रोमांटिक गाने या फिर क्लासिकल, सभी तरह के गानों में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे भी उनके बहुत सारे गाने बहुत पसंद है। इसके अलावा जोधा अकबर का एक गाना था जश्न-ए-बहारा, ये मुझे काफी, जी बिल्कुल, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवा लीजिए।
1: बिल्कुल।

0: और श्रोताओं, आज हिंदी के जाने माने रचनाकार असगर वजाहत का भी जन्मदिन है। इन्होंने नाटक, कथा, उपन्यास, यात्रा, वृतांत और अनुवाद के क्षेत्र में अनेक रचनाएं की। ये दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कई टेलीविजन फिल्म लेखन और निर्देशन भी किया, जिसमें वृत्त चित्रें भी शामिल थी। और इनका एक नाटक काफी लोकप्रिय रहा, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं।
1: उन्होंने लिखा था वो?
0: जी, इन्होंने लिखा था। और कई सारे जो है नाटक वो किए गए।
1: मैंने इनका प्ले तो देखा है श्रीराम सेंटर में,
0: श्रीराम,
1: बट आई डिडंट नो कि इन्होंने लिखा था।
0: जी जी, इन्होंने ही लिखा था। ये तो था आज के कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों के बारे में जानकारी। तो इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप मार्ग से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रूपये फी क्विंटल कर दिया है, ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीस ने वजीर आजम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूरदराज के खितों को फजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा। वजीर आजम मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया, जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस मौके पर शहरी आबादी के वजीर राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरूआत है। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रूपये की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए एरोड्रम्स और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी, जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी। बाद में वजीर आजम मोदी ने गुजरात के

रहेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद के फालत को फरोग देगा और आलमी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि सानंद का यह प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद दी। हुकूमत ने प्याज का वाफी जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1875 रूपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रूपये फी क्विंटल कर दी गई है। सार्फीन की उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामानी बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नया तस्वर नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इस्तेमाल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इसलाहत भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तस्वर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे, उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% इथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तिसादी शराकतदार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इक्तिसादी शराकतदार है। जनाब एंथनी अल्बानीस ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है जो मजबूत इक्तिसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बायस है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरैन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉ जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ओमान के दौरे के बाद डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो अक्वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल यूएनएससी की 2028-29 की मुद्दतकार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। इसके बाद वो 14 और 15 जुलाई को ब्रसल्स में मुनाकिद होने वाली भारत यूरोपीय यूनियन तजारती व टेक्नोलॉजी कौंसिल के तीसरे इजलास में शिरकत करेंगे और यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हम मनसबों से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। आईएमडी ने कहा कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है, जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वस्ती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले यात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात में 6 रोजा सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस यात्रा का इनेकाद हुकूमत जम्मू कश्मीर के सकाफत के महकमे ने
जम्मू

0: कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साथ मिलकर किया था, जिसके तहत यात्रियों ने गुजरात के श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और दीगर मजहबी तारीखी और सकाफती मकामात का दौरा किया। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है, जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत के 40 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमरीका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्का दर्ज हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में पैराग्वे को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उधर मराकश ने टेक्सास में मुश्तरक मेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रूपये फी क्विंटल कर दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीस ने वजीर आजम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश खिदमत अखबार जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा।
2: दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हक गोई यानी सच बोलना और झूठ से परहेज करना है। बजाहिर ये बात बड़ी अजीब और गैर मंतिकी लगती है, लेकिन वाकया यही है कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक काम हर हाल में और हमेशा सच बोलना है। अगर हम अपने समाज का जायजा लें तो हर इंसान को अपनी घरेलू जिंदगी से लेकर कारोबारी, दफ्तरी, सामाजिक और सियासी उमूर और मामलात में बेशुमार अफराद से साबका पड़ता है। एक घर के सरबराह को अपने अहले खाना से, एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी से, एक दुकानदार को अपने ग्राहक से, एक मैनेजर को अपने मुलाजिमीन से और एक नेता को अवाम से मुख्तलिफ रवाबित और मामलात रखने होते हैं। इसी तरह इन तमाम मिसालों में फरीक सानी के फरीक अव्वल से रवाबित और मामलात होते हैं। अब इन तमाम अफराद की यह जिम्मेदारी है कि वह दूसरे फरीक के सामने किस बयानी या खिलाफ वाकया बात करने से मुकम्मल परहेज करें, लेकिन अमली तौर पर आम तौर पर ऐसा रवैया नजर नहीं आता और शाज़ो नादिर ही कोई फर्द सच्चाई की कसौटी पर मुकम्मल खरा उतरता है। ऐसा फर्द वाकई तारीफ का मुस्तहिक है और उसकी बुलंद हिम्मती और किरदार की पुख्तगी काबिल तकलीद और लायक सद सताइश है। कुरान मजीद जो सारे इंसानों के लिए हिदायत है, इस मज़मून को यूं बयान करता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच बोलने वालों की सोहबत इख्तियार करो। दूसरे मकाम पर इरशाद बारी तआला है कि मेरी यानी खुदा की सिफत यह है कि मैं सिर्फ सच बोलता हूं। एक और जगह फरमाया कि अल्लाह का इनाम उन पर है जो हमेशा सच बोलते हैं। एक और मकाम पर यूं फरमाया, सच बोलने वालों और तकवा इख्तियार करने वालों दोनों की सिफात यकसा हैं। एक और मकाम पर फरमाया कि अल्लाह से ज्यादा सच बोलने वाला कौन हो सकता है और अल्लाह से ज्यादा सच बात का कहने वाला कौन हो सकता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुरान मजीद में कई वाकयात ऐसे नकल फरमाए गए हैं जहां बिल आखिर सच बोलने वाले को कामयाबी और गलबा हासिल होता है। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में जब अजीज मिस्र की जौजा ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया तो उन्होंने जवाब में सिर्फ सच बोला। बिल आखिर वक्त की परेशानी के बाद अल्लाह ताला ने उनको उनकी इस सच्चाई पर किस कदर इज्जत अता फरमाई। इसी तरह असहाब कहफ की हक गोई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत में एक मर्द मोमिन की फिरौन के दरबार में हक गोई से लेकर

0: अच्छा, ये वहां
1: तो
0: से आपको
1: ये मेरे जहन में
0: अलग पैदा हुई थी। लेकिन कह सकते हैं 1982 नहीं, आपका सफर ऑल इंडिया रेडियो से 1975 से शुरू हो गया।
1: जी हाँ जी, अब अफसाने पढ़ने आता था
0: जी।
1: पहले तो नई नस्ल नई रोशनी हुआ करता था एक प्रोग्राम, उसमें अफसाने पढ़ता था
0: जी।
1: फिर डिस्कशंस वगैरह में और फिर युवाणी में और इधर उधर मुख्तलिफ प्रोग्राम में आने लगा।
0: तो बाकायदा तौर पर 1982 में आपने ज्वाइन किया गोरखपुर आकाशवाणी में।
1: हाँ, उसका भी एक मजेदार किस्सा ये है
0: जी
1: कि चूंकि जब स्टूडेंट होता है आदमी तो बहुत सारी चीजों में हाथ पैर मार। मैंने भी कई जगह अप्लाई किया था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की लेक्चरशिप के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था और उसके बाद में मैंने बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो भी एग्जाम दिया था। इत्तेफाक से एक ही दिन मुझे तीन लिफाफे मिले और तीनों में सिलेक्शन लेटर था।
0: क्या बात है।
1: यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का और एसबीआई का मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की लेक्चरशिप उर्दू डिपार्टमेंट।
0: लेकिन आपने लेक्चरशिप के सामने ऑल इंडिया रेडियो को मुंतखब करना बेहतर समझा।
1: मैंने चूंकि वो एक ग्लैमर था उस वक्त, रेडियो इतना उरूज पे था कि रेडियो के नाम से ही तो मैंने सारी चीजें छोड़ी कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो मैं यहां पे आया डायरेक्टरेट में और मेरे सारे क्लियर हो गया और उसके बाद में मैंने गोरखपुर ज्वाइन कर लिया। तो गोरखपुर जब मैं गया तो आकाशवाणी गोरखपुर उस वक्त बहुत उर्वज पे था और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां पे थे।
0: तकरीबन 44 साल पहले।
1: जी हाँ।
0: और हम रेडियो के 90 साल इस वक्त जश्न मना रहे हैं,
1: आधे
0: उसी के
1: उम्र के आधे में
0: यहां जहमत दी गई जी।
1: तो वो उस वक्त वाकई रेडियो बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, बहुत उरूज पे था। और मुझे याद है कि मैं तो एक मामूली सा स्टूडेंट होते हुए निकला था, उसके बाद में मैंने पीएचडी तो बाद में सर्विस में आने के बाद की। लेकिन मैं उस वक्त समझ गया था कि जब मैं कहीं पे जाता था और जब पता चलता था कि रेडियो का आदमी है तो बड़ी इज्जत और बहुत शोहरत हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि भाई वाकई हमने सही फील्ड चुना और मुझे रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत कामयाब रहा। इस दौरान मेरे बहुत सारे मुलाकातें रही, बहुत सारे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा
0: जी, जी,
1: मैंने बेशुमार इंटरव्यू लिए हैं
0: जी सर,
1: और बड़े बड़े शख्सियत।
0: आज कैसा लग रहा है आपको पहली बार इंटरव्यू देकर?
1: देखिए ये होता है कि एक होता शिकार और दूसरा होता शिकारी। तो इस वक्त मैं अपने आप को शिकार समझ रहा हूं
0: जी सर,
1: और आपके जितने तीर होंगे मैं सबको कोशिश करूंगा कि बर्दाश्त कर सकूं।
0: जी सर। तो आपने बड़ी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू लिया, कुछ याद है उनके नाम?
1: बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए उर्दू की जितनी अजीम शख्सियतें उस वक्त थी, सबका नाम लेना तो मुमकिन नहीं।
0: कुछ नाम चंद,
1: फराग गोरखपुरी के बहुत बड़ा नाम था और उनसे लोग घबराते थे।
0: आज भी वो राज कर रहे हैं 100 साल से, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं।
1: तुझे
0: जिंदगी हम दूर से
1: पहचान लेते हैं। तो उनका हमने वहीं उनके घर जाके, जब वो बहुत अलालत थी, बमुश्किल तमाम हमें उनसे मिलने की इजाजत मिली। अब मैं फखरिया कह सकता हूं कि मैंने फिराक को देखा।
0: बिल्कुल, वो कहते भी थे कि आने वाली नस्लों तुम पे फख्र करेंगी कि तुमने फिराक को देखा है।
1: जी जी। तो उनसे मैंने इंटरव्यू लिया। कुरतुल ऐन हैदर,
0: बहुत बड़ा नाम,
1: ज्ञानपीठ
0: अवार्ड मिला।
1: जी जी।
0: खुद फिराक साहब को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला।
1: जी हाँ जी, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड तो फिराक साहब को मिला था उर्दू वाला। उसके अलावा असमत चौखताई का मैंने इंटरव्यू लिया। तो ये
0: बड़ा
1: नाम थे,
0: ये भी बड़ा नाम
1: जी।
0: ये सब हम इनको अदब में पढ़ के आए हैं, देखा नहीं, मतलब उनसे मिले नहीं है, लेकिन ये बड़े नाम हैं।
1: तो ये वैसे फराग साहब से तो बस एक ही मुलाकात हुई थी, लेकिन कुरतुल ऐन हैदर साहिबा के साथ में बहुत वक्त गुजारा उनके साथ में। एक
0: वो मेरे, जब आप दिल्ली में रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में रहती थी,
1: दिल्ली में नहीं, जब वो मैं अलीगढ़ में स्टूडेंट था तभी वो वहां पे एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, तो मुझे बाजाबता उनसे पढ़ने का भी फख्र हासिल है, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं।
0: ये तो बहुत बड़ी बात बताई सर आपने।
1: तो इस तरह बहुत सारे लोगों, तो ये तो अदबी हो गए। स्पोर्ट्स में मैंने,
0: स्पोर्ट्स में जी,
1: स्पोर्ट्स में बहुत बड़े बड़े लोग, सचिन का मैंने इंटरव्यू लिया, कपिल देव का मैंने इंटरव्यू लिया, उसके अलावा लाल अमरनाथ के दो बेटे,
0: हाँ एक
1: सुरेंद्र अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ, उनसे भी मेरी मुलाकातें रही। वेंग सरकर का मैंने, ये तो वो है। हॉकी में काफी लोग, चूंकि मैं खुद हॉकी खेलता था और हॉकी से ही मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी मुझे हॉकी खेलने का मौका मिला और मैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट का कैप्टन भी रहा हूं हॉकी का, और काफी अरसे तक मैं कैप्टन रहा हूं। तो यहां भी मैं हॉकी खेलता था। तो स्पोर्ट्स वालों के भी, फिल्म दुनिया का तो खैर एक ग्लैमर है, उसमें बहुत सारे

0: लोगों से मुलाकातें रहीं।
1: ये अचानक फिल्मी दुनिया की तरफ रुख कैसे हुआ आपका?
0: अचानक तो नहीं हुआ,
1: पहले से ही कुछ मामला था अलीगढ़ से, क्योंकि ये सारे लोग जो फिल्मी दुनिया में गए हैं, दाही मासूम रजा हो या जितने भी हजरात हैं बड़े बड़े,
0: दाही मासूम
1: वो सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए।
0: जी जी, दाही मासूम रजा साहब से मेरी मुलाकात अलीगढ़ में हुई थी जब वो अलीगढ़ छोड़ चुके थे, आते जाते रहते थे, तो वहां मुलाकात हुई थी। उसके बाद में इत्तेफाक से मैं जब इंटरव्यू था मेरा, जैसे मैंने बताया कि उसमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, उससे पहले भी एक कॉलेज में मेरा इंटरव्यू था, तो उसके लिए मैं गया था वहां पे। तो मजरू साहब से कभी ताल्लुक नहीं था, लेकिन काजी अब्दुल सत्तार जो मेरे उस्ताद थे,
1: जी दोनों बड़े नाम है, एक अफसाने के ताल्लुक से, शायरी के ताल्लुक,
0: तो काजी साहब से मैंने कहा कि हजरत कोई आप बॉम्बे में आपका जान पहचान का हो तो मेरे लिए एक सिफारिशी लेटर लिख दीजिए। तो उन्होंने मजरू साहब को खत लिख दिया था मेरे बारे में।
1: तो मतलब आपको मजरू का शेर आप पे सादिक आया कि मैं अकेला ही चला था जानी भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कानवा बनता गया।
0: जी जी जी, तो खैर मजरू साहब से मुलाकात, वो भी एक अजीब व गरीब किस्सा है, लेकिन वो बहुत तवील हो जाएगा।
1: जी,
0: मजरू साहब के घर ही राही मासूम रजा आए हुए थे, वहीं पे उनसे मुलाकात हुई। मजरू साहब ने कहा भाई ये नौजवान बड़ा अच्छा नसर लिखता है, तो इसको कुछ काम दो। और उस वक्त महाभारत की तैयारियां चल रही। राही साहब ने मुझे एक एड्रेस पर्चे पे लिख के दे दिया कि इस पे कल पहुंच जाना। दूसरे रोज मैं उनके बताए हुए एड्रेस पे पहुंचा, तो वहां पे काफी शूटिंग वूटिंग की और लोग डायलॉग भी याद कर रहे थे और गरज के बहुत कुछ था। तो वहीं पे राही मासूम रजा साहब ने मुझसे कहा कि हिंदी लिख लेते हो? मैंने कहा बहुत अच्छे लिख लेता हूं। तो उन्होंने एक साहब के पास बिठा दिया, जो मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है तफसील से। तो वहीं पे महाभारत के जो कुछ स्क्रिप्ट वो लिखते थे अलग अलग, तो जो रिसर्च भी हो रही थी उनके अंडर में, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे, तो मैंने एक साहब के पास बिठा दिया, उन्होंने वो मुझे डिक्टेट करते रहे, मैं लिखता रहा। अब वो थे भगवद गीता मलयालम या किसी और जबान में थी, वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे और मैं लिख रहा था। तो ट्रांसलेशन भी उनका ऐसा था कि वो किताब पढ़ते थे और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हिंदी में ही पढ़ रहे हैं। तो वहीं से मेरा ताल्लुक हुआ। उसके बाद राही साहब के साथ में काफी काम करने का मौका भी मिला, तो वो एक फिल्म दुनिया में एक तरह का कदम था, तो मैंने आजमाया किस्मत और वहां पे मैं गया।
1: तो उसमें कुछ आपका फिल्मी कहानियों में भी कोई रोल है डायलॉग लिखने में? जो
0: बहुत।
1: तो अब गोरखपुर से आपको ट्रांसफर मिला होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि
0: गोरखपुर से मैं
1: चाहते हैं कि जो आपके रेडियो के सफर हैं,
0: जी जी जी,
1: वो उनके बारे में जरा सा बताएं, गोरखपुर का, फिर रामपुर और फिर जहां जहां आपने किया, तो आपके क्या तजुर्बात रहे?
0: तजुर्बात देखिए, गोरखपुर के बहुत अच्छे तजुर्बात थे और गोरखपुर मुझे बहुत अजीज था और आज भी है। बहुत मुखलिस लोग वहां के, बड़े मेहमान नवाज लोग। जब गोरखपुर छोड़ रहा था तो मेरी आंखें नम थी कि पता नहीं ऐसा माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब रामपुर आया तो पता चला कि ये तो उससे भी ज्यादा तो रामपुर ने तो मुझे बहुत, रामपुर ने पजीराई की, इज्जत अफजाई की।
1: तो अदबी गहवारा भी कहा जाता है, उर्दू शायरी का तीसरा स्कूल भी कहा जाता है।
0: जी हाँ जी हाँ, तो रामपुर में ऐसा रम गया कि मैं खुद अपने आप को रामपुरी कहते हुए फख्र महसूस करता हूँ। मेरा वतन सानी समझ लीजिए रामपुर है, काफी वक्त गुजारा मैंने, और मेरे दो बच्चों की पैदाइश वहीं पे हुई, तो ये इस लिहाज से भी मुझे रामपुर बहुत अजीज।
1: बच्चों का तो हो ही गया वतन वो।
0: हाँ, तो रामपुर में बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बड़े अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत शोरा हजरात अदबी जौक शौक के लोग वहां पे बहुत हैं, बल्कि वहां के जो घरेलू जबान है वो भी अदबी जबान है, ये रामपुर की ये खसूसियत है उसकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा बहुत सी जगह पे गया मैं।
1: कुछ रामपुर से आप दिल्ली आ गए?
0: रामपुर से मैं दिल्ली आया,
1: ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से मुंसलिक हो गए।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: यहाँ आके फिर कैसा महसूस किया आप?
0: यहाँ आके तो चूंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे शनाख्त मुश्किल है, सब गुम हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का कि मेरी शनाख्त कायम रही। उर्दू सर्विस में भी मैंने प्रोग्राम अच्छे किए, और उसके अलावा भी फिर चूंकि अदबी फील्ड में था तो अफसाने और नॉवेल और ड्रामे, इस तरह के जलसों में भी जाता रहा और तख्लीकात भी पेश करता रहा, तो मुझे उसमें भी पजीराई हुई।
1: ऐसी बात मशहूर है कि जो कम्युनिटी रेडियो हमारे हिंदुस्तान में आता है,
0: जी जी,
1: उसके मौजूद आप हैं, इसके बारे में कोई बात बताएं हमें कि किस तरीके से इसका आगाज हुआ?
0: देखिए ये तो कम्युनिटी

0: रेडियो नाम था नहीं उस वक्त, ना मैं जानता था
1: जी।
0: लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब आकाशवाणी गोरखपुर में मैं था, तो गोरखपुर के पास ही मघर एक जगह है
1: जी, शायद उनका वहां से मजार है वहां।
0: और मघर में उनको दफनाया गया, बल्कि उनकी समाधि है। तो उनके एक मेला होता है, उनके उर्स भी होता है और समाधि का एक मेला भी होता है। तो उसके कवरेज के लिए मैं गया था वहां पे, देखा तो मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग थे, बहुत से आदिवासी भी आए हुए थे और मुहज्जब लोग भी थे। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा माहौल है। तो वहीं से मैंने अपने डायरेक्टर से इजाजत ली कि मैं यहां से एक प्रोग्राम करना चाहता हूं। कम्युनिटी में किया करता था रेडियो कम्युनिटी का, बहुत सारे गेम्स के आते थे। तो मैंने उनसे इजाजत ली, तो वहीं से मैंने कमेंट्री शुरू की। तो कमेंट्री न होके वो कुछ प्रोग्राम्स वहां के लोगों को बुला देता था, और ऐसे टेंट हमने लगाया था उसमें, वो तरह का रेडियो स्टेशन ही वहां पे कायम किया हमने। तो कुछ दिन वहां पे गुजारे और आकाशवाणी गोरखपुर से उसको ब्रॉडकास्ट
1: होता। मतलब स्टूडियो से बाहर आपने प्रोग्राम किए और उसको ऐसे ही बना दिया माहौल जैसे कि स्टूडियो से प्रोग्राम।
0: जी जी, वो डायरेक्ट चूंकि लाइन पड़ी हुई थी तो उसमें हमने प्रोग्राम
1: और की। कोशिश यही थी कि जो आसपास के जो कम्युनिटी के लोग,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लोगों को चीजें पहुंचे वहां।
0: जी हाँ,
1: ये तजर्बा आपने किया और ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा। जब आपने रेडियो से इजाजत ली और फिर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अनवर जमाल के दुआई मास कम्युनिकेशन सेंटर में आप आ गए एज एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से
0: जी,
1: तो फिर ये तजर्बे को आपने अमली जामा भी बना
0: फिर ये हुआ कि कम्युनिटी रेडियो
1: कैसे आपका सिलेक्शन हुआ,
0: राइज हो गया था
1: रेडियो का एक शख्स और अचानक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर।
0: जी, इसके भी एक ये है कि मैं चूंकि पीएचडी तो था ही, तो एलिजिबल था, मैंने एक पोस्ट निकली वहां पे और मैंने अप्लाई किया। इन बिटवीन ये हुआ था कि यहां मेरा प्रमोशन हो गया था, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर तो था ही मैं,
1: डिप्टी डायरेक्टर
0: और स्टेशन डायरेक्टर होके मुझे भेजा जा रहा था गुजरात अहमदाबाद स्टेशन पे। तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए कि मेरे बच्चे, दोनों बच्चों का बोर्ड था, एक का 10th और एक का 12th, न बच्चों को छोड़ सकते थे न ले जा सकते थे। तो उसी वक्त चूंकि वहां पे एक पोस्ट निकली हुई थी जामिया में, मैंने अप्लाई किया था। इंटरव्यू इत्तेफाक से बहुत अच्छा हो गया और वहां के जो उस वक्त वाइस चांसलर थे शाहिद मेहदी साहब, तो वो उनके जहन में था कि वो एक कम्युनिटी रेडियो वहां कायम करना चाहते थे। जब मेरी बातचीत हुई इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा, तो मैंने ये जिक्र कर दिया कि मैंने वहां पे इस तरह का प्रोग्राम। इत्तेफाक से ये भी था कि यहां पे एक सर्च कमेटी बनी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में, 3 लोगों को ये जिम्मेदारी दी थी, उनमें से एक मैं था कि कम्युनिटी रेडियो कैसे कायम किया जाए। मैंने उन्हें सजेशंस दिए और कम्युनिटी रेडियो का एक प्रपोजल पास हो चुका था और ये तय हुआ था कि पहले इंस्टीट्यूट को दिया जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। जामिया ने अप्लाई किया था, उनको वो मिल रहा था। मैं इत्तेफाक से वहां जब इंटरव्यू के लिए गया तो शाहिद मेहदी साहब जो वाइस चांसलर, उन्होंने पूछा मुझसे बाकायदा कि आप रेडियो संभाल सकते। मैंने कहा जी, बहुत अच्छा तजुर्बा तो था मुझे, 22.5 साल मैंने आकाशवाणी में गुजारे थे। तो शायद इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं वहां पे चला गया।
1: और फिर आपने जब वहां ज्वाइन कर लिया तो बाकायदा तौर पर,
0: हाँ, मैं
1: जामिया कम्युनिटी रेडियो का,
0: जामिया कम्युनिटी रेडियो का मैं इंचार्ज।
1: किसी किस्म की कोई दिक्कत या क्या तजुर्बा रहा आपका? उससे पहले कम्युनिटी रेडियो बन चुके थे?
0: नहीं, इंडिया में मैंने, हाँ, इंडिया में सिर्फ एक कम्युनिटी रेडियो था, अन्नामलाई
1: में,
0: मद्रास में।
1: तो दूसरा
0: हमने,
1: किस तरह के उसमें तजुर्बात रहे, कैसे लोग प्रोग्राम करने आते थे आते थे?
0: देखिए, जब ऑल इंडिया रेडियो में किसी को भी बुलाते हैं हम, तो उसको चेक देते हैं
1: जी।
0: वो चाहे एक डायलॉग बोलने के लिए बुलाया
1: जी,
0: तो उस जहन में तो वो था। अब कम्युनिटी रेडियो में इस तरह का कोई तस्वर नहीं पेमेंट का, तो वहां मुश्किल ये हुई कि शुरू में तो खुद ही प्रोग्राम लिख के खुद ही ब्रॉडकास्ट किया, न वहां अनाउंसर था, न कोई वहां पे चपरासी था, न कुछ था। बस एक स्टूडियो था जो मुझे दे दिया गया था, एक इंजीनियर मेरे साथ में थे जो मेंटेन करते थे। तो मैं चूंकि इंचार्ज था, तो चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक की पोजीशन मेरी थी वहां पे
1: जी।
0: तो मैं सुबह आके क्लासेस पढ़ाना, वो अलग चीज है,
1: वो
0: ये एक्स्ट्रा काम था, तो ये मैंने किया, बड़ा अच्छा।
1: और एक खूबसूरत बात यह है कि आपने वहां भी तालिब इल्मों को
0: रेडियो ही पढ़ाया, फिर स्टूडेंट्स को मैंने शामिल किया कम्युनिटी रेडियो में। फिर
1: दूसरे तरीके से रेडियो का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पहले इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट

0: मेरे दो अफसाने अफसानों के मजमूए आ चुके हैं और 5 नावल आ गए हैं मेरे।
1: जी, अफसाने के जो मजमूए हैं आपके, उनके कुछ नाम?
0: पहला मजमूआ है वो दिन, और दूसरा मजमूआ है उसका नाम है ख्वाबनुमा।
1: जी, और 5 नावल भी आ गए।
0: 5 नावल भी आ गए हैं।
1: ये जो हैं सातों अफसाने नावल मंजर आम पे
0: है। उसके अलावा किताबें मेरी बहुत सारी हैं। मैंने रेडियो पे बहुत, इस टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम मेकिंग पे मैंने किताबें लिखी
1: हैं। मास मीडिया से रिलेटेड भी आपकी किताबें हैं?
0: जी, क्योंकि
1: उनके नाम बता दे तो हमारे तालबिल मुझसे फायदा उठा सकते हैं जो मीडिया के लाइन में जाना।
0: जी जी, वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ये इंग्लिश में है मेरी किताब।
1: उर्दू में भी कोई है?
0: उर्दू में भी है, उर्दू में है हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्ट के रुमूज।
1: अच्छा, हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्ट के रुमूज।
0: जी, बहुत सारे कोर्स में पढ़ाई जाती है, तो ये है। उसके अलावा मैंने फिल्मों पे बहुत लिखा, फिल्मों पे एक किताब मेरी जो बहुत मशहूर हुई है, और खासतौर से हिंदुस्तान भर में तो हुई है, पाकिस्तान में भी उसकी काफी पसीराई हुई है, वो है हिंदी फिल्मों में मुस्लिम खवातीन या मुस्लिम अदाकारा
1: हीरोइंस।
0: तो उसमें मैंने वो काम किया, उसमें मुझे अवार्ड भी मिला था मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट से।
1: बहैसियत एक अफसाना निगार, आज के अफसाने को कहाँ देखते हैं आप तो खुद लिख रहे हैं मौजूदा दौर में।
0: देखिए, बदलाव तो एक नेचुरल है, चेंज आ गया है, अफसाने बहुत आगे बढ़ गए हैं। अफसानों का ट्रेडिशनल अंदाज जो था, वो जो प्रेमचंद का था, उसके बाद मंटो और असमत चुगताई और कुरतुल्लैन हैदर, और फिर उसमें हमारे उस्ताद काजी अब्दुल सत्तार, उनका अंदाज अलग था, वो सुनहरी दौर था। उसके बाद में जो अफसाना आया है उसमें अलामतें और बहुत सारी चीजें आ गई और तजरीद आ गई है। पहले चूंकि तहरीक के तहत अफसाने लिखे गए, अदबी तहरीक हुआ करती थी, उसके बाद में तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीद तहरीक, फिर
1: जदीद भी आई। जी,
0: उसके बाद में अब तहरीकें सारी खत्म हो गई है,
1: मिला जुला
0: है, और जिसकी मर्जी जो है वो लिख रहा है।
1: प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद साहब, जो कि जीआर सैयद साहब के नाम से मशहूर हैं, अभी उनसे रूबरू प्रोग्राम के तहत हम गुफ्तगू कर रहे थे। और सामिन, अब ये गुफ्तगू को हम यहीं पे खत्म करते हैं, इजाजत दें, खुदा हाफिज।
0: शुक्रिया। बात
2: सामिन, अभी आप रूबरू के तहत जनाब जीआर सैयद से उनकी बातचीत सुन रहे थे, आपसे महवे गुफ्तगू थे जनाब शुएब रजा खान। पेशकश थी इंतजार सैफी की। इसी के साथ अपने मेजबान फरीन इकबाल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।

संभल के गौरी, तेरा जग है दीवाना, जो अखियां मिलाना, कदम जो उठाना, तो देखभाल के।

0: वो गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी गोरी गोरी बढ़ के बुदन चीर भी चक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय नाच कर

0: ही हो चल पीछा छोड़ हो गोरी और नटखट और खटपट और बनखट और झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना और मीठे बहना और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय वो तेरी तिरछी नजरिया
0: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया होय होय ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया।

दे सैया ओढ़नी, खोले दे सैया।

0: हल
1: हमें क्या सोचते
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल ले दूंगा तू जो मांगे एक बार मत के चल जरा लचक लचक के जरा मटक मटक के।

0: موسیقی شنکر جگشن کی
1: چلت مسافر مولیا دے بندرے والے

के सब रस ले लिया रे बिजली वाले मुनिया।

0: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या बीड़ा के सब रस ले लिया रे बिछड़े वाले मुनिया
1: बीड़ा के सब रस।

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और इसे सुनिए गीतों भरी कहानी मेरे साजन।

लड़कों की पूरी टीम घर के अंदर घुस आई थी। लड़कों की इस टोली में बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे। रामदास और कलीम साहब को जिस बात का डर था वही हुआ। होली के रंगों में रंगी इस टोली से बचकर ही वो घर के अंदर आ छुपे थे। सबने मिलकर दोनों को होली के रंग में रंग ही दिया और सब लोग मिलकर गा उठे।

में इतना शोर मचा था कि रमना घबरा कर छत पर जा पहुंची। नीचे झांक कर देखा, हर घर होली के रंगों की रंगीनियों से जगमग कर रहा था। घरों की दीवारों पर रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्ब रंग बिरंगी रोशनियां बिखेर रहे थे। शाम का वक्त था। अचानक रमना को अपने बचपन की साथी शहला की याद आई। आज ईद मिलादुन्नबी है। इस खुशी के मौके पर शहला क्यों अभी तक नहीं आई, उसने सोचा। घर में कुछ शोर कम हो तो वो नीचे जाकर बड़ी माँ से शहला के बारे में पूछेगी। अचानक उसकी निगाहें आसमान की जानिब उठ गईं। उसने देखा फलक पर पूर्णमासी का चांद सितारों की बारात लिए पूरी आबोताब के साथ अपने जलवे बिखेर रहा था। निगाहें चांद पर जम कर रह गईं। सोचों का दायरा बढ़ता ही चला गया। आज से 2 साल पहले राजा ठीक आज ही के दिन उससे जुदा हुआ था। होली का गुलाल उसके गालों पर लगाते हुए बोला था, डियर रमना, तुम मेरी हो, बस मेरी हो, किसी और की मत हो जाना। मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। 10 महीने के लिए ही तो जा रहा हूं और तुम तो ऐसे उदास हो जैसे हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूं। बेफिक्र रहो, मैं लौटकर अपने गांव ही आऊंगा। दादू बहुत बीमार है, मुझे जाना होगा। मेरे अलावा उनका कोई और है भी तो नहीं। और रमना अपना रोना भूल गई थी। राजा ने उसे सीने से लगा लिया, कह उठा, रमना तुम्हें अपने राजा पर भरोसा है ना? डबरबाई आंखों से रमना ने हां में सर हिलाया था। राजा चला गया। रात दिन लम्हा लम्हा कैसे गुजरते थे अपने राजा की जुदाई में, ये सिर्फ रमना ही जानती थी। राजा और रमना एक दूजे को बराबर खत लिखते रहे। खत पढ़कर दोनों का दिल एक दूजे से मिलने के लिए तड़प उठता था।

दोनों के घर के बीच में बस एक छोटी सी दीवार ही तो थी, जिस पर बैठकर रमना और शहला सारा सारा दिन बातें किया करती थी। शहला की माँ आकर दोनों को आहिस्ता से प्यार भरी चपत लगा दिया करती। रमना और शहला होले से मुस्कुरा दिया करती। रमना की माँ बचपन ही में उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी, इसलिए वो शहला की माँ को ही बड़ी माँ कहकर बुलाया करती थी। शहला की माँ आमना बेगम ने भी अपने बच्चों की तरह रमना को प्यार दिया था। हिंदू मुस्लिम दोनों के घरों का यह मिलन देखकर आसपास के लोग रश्क किया करते थे। शहला के अब्बा कलीम साहब और रमना के पिता रामदास शाम का खाना हर रोज एक साथ बैठकर ही खाया करते थे। ये घर बहुत पुराना था, हवेली नुमा, जो उनके पुरखों की निशानी थी। रामदास के दोनों बेटे शहर में जाकर बस गए थे और कलीम साहब का बेटा अमरीका में जा बसा था। कलीम साहब ने 6 महीने पहले शहला की शादी कर दी थी। उस वक्त रमना के दिल पर क्या गुजरी थी ये वही जानती थी। शहला भी कम रमना को छोड़ना चाहती थी, मगर क्या करती, ये तो इस दुनिया का चलन है। सब घर वालों को रोता बिलकता छोड़कर शहला विदा हो गई अपने पिया के संग।

आज रह रह कर रमना को शहला की याद आ रही थी, क्योंकि जब से शहला की शादी हुई थी वो बस दो ही मर्तबा मैके आई थी। शहला के शौहर डॉक्टर थे, पास के एक गांव में लोग हैजे के मरज में मुब्तिला थे। शहला और उसके शौहर नवेद को वहां जाना पड़ा था। शहला ने मायके में इत्तला भिजवाई थी कि वो मिलादुन नबी के दिन घर में हो रहे मिलाद में जरूर शरीक होगी। होली और मिलाद की खुशियां रमना के साथ ही मिलकर मनाएगी, मगर वो अभी तक नहीं आई थी। शाम हो चली थी, कब से रमना को इंतजार था अपनी जिगरी दोस्त प्यारी सी बहन का। निगाहें बार बार शहला को ढूंढ रही थी, अपने दिल की हर बात शहला ही से तो वो शेयर किया करती थी। अचानक अपनी आंखों पर नर्म नर्म हाथों का लम्स पाकर वो खुशी से झूम उठी, बोल उठी, मैं गलत नहीं तो मेरी जान शहला है। शहला खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, दोनों एक दूजे से लिपट कर खूब रोई थी, गिले शिकवे किए थे। पीछे से मर्दाना आवाज सुनकर वो एक दूसरे से अलग हो गई, देखा तो सामने नवेद खड़े मुस्कुरा रहे थे दोनों का इतना प्यार देखकर। अरे अब दोनों नीचे चलोगी या फिर यही खड़े खड़े जुदाई के अश्क बहाती रहोगी? जीजा जी प्लीज। अरे भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या अपने जीजा जी को भूखा ही रखोगी, बड़े जोरों की भूख लगी है। तीनों हंसते हुए नीचे चले जाते हैं और उस वक्त तक घर में लोगों की भीड़ भी कम हो चुकी थी। तभी रामदास बोले थे, बेटी रमना जल्दी से खाना लगाओ, दामाद जी इतनी दूर से चलकर आए हैं, भूख लगी होगी। रमना और शहला किचन की जानिब बढ़ती चली गई थी। कलीम साहब और रामदास नवेद से गांव के लोगों के हालात मालूम करने लगे। रमना और शहला खाना लगाने की तैयारी करने लगी, तभी अचानक शहला बोल उठी, रमना अच्छा ये तो बता राजा कब आ रहा है? रमना की आंखें छलक आई, रमना की आंखों से आंसू जारी हो गए। अरे अरे क्या हुआ स्वीट हार्ट? शहला रमना मुश्किल से बोल पाई थी, राजा क्या कर गया था, 10 महीने में ही लौट आऊंगा, आज पूरे 2 बरस हो गए हैं, कितना संग दिल है वो। अरे पगली तुम क्यों दिल छोटा करती है, खत तो तुम्हें बराबर लिखता है ना, अपनी मजबूरी तुम्हें हर खत में लिखता है। असल में उसके दादू बहुत बीमार हैं, चल फिर भी नहीं सकते, और फिर राजा के अलावा कोई और है भी तो नहीं उनका, इसलिए तू फिक्र मत कर, अब की बार आएगा तो मेरी प्यारी गुड़िया को डोली में बिठा कर ले जाएगा, बहुत अच्छा लड़का है राजा। और रमना होले से मुस्कुरा दी थी। अच्छा रमना तू जरा अपना ये रोता मुखड़ा पानी से धो डाल, खाना मैं लगा कर आती हूँ। शैला खाना लेकर चली जाती है और रमना राजा के ख्यालों में डूब जाती है।

रमना का ख्याल टूटा तो देखा सामने शैला खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो कब से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बगौर देख रही थी। शैला को सामने खड़ा देख रमना झेप सी गई। अच्छा अब फ्रेश हो जा, माँ ने ढेर सारे मेवे डालकर खीर बनाई है, नवेद तो उंगलियां चाटते रह गए हैं, चल जल्दी से, बड़े जोर से भूख लगी है, शैला पेट पर हाथ फेरते हुए बोली थी। और रमना खीर का सुनकर जल्दी मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए बोली थी, बड़ी माँ के हाथों की खीर बड़ी ही लजीज होती है शैला, पिताजी तो अगले दिन भी सुबह बड़ी माँ के हाथों की खीर खाकर ही जाते हैं, और बड़ी माँ भी तो पिताजी के लिए खास तौर पर खीर उठाकर अगले दिन सुबह के लिए रख देती है, बड़े अब्बा को भी नहीं देती है पिताजी की खीर। हाँ रमना मैं जानती हूँ, हमारे घरों का ये प्यार हमेशा बना रहे, हर नमाज में यही दुआ करती हूँ मैं, और अम्मी तो इन घरों की सलामती के लिए हर वक्त ही दुआ गो रहा करती थी। हाँ शैला मैंने अक्सर बड़ी माँ को दुआ में कहते सुना है, या अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करना, किसी की बुरी नजर हमारे घरों को छुए भी नहीं। अभी वो बातें कर ही रही थी कि आमना बेगम दो बड़े बड़े प्यालों में खीर लेकर उधर ही आ गई। अरे पगलियों, बातें करने को सारी रात पड़ी है, कुछ खाना नहीं है क्या? लो पहले खीर खा लो, बातें बाद में बनाना, प्यार से डांटते हुए आमना बेगम ने कहा था। खीर के प्याले रमना और शहला को थमा गई थी। खीर की खुशबू सूंघते ही दोनों सब कुछ भूलकर मजे ले लेकर खीर खाने लगी। अरे बच्चों कुछ पकवान भी बना है, आकर कुछ खा लो। नहीं बड़ी माँ अब कुछ और नहीं, खीर इतनी ज्यादा थी कि कुछ और खाने की गुंजाइश ही नहीं है, दोनों एक साथ बोली थी। अरे रमना चल जरा देख तो, बाहर चलकर देखते हैं, बड़ा शोर हो रहा है, शहला ने कहा। नहीं शहला तू जा, मेरा मन नहीं है। अरे चल ना, हाथ पकड़कर घसीटते हुए शहला रमना को बाहर ले जाती है।

0: ఓ చార్జా బాబీ,
1: ఏ చార్జా రాబీ.

देखा कितनी रौनक है गली कूचों में, कहीं होली का शोर है, कहीं ईद मिलादुन्नबी की खुशी। कैसे लोग मिलकर होली और ईद की खुशियां मना रहे हैं। काश ये खुशियां हमेशा ऐसे ही मनाई जाती रहें, हम लोगों का आपसी प्यार इसी तरह बरकरार रहे। कहते हुए शहला की आवाज भर्रा गई। होली मनाते लोग आंखों से ओझल हो गए, मगर एक चेहरा होली के रंगों में रंगा शनासा वहीं खड़ा रहा। रमना और शहला कुछ समझ पाती इससे पहले उनके गाल गुलाल के रंग से लाल हो चुके थे। हाथों का लम्स गालों को छूते ही रमना तो जैसे पिघल ही जाती। अगर राजा आगे बढ़कर अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम ना लेता। दोनों का प्यार भरा मिलन देखकर शहला खुशी में झूमती हुई अंदर चली गई और रमना अपने साजन की मजबूत बाहों में समाती चली गई।

गानों को स्टेज पर अमर कर दिया। सर जमहूरिया ने मजीद कहा कि तीजानबाई ने अपनी गैर मामूली सलाहियत, लगन और बरसों की मुसलसल रियाजत के जरिए भारत और बैरून मुल्क छत्तीसगढ़ की पांडवानी रिवायत को नई पहचान दी। उन्होंने कहा कि भारत के सकाफती विरसे के फरोग में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है, जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्जे हरारत के 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमरीका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्के दर्जे हरारत का सामना है। पूरे शुमाल मशरकी अमरीका और वस्ती अटलांटिक साहिल पर शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी कर दी गई है। न्यूयॉर्क सिटी हुकाम ने शदीद गर्मी से निमटने के लिए सिलसिलेवार इकदामात का मुतारिफ कराए हैं, जिनमें सैकड़ों सरकारी इमारतों को कूलिंग सेंटर्स में तब्दील करना, कमजोर ग्रुपों पर नजर रखने के लिए रजाकारों की तैनाती और शहर भर में अवामी स्विमिंग पूल्स के खुले रहने के अवकात में तौसी शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इस्लाहात भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008 के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे, उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले यात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात में 6 रोजा सोमनाथ सविभान यात्रा 2026 कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस यात्रा का इनेकाद हुकूमत जम्मू कश्मीर के सकाफत के महकमे ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस JKAACL के साथ मिलकर किया था, जिसके तहत यात्रियों ने गुजरात के श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और दीगर मजहबी तारीखी और सकाफती मकामात का दौरा किया। यात्रा के दौरान यात्रियों ने जम्मू कश्मीर और मुल्क के लोगों में अमन सलामती, रवादारी, खुशहाली, कौमी यकजहती और बेहतरी की दुआ की। यात्रा के पुरअमन इख्तिताम के तौर पर यात्रियों से भरी खसूसी ट्रेन अहमदाबाद की साबरमती रेलवे स्टेशन से बहफाजत जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंची। यात्रियों ने महफूज वापसी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया और सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 को रूहानी तौर पर फैज हासिल करने वाला तजुर्बा करार दिया। उन्होंने गुजरात के लोगों और हुकूमत की जानिब से की गई मेहमान नवाजी की तारीफ की और कहा कि इस यात्रा में सकाफती इफाम तफहीम, जज्बाती यकजहती और कौमी इत्तेहाद को बढ़ावा देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरियात को मुस्तहकम किया। फुटबॉल आलमी कप में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुए को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। टीम के कप्तान किलियान एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 17वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। इधर मराकश ने ह्यूस्टन टेक्सास में मुश्तरका मेजबान कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। सुफियान रहीमी ने खेल के इजाफी वक्त में गोल करके मराकश को फतेह दिलाई। इससे कबल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के एक दिलचस्प मुकाबले में इजाफी वक्त के बाद केपोर्डे को 3-2 से हराया और प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में बेल्जियम की इलिसे मैटनस ने कल बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरी दर्जाबंदी की हामिल कजाकिस्तान की एलेना राबिकिना को तीसरे राउंड में 7-6 और 6-1 से हराकर खवातीन के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एक दूसरे उलटफेर के तहत फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने

0: तीसरी दर्जाबंदी की हामिल पोलैंड की इगा श्वियातेक को तीसरे राउंड में 7-6 और 6-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज से खलीजी मुल्कों अमरीका और बेल्जियम समेत 6 मुल्कों के दौरे पर होंगे। वेनेजुएला में जलजलों के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 2954 हो गई है। मशरकी अमरीका में जारी कशीदगी गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव बढ़ रहा है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मेरे सुर मेरा तुम्हारा, इस प्रोग्राम में सुनिए चंद फिल्में दो गाने। आगाज रॉक स्टार फिल्म के कवाली से, आवाजें एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की। कलाम जावेद अख्तर का, मौसीकी एआर रहमान की।

0: नैतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: सबसे पहले तो बात इस पर कि राजस्थान के इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए उनका शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए एक नई व्यवस्था की एक नई आधारशिला रखी। आइए सुनते हैं कि भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करने और विभिन्न मेगा परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: चुनाव की चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता
1: है। अशोक टंडन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
1: पूरे कार्यक्रम को देखें तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम है या फिर एक विकसित भारत 2047 की जो रूपरेखा लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं उस दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
3: बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जो कोई भी योजना हाथ में लेते हैं उनका वो वहाँ पर केवल नींव पत्थर नहीं लगाते बल्कि उनको पूरा होने पर उनका उद्घाटन भी करते हैं। और उसी कड़ी में हम जब देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर गए तो उन्होंने जो है सबसे पहले तो जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किया
1: जी,
3: और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया, और उसके बाद बालोतरा पे गए जहां उन्होंने 1,00,000 करोड़ से भी अधिक की

0: और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम से ये जिस रूप में विकसित हुआ है, इसमें 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इसमें लगभग 80,000 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है।
1: जी,
0: और इसके उत्पादन की क्षमता की हम अगर बात करें तो पेट्रोकेमिकल क्षमता जो है 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और इस रिफाइनरी का जो कुल मिलाकर उत्पादन है वो 26% जो है वो बड़ा है और ये जो दक्षता और स्थिरता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। तो इसी ऊर्जा के संबंध में पेट्रोकेमिकल की तो हमने बात की, आपने जैसे कहा कि सौर ऊर्जा की भी बात की है प्रधानमंत्री ने, और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि राजस्थान में तो सूर्य देवता की बहुत कृपा रहती है और इसीलिए यहाँ पर जो सौर ऊर्जा का है 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया।
1: बिल्कुल,
0: तो इससे लगभग 5,500 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है और इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित 24.22 लाख सौर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। यानी प्रधानमंत्री ने ये जो 300 मेगावाट के बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र के साथ समर्पित किया तो इससे स्वदेशी रूप से निर्मित 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।
1: जी टंडन जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस उनकी कही गई इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि उर्वरक संकट भी देखा गया है बीते दिनों में वैश्विक स्तर पर और दुनिया भर में यूरिया महंगा हुआ, लेकिन भारत में किसानों को सब्सिडी के साथ सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह के जो फैसले सरकार लेती है, क्या लगता है कि इनका किसानों और कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक सकारात्मक असर पड़ता होगा?
0: मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुल मिलाकर पेट्रोकेमिकल उत्पादन की बात है, इसमें पेट्रोकेमिकल जो कुल मिलाकर सारा इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की जो बात की गई है, उसी में देखने को ये मिलता है कि पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेंगे। तो इससे उद्योगों में और जैसे आपने कहा कि उर्वरक इत्यादि में भी उनके उत्पादन और हम जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बनेगी। तो कुल मिलाकर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार इस पर बहुत ही महत्व देते आ रहे हैं और अलग अलग समय पर योजनाओं को लागू करते हैं, तो देश में ऊर्जा संकट जो है और जैसा कृषि में भी हम देखते हैं कि उसमें भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमें ये सब देखने को मिला।
1: राजस्थान में 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। कहा जा सकता है कि सिर्फ युवाओं के विश्वास को बढ़ाने का एक अवसर नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमताओं को भी मजबूती प्रदान करना, आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, इस पर भी प्रधानमंत्री का काफी फोकस रहता है, तो आप किस पर क्या विचार होंगे?
0: देखिए, आज जो 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए वो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वो चुनकर आए, यानी उनकी नियुक्ति जो हुई इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी क्षमता से उसके टेस्ट पास किए और ये राजस्थान के लगभग सरकार के लगभग सभी विभागों से जुड़े हुए, और हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि सब नौजवान जो है वो 20 से 25 साल की उम्र के थे और उनको नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री से जब मिले तो वो गदगद हो रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनमें से कुछ लोगों से बात भी की। तो ये जो समस्या रहती है कि भारत में जो है हम लोग रोजगार सृजन करने के बारे में बात करते हैं नौकरियों की, तो प्रधानमंत्री का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम नौकरी पाने की बजाय नौकरी देने वाली बात करें जो स्टार्टअप के जरिए, लेकिन सरकार के पदों पर भी जो नियुक्तियां होती है तो राजस्थान सरकार के पदों पर जो नियुक्तियों के आज 54,000 दिए गए नौजवानों को नियुक्ति पत्र वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था।
1: टंडन जी, अब गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो रही है, OSAT सेमीकंडक्टर संयंत्र का शुभारंभ होना एक बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।

0: भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में ये सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में जो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है, ये वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है। क्योंकि ये जो परियोजना है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, उस मिशन के तहत स्वीकृति पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रूपये से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है
1: जी।
0: और अगर ये पूर्ण क्षमता के साथ जब संचालन में आ जाएगा तो इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप की होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे विकास के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में सहयोग करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ऐसा संयंत्र है, ये ऑटोमेटिव, औद्योगिक, दूर संचार, 5G, इंटरनेट और इन सब क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है और उस क्षेत्रों के जो ग्राहकों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा। क्योंकि चिप की कमी के बिना, चिप की कमी होने से इन सब क्षेत्रों पर असर पड़ रहा था और अब ये जो संयंत्र, ये वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेज डिजाइनिंग और विश्लेषण, टेस्ट प्रोग्राम, ये सब निर्धारित और इन सब को ये सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेवाएं जो है, ये जो आज संयंत्र प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, उनकी सेवाओं को ये प्रदान करेगा। तो ये एक शुरुआत है और इसमें भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनियम केंद्र के रूप में जो इसका हुआ है, ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक

0: किया, उनकी सेवाओं को ये प्रदान करेगा। तो ये एक शुरुआत है और इसमें भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनियम
1: जी
0: केंद्र के रूप में जो इसका हुआ है, ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने में भी प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है ये उसके अनुरूप ही हुआ।
1: जी टंडन जी, गुजरात को वैसे भी व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, कई सारी परियोजनाएं लगातार वहां पर काम कर रही है, बुलेट ट्रेन की भी हम बात करते हैं, वहां उसकी शुरुआत भी गुजरात से ही हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा जो हर बार नई योजनाएं शुरू की जाती, नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाता, उद्घाटन किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, गुजरात की बात तो है ही है क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री का अपना राज्य है, लेकिन जितनी भी परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने लागू की है देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी, सभी का, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो जो परियोजनाएं देश के भागों में की गई है, चाहे वो पूर्वोत्तर का भाग हो चाहे दक्षिण भारत हो, उन सब में जो परियोजनाएं लागू की जाती है वो पूरे समय पर ही हुई है। तो गुजरात थोड़ा, जैसे प्रधानमंत्री पहले भी कहते थे कि हमारा जो क्षेत्र है भारत का वो तो विकास की दर से बहुत आगे है, लेकिन हमारा जो पूर्वोत्तर या पूर्वी क्षेत्र है जिसमें हम देखते थे कि पूर्वोत्तर के राज्य तो सही ही, लेकिन बंगाल, उड़ीसा ये राज्य पिछड़े थे, बिहार था, झारखंड था, उनके भी विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन पूर्वी राज्यों को भी अब पश्चिमी राज्यों के मुकाबले में लाकर खड़ा किया गया है। और ये सारी योजनाएं जो है हर देश के हर प्रांत में लागू की गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई भी राज्य हो, इसमें कहीं भेदभाव नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजनाएं जब इनका शिलान्यास होता है तो इनको पूर्ण भी, इनको इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री उसी समय सीमा के अंदर करते हैं। यही उनका निर्देश भी है कि जो भी मुझसे लोकार्पण करवाना है या जिसका मुझसे आपने नींव पत्थर लगवाया है उसकी योजना को पूरा भी मेरे से ही करवाएंगे, तभी मैं उसके लिए आगे आऊंगा। तो ये कुल मिलाकर जो अप्रोच है विकसित भारत की ओर बढ़ने की, उसमें सभी प्रदेशों के साथ न्याय हो रहा है और देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसको ये शिकायत हो कि प्रधानमंत्री जो है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
1: जी टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आपने ये प्रोग्राम सुना, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DD फ्री डिश पर। सामने हम आपको याद दिला दें, हमारी दूसरी मजलिस में सपहर 3:30 बजे एक ड्रामा हम आपके लिए पेश करेंगे, फनकार। दिन का 1 बजा चाहता है, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप करीम अहमद से आलमी खबरें सुनिए। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत के तहत ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप के 2 रोजा इजलास की कल से केरला के कोचे में मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से खलीजी मुल्कों, अमरीका और बेल्जियम समेत 6 मुल्कों के दौरे पर होंगे। मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ICC वुमेन्स T20 आलमी कप में

ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजवजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए निहायत अहम इकतसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी पर मबनी हैं, जो मजबूत इकतसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताउन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत ब्रिक्स ख्वातीन वर्किंग ग्रुप की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा, जो कल केरलम के शहर कोची में शुरू हो रही है। ख्वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत के मुताबिक ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के आला सरकारी ओहदेदार मुश्तरका तरजीहात के ताल्लुक से ताउन बढ़ाते हुए सभी शोबों में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक अहम मामलात, नीज ख्वातीन के कायदाना रोल के साथ तरक्की के मामले पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरैन, कुवैत और उम्मान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉ जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मज़कूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। ओमान के दौरे के बाद डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल यूएनएससी की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। इसके बाद वो 14 और 15 जुलाई को ब्रसेल्स में मुनक्किद होने वाले भारत यूरोपीय यूनियन तजारती और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तीसरे इजलास में शिरकत करेंगे और यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमनसबों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज साबिक मरकजी वज़ीर रामविलास पासवान के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान को आवाम और मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और अज़्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। यात्रा के दूसरे दिन 20,145 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए, जो पिछले साल दूसरे दिन वहां जाने वाले यात्रियों की तादाद से कहीं ज्यादा है। गुज़िश्ता साल यात्रा के दूसरे दिन 14,515 अकीदतमंदों ने दर्शन किए थे। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले यात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात में 6 रोजा सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस यात्रा का इनेकाद हुकूमत जम्मू कश्मीर के सकाफत के महकमे ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साथ मिलकर किया था, जिसके तहत यात्रियों ने गुजरात के श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और दीगर मजहबी तारीखी और सकाफती मुकामात का दौरा किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मारूफ पंडवानी लोक गुलूकारा तीजान बाई के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तीजान बाई ने अपनी पुरअसर आवाज, बलकार अंदाज और मुनफरिद पेशकश के जरिए महाभारत की दास्तानों को स्टेज पर अमर कर दिया। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि तीजान बाई ने अपनी गैर मामूली सलाहियत, लगन और बरसों की मुसलसल रियाजत के जरिए भारत और बैरून मुल्क छत्तीसगढ़ की पांडवानी रिवायत को नई पहचान दी। उन्होंने कहा कि भारत के सकाफती वरसे के फरोग में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आमतौर पर

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। भारत ने अपनी ब्रिक्स अदालत के तहत ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप के दो रोजा इजलास की कल से केरला के कोची में मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से खलीजी मुल्कों अमरीका और बेल्जियम समेत छह मुल्कों के दौरे पर होंगे। मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली के ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और आईसीसी वीमेंस T20 आलमी कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल मुकाबला लंदन में लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामने हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सरपहर 3 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

वाह क्या गीत है दोस्तों। क्या आप जानते हैं ये गीत शुरू से फिल्म का हिस्सा ही नहीं था। जी हाँ, जब फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी तब निर्देशक लॉरेंस डिसूजा को लगा कि फिल्म में एक ऐसा रोमांटिक गीत होना चाहिए जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित को की मासूमियत दिखाई जा सके। फिर क्या था, नदीम श्रवण ने धुन बनाई, समीर ने शब्द लिखे और एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज ने इसे अमर बना दिया। और अब जिक्र उस कहानी का जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया, लेकिन कहानी ज्यादा लंबी नहीं क्योंकि हमारा मकसद पूरी फिल्म सुनाना नहीं बल्कि उस फिल्म की खूबसूरती को महसूस कराना है। कहानी है दो दोस्तों की, एक का नाम अमन, दूसरे का आकाश। अमन शारीरिक रूप से कमजोर है लेकिन उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसकी शायरी उसे लाखों लोगों को दिलों तक पहुंचा देती है। वो सागर नाम से कविताएं लिखता है लेकिन दुनिया नहीं जानती कि असली सागर कौन है। दूसरी तरफ है आकाश जो जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखता है, हसमुख, शरारती और हर किसी की मदद करने वाला। फिर कहानी में आती है पूजा जो सागर की शायरी की दीवानी है लेकिन सागर को पहचानती नहीं। यहीं पर कहानी को देते हैं एक विराम और सुनते हैं इस फिल्म का प्यारा सा गीत।

प्यारे से गीत के बाद फिल्म साजन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दो दोस्तों के बीच एक गलतफहमी का आना और फिर एक ऐसा त्याग जो कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अमन अपने प्यार से ज्यादा अपने दोस्त की खुशी को इम्पोर्टेंस देता है और आकाश जब सच्चाई जानता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग कर देता है, लेकिन प्यार आखिरकार अपने सच्चे साथी तक पहुंच ही जाता है और इसी खूबसूरत संदेश के साथ फिल्म का अंत हो जाता है, यानी दोस्ती भी जीत जाती है और प्यार भी। तो आइए सुनते हैं फिल्म साजन से एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद आपको पता चल ही गया है कि आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से आपके पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आज की फिल्म है साजन और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त नंदा इस्सर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ip radio delhi@gmail.com। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, ip radio delhi@gmail.com। तो बने रहिए हमारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: मैं आपको दे डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करना है।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क।
0: ब्रेक के बाद दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और हमारी आज की फिल्म है साजन। अब बात करते हैं फिल्म साजन के कलाकारों के अभिनय की। सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार संजय दत्त की, जिन्होंने अपनी आंखों की खामोशी, चेहरे के भाव और ठहराव से अमन के दर्द को इतना जीवंत कर दिया कि दर्शकों का दिल भी उसके साथ भर आता है। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। अब बात करते हैं सलमान खान की। 1991 में सलमान खान अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, लेकिन आकाश के रोल में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। सलमान की सहज मुस्कान, मासूम शरारत और दोस्ती निभाने का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। और अब बात करते हैं उस अभिनेत्री की जिनके बिना साजन फिल्म की कल्पना अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। पूजा के किरदार में माधुरी ने मासूमियत, गरिमा और संवेदनशीलता का ऐसा सुंदर मेल दिखाया कि दर्शक उनसे जुड़ते चले गए। और भी बातें बताऊंगी फिल्म से जुड़ी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

क्या कमाल का गीत। इस गीत के बाद हमारे सारे श्रोताओं को अपने मेल का इंतजार है बेसब्री से, तो हम जल्दी से आपके संदेश शामिल कर लेते हैं। पहला संदेश हमें मिला है अजीत भवसार जी का। इन्होंने फिल्म से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें हमें बताई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है स्वर्ण सिंह जी का। इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। ये मेल हमें भेजा है गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से। और अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं सुनील पाठक जी का। इनको ये प्रोग्राम और कहानी बहुत अच्छी लग रही है। इन्होंने लिखा है कि फिल्म अपने जमाने की खूबसूरत फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा संदीप पाठक जी, आपकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल हमें मिला है विजय सुरालकर का, मोताला महाराष्ट्र से। इनके साथ इनके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल हमें मिला है गुरमीत सिंह जी का। ये मेल हमें मिला है साउथ एक्सटेंशन से। और अगला संदेश की तरफ बढ़ते हैं। अगला संदेश है सतीश अनेजा जी का। साजन फिल्म बेहद खूबसूरत हिट फिल्म रही, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेल हमें मिला है चंडीगढ़ से। और एक और मेल शामिल करना चाहूंगी हीरामणि वर्मा जी का। इनको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। हीरामणि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं फिल्म का एक आखिरी गीत।

खुशी साहब कर देते हैं कि अगले पांच सालों के इस कानून तक 7.5 लाख करोड़ रूपए तो वंदा निवेश किया जाएगा। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम के पेड़ इश्तेहारों से बच्चों के जिनसी शोषण के अश्लील सामग्री के प्रसार में लेकर नेताओं ने सख्त चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर

के जरूरी वस्तुओं संबंधी कानून तहत हंगामी अध्यक्ष द्वारा इसकी कार्यवाही देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह

0: दो लाख छियासी हजार पंचायतों में साढ़े सात लाख रुपए तो वनडा निवेश किया गया है।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। सौजन्य या 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का

सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर पेड इश्तेहारों के बच्चों को जिनसी शोषण और अश्लील सामग्री के प्रसार को लेकर नेटा ने सख्त चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम में नशा इश्तेहारों पर सामग्री को हटाने का हुक्म दिया जो अजय सामग्री उत्साहित करते हैं इसकी पहुंच को सुविधाजनक बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी

भी संबोधन कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ स्टीफन प्राइस 14 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर ने देशों के विदेश

एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान ने समाज के दबे कुचले तो कमजोर वर्गों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान ने हमेशा जनपद सेवा और राष्ट्र सेवा प्रति उन्होंने समर्पण याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान का

ਇਸ ਚੋਟੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਾਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6,607

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सरकार ने आबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खरीद का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देहि तरक्की के मरकज वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रूपए की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेमाल से मुतालिक इश्तिहार हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ के नामवर पंडवानी गुरुकारा तेजन बाई का

0: गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। खबरें तफसील से। सरकार ने मगरबी एशिया महाजाराई में जंग बंदी के तनाजुर में अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजिबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है, जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूह से सरकार को अंदरूनी मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई LNG अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। अबनाए हुरमुज के रास्ते LNG की खेप में रुकावट पड़ने के बाद इस साल मार्च में लाजमी अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत ये इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया गया था। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 इस महीने की पहली तारीख से नाफिज हो गया है। वजीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजकूरा मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद मंजूर की और इसे जारी किया। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम MGNREGA की जगह विकसित भारत जी रामजी एक्ट को कामयाबी के साथ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि MGNREGA पर अमल दरामद में 3 साल लग गए थे, जबकि विकसित भारत जी रामजी एक्ट पूरे मुल्क में सिर्फ एक दिन में ही नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि इस एक्ट के तहत अगले 5 साल के दौरान 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाया जाएगा ताकि विकसित भारत के नजरिए की रफ्तार में तेजी लाई जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इकतसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि इस शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है, इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इकतसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर

ने इंस्टाग्राम को ये हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तिहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके जरिए बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मजकूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इत्तलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिल एतराज मवाद दिखाया गया है जिससे बच्चों के जिनसे इस्तेहसाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका अहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। छत्तीसगढ़ के मारूफ पंडवानी गुलुकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अल सुबह 3:15 बजे के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुरसर आवाज, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अल्कवामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

0: भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिरा कद्र खिदमात के एतराफ में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेकर और वजीर आला विष्णुदेव साय ने भी तीजन बाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायात को महफूज रखने, नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके गिरा कद्र रोल की सताइश की है। डॉ तीजन बाई की आखिरी रसूम दुर्ग जिले में उनके आबाई गांव धनियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान को अवाम और मुल्क की खिदमत के तय उनकी लगन और अजम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरूआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाये रहने और औसत बारिश होने की पेशगोई की गई है। खवातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने अवनाय हुरमुज के रास्ते रतिक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देह तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रूपये की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहार हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। और छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुरुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द मिडडे न्यूज। Headlines: Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हुर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस

0: आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुरमुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुरमुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VDG राम जी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VDG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ

0: द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तंबानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में ईजी गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में ईजी पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा।

0: बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं। अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दो भैया, सेना ले ले चलो। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सावन में
2: द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामिंदेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजनबाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें पराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और DRM 810 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के 2:30 और 15 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार साथियों, आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार में आपके दोस्त तृप्ति जौहरी आप सभी का स्वागत करती है। साथियों, आज हम याद करेंगे और बात करेंगे हिंदी सिनेमा के महान और दिग्गज गीतकार भरत व्यास के बारे में, जिन्होंने 1950 और 1960 के दशक में कई कालजयी और शुद्ध हिंदी गीतों की रचना की। उन्होंने अपने करियर में लगभग 125 से अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखे। आइए फिर कार्यक्रम का आगाज भी ऐसे प्रार्थना गीत से करते हैं, जो प्रार्थना के रूप में आज भी कहीं कहीं सुनने को जब जब मिल जाता है तो मन शांत होकर कुछ पल के लिए ठहर सा जाता है।

वाह, लिखने वाले ने क्या लिखा और लता जी की आवाज ने उसमें क्या मिठास भर दी। फिल्म दो आंखें बारह हाथ से अभी आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार और हमारे आज के कलाकार हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास। भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। बचपन से ही उनमें कवि प्रतिभा दिखने लगी थी। उनका पहला लिखा गीत था आओ वीरों हिलमिल गाएं वंदे मातरम। उन्होंने रामू चन्ना नामक नाटक भी लिखा। 1942 के बाद वे बंबई आ गए जहां उन्होंने कुछ फिल्मों में भूमिका भी निभाई, लेकिन प्रसिद्धि तो उनको गीत लेखन से ही मिली। तो अब आपका मन किस गीत को पुकार रहा है?

उम्मीद करती हूँ हमारे गीतों ने भी हमारे श्रोताओं को अपने रेडियो सेट के करीब ला दिया होगा और वो गुजरा हुआ दौर और उसके गीत याद आने लगे होंगे। तो बने रहिए अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो केंद्रित है गीतकार भरत व्यास पर। हिंदी फिल्मों में उनको पहला ब्रेक मिला फिल्म दुहाई के लिए, जो वर्ष 1943 में रिलीज हुई। संगीत निर्देशन का श्रेय संयुक्त रूप से पन्नालाल घोष, रफीक गजनवी और शांति कुमार को दिया गया। गीत नूरजहां और शांति आप्टे द्वारा गाए गए थे। भरत जी नाटकों और रिकॉर्ड के लिए राजस्थानी गीत भी लिखते थे। भरत व्यास जी को फिल्म निर्देशन में भी रुचि थी और वास्तव में उन्होंने करियर की शुरुआत में ही एक फिल्म का निर्देशन भी किया था। जी हाँ, उन्होंने 1940 के दशक में कुछ शुरुआती फिल्मों में अभिनय भी किया। मुंबई आने के बाद उनकी काव्य रचनाएं काफी लोकप्रिय हुई थी, लेकिन 4 जुलाई 1982 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनको हमारा शत शत नमन।

श्रोताओं, मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना सारंगा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार और आज हम बात कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास के बारे में। तो उनके लिखे कौन कौन

कौन से गीत आपको बेहद पसंद है या आज के कार्यक्रम में आप सुनने के लिए बेहद इच्छुक हैं, हमें बताइए। हमारा पता है वही ipradiodelhi@gmail.com। और अगर हमारे आज के कलाकार से जुड़ी कोई भी खास बात, खास जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारे सभी साथियों को भी बताना चाहते हैं, तो आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी आप सभी का स्वागत करती है।

0: लिंक पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, जानकारी के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ईमेल्स हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप सबकी आ चुकी हैं। तो चलिए अब बारी आती है आपके संदेश पढ़ने की। अब जो हम संदेश लेने जा रहे हैं कार्यक्रम में, ये मिला है हमें मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और ये लिखते हैं आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लग रहा है और इनको इनके पुराने दिन याद आ गए हैं। बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए ये धन्यवाद लिखते हैं। तो धन्यवाद साथी। अगली ईमेल आई है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण से किल दलजीत राजदीप गुरनूर गुरलाल अविराज सिंह, और इनको बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है, धन्यवाद। अगली ईमेल आई है पता पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से आप हैं साथी नीतीश कुमार तनुजा ईशांत लखनलाल सावित्री बाई और इनके सभी साथी। अगला संदेश है साथियों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो हमारे साथी एक बार संदेश भेज चुके हैं कृपया वो दोबारा ईमेल ना भेजें, जिससे हम अधिक से अधिक ईमेल शामिल कर सकें। अगली ईमेल आई है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा अपने संदेश में, बस ईमेल भेजी है। अगली ईमेल आई है अजीत भावसार की, महान गीतकार कवि भरत व्यास ने हिंदी सिनेमा को ए मालिक तेरे बंदे हम जैसे अमर गीत दिए, और उनके बारे में इन्होंने जानकारी लिखी है जो हमने आपको अधिकांश इस कार्यक्रम में बता ही दी। धन्यवाद साथी, आप गौर से सुन रहे हैं और आपने ये जानकारी हमारे साथ साझा की। और अगली जानकारी हमें दी है, संदेश भेजा है, ये है हमारे साथी अमर रमेश कुमार खत्री, ये है मैडम जी नमस्कार चने सर गोट कराची से आप हैं अमर रमेश कुमार खत्री टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री मोहम्मद अमीन जफर सादिक शेख शंकर गुल शर्मा, योर प्रोग्राम ब्यूटीफुल सॉन्ग कलेक्शन जबरदस्त लाजवाब। ओ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप सभी का। अगली जो ईमेल है वो है धर्मेंद्र छिप्पा जी की, भोपालगढ़ राजस्थान से इनके साथ हैं कपिल छिप्पा पूजा परिहार, कार्यक्रम एक ही कलाकार आज आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म जगत के मशहूर गीतकार भरत व्यास के बारे में, बेहतरीन बातें बता रहे हैं, ऐतिहासिक गीतों की रचनाओं के मशहूर गीतकार भरत व्यास ने कालजयी नगमे लिखे, आपने उनके बारे में बेहतरीन बातें बताई, दो चक किस्से सुना रहे हैं, नगमे भी सुनवा रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, धन्यवाद इतनी सारी तारीफों के लिए। साथी, आप लोग जब ऐसी ईमेलों में ऐसे हौसला अफजाई करते हैं तो इससे हमारे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं। अगली ईमेल आई है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से आप हैं राजेश सेन सुरेश सेन, और अगली ईमेल आई है जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से श्रोताओं के नाम है शिव गोप प्रेम गोप कपिल गोप शिवांश गोप संगीता लिपि दीपाली गोप की। अगली ईमेल आई है आर कुमार की वरिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा की। गांव नथाना से आप हैं हमारे साथी जुड़े हुए पंजाब से हरजिंदर

के बारे में मालूमात दी जा रही है। धन्यवाद। और ये हमारे साथी हैं संबलपुर कांकेर से फरगुन यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अगले साथी हैं जिनकी हम ईमेल शायद शामिल कर चुके हैं, दिग्दर्शन गौड़ जी। ये हमारे साथी हैं कार्यक्रम में पता ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से, उत्तर प्रदेश से। श्रोता उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल परिवार के सभी सदस्य। अगले साथी हैं हीरामणि वर्मा, दतरेंगी, भाटापारा से। और इसके साथ ही हमारे अगले साथी जो हैं वो हैं संदीप मक्कर जी, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल सहानी। और ये हैं जालंधर से लिखने वाले हमारे साथी। तो श्रोताओं, आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अगले साथी हैं हमारे वीरगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, और इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी फरमाइश लगभग लगभग पूरी हो गई होगी। और अगली जो हमें ईमेल भेजी है ये है देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, पोता मास्टर अल कबीर। इसके साथ ही हमारे जो अगले साथी हैं वो हैं मैडम जी, प्रोग्राम के सारे सॉन्ग कलेक्शन जबरदस्त लाजवाब हैं। ये हमारे साथी हैं चनेसर गोट कराची से, अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णलाल, इनकी शायद हम ईमेल शामिल कर चुके हैं। कुछ लोग हमें बार बार ईमेल भेज रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

अदाब अर्ज है, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस का अब आगाज होता है।

आइए नजर डालते हैं आज की मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद यानी 3:05 पर खबरें नश्र की जाएंगी। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद आप सुन सकेंगे 3:15 पर। 3:30 पर हम आपको सुनवाएंगे एक ड्रामा जिसका उन्वान है फनकार। 4 बजे से आप फिल्मी मौसीकी का लुत्फ ले सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम के 4:50 तक जारी रहेगा। शाम 4:50 पर खबरें नश्र होंगी और 5 बजे आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि कलीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को वसत दी जा सके। सरकार ने अबनय हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेसाल से मुतालिक इश्तहार हटाए जाएं। सरकार ने इस सिलसिले में 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलूकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। और खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इकतसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी के बारे में सफीर मसूफ ने कहा कि इस शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इक्तिसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 जुलाई से 10 जुलाई तक के ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तिसादी साझेदार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पसीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नियत अहमियत इकतसादी शराकतदार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है जो मजबूत इकतसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत दिफा सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताउन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर बहरेन कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मस्कूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। सरकार ने मगरबी एशिया महाजराई में जंगबंदी के तनाजुर में अबनय हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर आयद इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूह से सरकार को अंदरून मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई एलएनजी अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। अब नए हुरमुज के रास्ते एलएनजी की खेप में रुकावट पड़ने के बाद इस साल मार्च में लाजमी अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत ये इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया गया था। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाले इन दावों को गलत करार दिया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल दरामद करने की पेशकश नामंजूर कर दी है। वजारत ने कहा कि ये इतला दुरुस्त नहीं है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस तरह की कोई पेशकश नहीं की है। उसने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल बरामद करने की कोई तजवीज सिर गौर नहीं है। वजारत ने लोगों से कहा कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और वजारत की मुसद्दिका जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेमाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है।
सरकारी जराये के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को यह हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके जरिए बच्चों के जिंसी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मस्कूरा प्लेटफार्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इतलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिल एतराज मवाद दिखाया गया है कि जिससे बच्चों के जिंसी इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका अहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की मारूफ पंडावानी गुलूकारा और पद्म

0: विभूषण से सरफराज तीजनबाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलग सुबह 3:15 बजे के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुर असर आवाज, स्टेज पर शानदार पेशकश और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजनबाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी एक नई शराख दी। भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिराकद खिदमात के एतराफ में उन्हें पद्मश्री, पद्मा भूषण और फिर पद्मा विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रामेन डेका और वजीर आला विष्णु देव साई ने भी तीजनबाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायत को महफूज रखने, नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके गिराकद रोल की सताइश की है। डॉक्टर तीजनबाई की आखिरी रसूम दुर्ग जिले में उनके आबाई गांव गानियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा जो केरलम के शहर कोची में कल से शुरू हो रही है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत के मुताबिक ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के आला सरकारी अहदेदार मुश्तरक तरजीहात के ताल्लुक से तावन बढ़ाते हुए सभी शोबों में खवातीन को बाख्तियार बनाने से मुतालिक अहम मामलात नीस खवातीन के कायदाना रोल के साथ तरक्की के मामले पर तबादले ख्याल करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के मुनशात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहों की दो रोजा मीटिंग कल आसाम में गुवाहाटी में शुरू हो रही है। उम्र दाखिला की वजारत के मुताबिक इस मीटिंग में मुनशात पर कंट्रोल से मुतालिक एजेंसियों के माबेन कार्रवाई से मुतालिक इश्तराक को मजबूत बनाने और इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के आला अहदेदार भी शिरकत करेंगे और कार्रवाई से मुतालिक तालमेल, खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करने, सलाहियत साजी और मुनशात से मुतालिक उभरते हुए खतरात के तनाजुर में इज्तिमाई इकदाम को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। यात्रा के दूसरे दिन 20,145 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए जो पिछले साल दूसरे दिन वहां जाने वाले यात्रियों की तादाद से कहीं ज्यादा है। खवातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रही हैं ताकि किलीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को वसत दी जा सके। सरकार ने आबनए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर एमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं और मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों को इस्तेसाल से मुतालिक इश्तहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

अब्दुल्ला फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर।

किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा भी अपने डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से सुना। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप उर्दू सर्विस सुन सकते हैं और DD फ्री डिश पर भी उर्दू सर्विस की नशरियात दस्तियाब हैं। मुझे अब सुनिए जनाब कश्मीरी लाल जाकिर का तहरीर करदा एक मजाहिया ड्रामा, उनवान है फनकार।

0: आज की कोई नई बात?
1: कोई नहीं सरकार,
0: तुम कभी कोई बात नहीं सुनाती।
1: मैं तो बस एक ही खबर सुनाऊंगी शहजादी।
0: कौन सी? समझी, तुम बहुत गुस्ताख होती जा रही हो।
1: सरकार, मैं एक ताज़ा खबर लाई हूँ।
0: कहो।
1: शहनशाह के हुजूर में कल मुल्क के मूसीकारों का एक इज्तिमा हो रहा है।
0: अच्छा, हमें तो मालूम नहीं।
1: आपकी अफसरदा तबीयत बहल जाएगी।
0: सुना है
1: जहाँ पनाह ने ये सब आप ही के लिए किया है।

0: मां के चार फराज पहुंच गए,
1: उन्हें इज्जत से यहां ले आओ।
0: बात हो
2: शहंशाह आलम, गुलाम आदा बजा लाता है।
1: फराज, तुम एक अजीम शख्सियत के मालिक हो। खुशकिस्मत है वो हसीन वादी जिसने तुम्हें जन्म दिया।
2: हुजूर की जरा नवाजी का शुक्रिया।
1: तुम वाकई एक बड़े फनकार हो।
2: जहां बना इस हौसला अफजाई का शुक्रिया।
1: आपके हम भी कश्मीर जाने का इरादा रखते हैं। अपने नगमों से हमारा इस्तकबाल करोगे ना?
2: मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझूंगा।
1: तुम्हारा इरादा यहाँ से जल जाने का तो नहीं?
2: अभी कुछ रोज यही हूँ अलीजा।
1: अगर हम किसी वक्त तुम्हारे फन से महजूज होना चाहें,
2: मैं शरफ़ कदम बोशी को हाजिर हो जाऊंगा जहाँ बना।

0: दास, शहजादी आज तुमसे बहुत खफा है।
1: मुझसे कौन सी खता हुई?
0: जिसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम है।
1: तुम्हारा मतलब?
0: शहजादी खुद ही तुमसे कह देंगी। एलो, वो इधर तशरीफ ला रही है। कहीं ज्यादा बजा लाती है। फराज
1: जी,
0: आज तुम आदाब भी नहीं बजा लाते, इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो?
1: आदाब बजा लाता हूँ।
0: लेकिन तुम आज यूँ खोए खोए से क्यों नजर आते हो?
1: नहीं सरकार, मैं ठीक हूँ।
0: क्या वतन की याद सता रही है?
1: जी नहीं।
0: तुम्हारा वतन भी तो जन्नत नजीर है, इससे दूर रहने का गम क्यों ना हो?
1: मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सजा तजवीज करने से पहले मुझे मेरी खता बता दी जाए।
0: कैसी सजा? कौन सी खता? मैं कुछ नहीं समझी तुम्हारा क्या मतलब है फराज। इस दफा आप इन्हें माफ कर दी, आइंदा ऐसे इनसे कोई खता ना होगी। खामोश। समझी? तो इस गुस्ताख ने तुम्हें परेशान किया है, लेकिन तुम खामोश क्यों हो? क्या सोच रहे हो तुम?
1: कुछ नहीं सरकार।
0: न जाने ये फनकार हर वक्त सोचते क्यों रहते हैं।
1: उनकी

0: मजबूरी है।
1: छोड़ो इस गुस्से को, देखते नहीं ये गुंचे नींद भरी आंखों से एक मुद्दत से किसी का इंतजार कर रहे हैं। आकाश के झरोखे से माहे कामिल यूं उभर रहा है जैसे कश्मीर की किसी झील में कमल का बड़ा सा फूल खिल रहा हो। कितना खूबसूरत है ये फूल, लेकिन कितनी बोझल है ये फजा। इसकी थकन और घुटन को नगमे के सैलाब में बहा दो फराज, ताकि ये फजा बारिश से धुली हुई कलियों की तरह निखर जाए। हाँ, तो छेड़ो जरा तारों को।

0: तार टूट गया।
1: मुझे अफसोस है
0: शहजादी वाला तबार, शिकस्ता तार सिर्फ अफसोस से नहीं जोड़ा करते।
1: लेकिन फनकार तार टूट क्यों जाते हैं?
0: तार ज्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते शहजादी।
1: दबाव के बगैर तारों से नगमा भी तो नहीं फूटता।
0: लेकिन शहजादी दबाव, हाँ एक हद तक दबाव।
1: दबाव और हद,
0: हदें अबूर करने के नतायज अच्छे नहीं होते।
1: लेकिन गैर मामूली जरूर होते हैं। अबूर करोगे हदें?
0: कौन सी हदें?
1: वो हदें जो जिंदगी को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
0: लेकिन जिंदगी तो गैर मुनकसिम है, ये एक ऐसा दरिया है जिसके आगे बंद नहीं बांधे।
1: लेकिन इसमें से नहरें निकाल कर उसकी शख्सियत को जख्मी किया जा सकता है
0: और वो दोबारा उसी में शामिल होकर समंदर की तरह बढ़ने लगती है, जहाँ उनका बहुत बड़ा मरकज है, जहाँ पहुँच कर वो एक लंबे सफर पर रवाना हो जाती है। एक ऐसा सफर जो मंजिल से बेरियास है।
1: जानते हो मैं कौन हूँ?
0: आप हैं शहंशाह की बेटी शहजादी लाला रो।
1: और तुम?
0: मैं गरीब फनकार।
1: और फिर भी तुम समझते हो कि जिंदगी गैर मुनकसिम है?
0: जी।
1: कैसे?
0: ये सब जिंदगी का जाहिरी खोल है, इसके अंदर एक यकसानियत है।
1: तुम्हारे ख्यालात भी तुम्हारे नगमे की तरह जज्बात में आग लगाते हैं।
0: ये तो कोई तारीफ न हुई शहजादे।
1: बर्फ के सीने में चिंगारी सुलगाने वाला ही उसके लिए तमाम तारीफ का मुस्तहिक है। तुम नहीं जानते मरमरी महलात का ये माहौल कितना सर्द और बेहिस होता है। जैसे इसमें जीते जागते इंसान नहीं बचते, बर्फ के तोदे चट्टानों की तरह गड़े हों।
0: बर्फीली चोटियों का रहने वाला तो मैं हूँ, जहाँ इंसान किसी दूसरे इंसान के कुर्बत को भी तरसता है, जहाँ बाहर भी आती है तो झिझकती हुई शर्माती हुई जैसे उस वादी में कदम रखते हुए लड़स रही हो। यहाँ तो हर घड़ी बाहर रक्स फरमा नजर आती है। आह कितना पुरकैफ है मरमरी महलात का ये चमकना, कितना पुरकैफ है ये माहौल।
1: काश तुम महसूस कर सकते, लेकिन तुम नहीं समझोगे।
0: समझता हूँ शहजादी।
1: तुम समझते हो सच, और फिर भी तुम्हारा रवैया इतना सख्त है।
0: मैं मजबूर हूँ शहजादी, हदें अबूर करने के नतायज।
1: फराज मेरे अच्छे फनकार।
0: डालरो फिरदौस का एक महकता हुआ फूल।
2: सरकार दारोगा महलात आ रहा है, फराज को जाने की इजाजत दीजिए।
1: अच्छा तो इन्हें पिछले दरवाजे से ले जाओ। खुदा हाफिज फराज।
0: खुदा हाफिज ललरो।

0: एक फनकार के लिए उसके ख्याली दुनिया ही सब कुछ है। जीते जागते इंसानों की दुनिया उसे रास नहीं आ सकती। काश काश मैं यहां ना आता। लाला रो लाला रो, जैसे उसमें दुनिया भर की मिठास समोती हो। कहां समा गई है मेरे दिल में एक शहंशाह की लड़की, जो मेरे जैसे लाखों इंसानों को गुलाम बनाकर अपनी खिदमत पर मामूर कर सकती है। वो एक शहजादी, मैं खरीफ फनकार। कहां वो कहां मैं? और अब मुझे ये पैगाम लेकर जाना है कि लाला रुख से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसे तखय्युर के ताजमहल में बिठाकर उसकी परस्तिश की है, उसे अपना खुदा समझा है। मुझे अपने गीतों के फूल और किसी के कदमों में बिछाने होंगे ताकि वो उन्हें कुचल डाले। शहजादा परवेज, जिसने हमेशा मेरे मन की तासीम की है, आज मेरा रकीब है और मेरी बेबस और बेसहारा जिंदगी टप टपाई नजरों से उसकी तरफ देख रही है और वो एक औकाफ की तरह मेरे मुस्तकबिल पर छपटने वाला है। मुझे लाला रुख के पास न जाना चाहिए, उसको दिल से निकाल देना चाहिए, लेकिन लेकिन फूल से खुशबू कैसे रहता होगी? चांद से चांदनी कैसे अलग हो सकती है? तारों से नूर कौन जुदा कर सकता है? हो सकता है उसे मेरा ख्याल भी ना आए, हो सकता है दुनिया में कौन सी बात मुमकिन नहीं।
1: क्या बात है फनकार, आज तुम्हारा सांस खामोश क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर अफसुर्दगी क्यों छाई?
0: नहीं तो
1: मालूम होता है तुमने कभी मोहब्बत नहीं की।
0: की है लेकिन।
1: रुक क्यों गए?
0: लेकिन कामयाब नहीं हुआ।
1: इसीलिए परेशान हूँ। ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सके कि लाला रुख शहजादे परवेज से ब्याही जा रही है। तुम्हें दुख हो रहा है कि शहजादी को तुम जैसे कंगले के हाथ नहीं सौंपा गया। तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल है, लाला रुख की भलाई का नहीं।
0: अगर एक बुत तराश का अपने बुत के तोड़े जाने पर चीखना खुदगर्जी है तो मैं खुदगर्ज हूँ।
1: खैर, ये बातें तुम शहजादी से खुद ही कर लेना, उसने तुम्हें बुलवा भेजा है।
0: मुझे वहाँ ले जाकर जलील करना चाहती हो? कुलरुबा, अब मैं नहीं जाऊंगा, उसके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका। ओह, मुझे अपने तखय्युल पे भी कोई हक नहीं रहा।
1: आज महल का एक एक फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रात की हसीन वादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम आज भी नहीं जाओ?
0: हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा किसी को भी इंतजार नहीं, सब अपने हसीन मुस्तकबिल का इंतजार कर रहे हैं।
1: अगर तुम रजामंदी से नहीं जाओगे तो तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे।
0: गुलाम नहीं फनकार हूँ, इसके गुरूर के आगे खुदा भी सर झुकाता है।
1: तुम्हारे खुदा ही ने तुम्हें याद किया है, वही सर झुकाए खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
0: खुदा, मेरा खुदा।
1: तो क्या सोचा
0: कुलरुबा?

0: फराज, मेरे अच्छे फनकार, आज तुम्हारी आंखों के कमल मुरझा क्यों रहे हैं?
1: नहीं करते शहजादी साहबा।
0: जब पहली बार तुम मुझे मिले थे।
1: नहीं, ये जब भी मुरझाए हुए थे सिर्फ तुम्हारी शबनमी आंखों से इनमें जरा निखार आ गया था।
0: मैं भी कश्मीर जा रही हूँ, शहंशाह आलम ने मुझे इजाजत बख्श दी है। कितना पुरलुत्फ रहेगा ये तवील सफर
1: और कितना जां कुशल।
0: क्यों?
1: इसलिए कि इसके मंजिल बड़ी भयानक है।
0: मुसाफिर के लिए ये तो जरूरी नहीं कि वो मंजिल पर पहुंचकर ही दम ले, वो रास्ते के किसी हसीन मोड़ पर ठहरकर मंजिल के ख्याल से बेनियाज भी तो हो सकता है।
1: काफिले वाले ऐसे मुसाफिरों का इंतजार नहीं करते।
0: गर्द राह तो उन्होंने अपने सीने से लगाई है ना?
1: ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो, वो मोड़ करीब है जहाँ से हमारे रास्ते तकसीम होते हैं।
0: छोड़ो इन तल्ख बातों को, कोई नगमा सुनाओ।
1: अब इन तारों से नगमा नहीं फूटेगा लाला रुख।
0: फूटेगा फराज।
1: आज मैं अजीब सितार बजाने को नहीं चाहता।
0: क्यों?
1: इसका जवाब मेरे पास नहीं।
0: फराज, तुम गुस्ताख हो रहे हो, शहजादी लाला रुख तुम्हें नगमा सुनाने का हुक्म देती है।
1: फराज इस हुक्म की तामील करने से मासूर है।
0: लाला रुख तुमसे सितार बजाने की इल्तिजा करती है।
1: वनकार शिकस्ता तारों को मजरूह करने की कोशिश करेगा।

0: तो तुम्हारे सितार के तार सिसक रहे हैं फराज।
1: मजरू तार सिसका ही करते हैं शहजादी।
0: तुम्हें हमारे काफिले के साथ जाने में कोई इतराज तो नहीं?
1: बेहतर हो अगर मैं तना ही चल दूँ।
0: नहीं, ये नामुनासिब है और इसमें हमारी तौहीन है।
1: तो मैं आप ही के काफिले के साथ चलूंगा।
0: कल शाम तक खुदा हाफिज। कल रात हम पहले पड़ाव में मिलेंगे। हाँ, हमारे वजीर आजम से बचकर रहना, वो अच्छा आदमी नहीं।
1: जी।
0: और गुलरुबा पर एतमाद रखना।
1: जी।

0: शहजादी और उसकी करीजों के खेमों पर कड़ा पहरा रहे, किसी भी आदमी को उस तरफ न जाने दिया जाए, और अगर कोई बाप के आहाते में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर दिया जाए।
1: बेहतर हुजूर।
0: और फराज मूसीकार पर भी नजर रखी जाए, वो मुझे अच्छा आदमी नहीं मालूम होता।
1: बहुत खूब हुजूर।
0: मुझे किसी ने बताया है कि फराज अक्सर लाला रुख से मिलने जाता है और घंटों आपस में राज और न्यास की बातें होती
1: है। सुना तो मैंने भी है लेकिन यकीन नहीं आता।
0: आज वो उससे जरूर मिलने जाएगा।
1: जी।
0: उसे जाने से मत रोकना,
1: तो
0: वापसी पर उसे गिरफ्तार कर लेना और जब तक हम कश्मीर न पहुंच जाएं उसे जेरे हिरासत ही रखना।
1: ऐसा ही होगा हुजूर।
2: हमें अपनी राहें बदल लेनी चाहिए लाला रुख।
3: क्यों, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं?
2: तुम पर तो है, अपनी किस्मत पर नहीं।
3: तुम शायद उकता गए हो।
2: ये क्या कह रही हो शहजादी,
3: वरना तुम मुझसे दूर चले जाने की न सोचते।
2: लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे लाला रुख, कहेंगे शहंशाह की लड़की ने भीख मांगे से मोहब्बत की।
3: तो इसमें क्या बुराई है?
2: शाहजहां बनाई हर किस बर्दाश्त न करेंगे।
3: मैं उन्हें छोड़ दूंगी और हम इस सल्तनत की आखिरी हद को भी पार कर जाएंगे।
2: शाही फौजे हर जाने से हमारा पीछा करेगी।
3: हमारी मोहब्बत हमें हर बार से बचाएगी और जब हमारे लिए कोई पनाह गाह न रहेगी तो हम मौत की अथाह गहराइयों में छुप जाएंगे। फराज मेरे हसीन फनकार।
2: लेकिन हमें इस तरह न मिलना चाहिए, शहंशाह की बेटी बदनाम हो जाएगी।
3: लावे को बाहर निकलने से रोको तो वो जलजले में तब्दील हो जाता है।
2: सलसला, एक खौफनाक सलसला मेरी जिंदगी के महल को झिंझोड़ रहा है। मेरी जिंदगी की बुनियाद लड़क रही है लाला रुख, तुम्हारे मरमरी हाथ उसे लुढ़कने से न बचा सकेंगे।
3: लेकिन वो पीछे

0: बिना हटेंगे, चाहे वो पिछली क्यों न जाए।
1: शहजादी, रात बहुत जा चुकी है, अब फराज को अपनी कयामगाह तक लौट जाना चाहिए।
0: तुम अब तक जाग रही हो, शायद जलती हो।
1: नहीं सरकार, दुश्मन मौके की ताक में।
2: हाँ शहजादी, कुल्लूबा ठीक कहती है, मुझे जाना ही चाहिए।
0: अच्छा, तो मेरी पलकों पर अपनी मोहब्बत के नकूश उभार दो, ताकि इनमें सुहाने ख्वाबों के फूल महकते रहे।
2: लाला रुख,
0: मेरे अच्छे फनकार।
2: सब खैर मलिकाए हुस्न।
0: सब खैर शहर यार फन।

0: अब क्या होगा ये दादी? क्यों क्या हुआ? तुम्हें घबराई हुई क्यों? रास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात जब वो यहाँ से अपने खेमे की तरफ जा रहा था तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। हाँ शहजादी, अब वो कहाँ है? अब वो फौज की हिरासत में है। वो लोग रात भर उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते रहे, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो आपसे मिलने आया था।
1: गुलरुबा,
0: उसकी खाल तक को उधेड़ दिया गया है, लेकिन उसके होठों पर आपका नाम तक नहीं।
1: मैं उससे मिलने जाऊंगी।
0: नहीं, ये मुनासिब नहीं।
1: नहीं गुलरुबा, मुझे उसके पास पहुंचना ही चाहिए। फराज के जिस्म को बच्चियों से नोचा जा रहा है और तू मुझे वहाँ जाने से रोकती है।
0: नहीं गुलरुबा, मैं जाऊंगी।
1: मैं जरूर जाऊंगी।
0: मैं कोशिश करूंगी कि चंद लम्हों के लिए फराज को आपके पास ले आऊं।
1: मैं तेरा एहसान मरने के बाद भी न भूलूंगी। मुझे तुझ पर भरोसा है मेरी रफी।
0: कनीज अपना फर्ज पूरा करेगी।
1: और जब वो आ जाए तो अपने हाथों से मुझे जहर पिला देना ताकि मैं उसके निधाल आगोश में दम तोड़ने
0: को। क्या कह रही हैं आप?
1: मेरे फर्ज का यही तकाजा है।
0: ये मुझसे न हो सकेगा। मैं फराज को भी यहाँ न आने दूंगी।
1: मोहब्बत के दो मत वालों को नजदीक भी तू ही लाई थी और अब उन्हें एक दूसरे में समा जाने के लिए भी तेरी ही जरूरत है। तुझे ये फर्ज पूरा करना ही चाहिए। जिंदगी के दो मुख्तलिफ धारों को एक दूसरे में मत गम कर दो गुलरुबा, ताकि जिंदगी को गैर मुनकसिम समझने वाला मेरा फनकार उसे टुकड़े टुकड़े होते न देखे, मेरे फराज के यकीन को चोट न पहुंचे। गुलरुबा,
2: मैं कहां हूं इस वक्त? जिंदगी की आखिरी घड़ियों में भी ख्वाब क्यों मेरी आंखों से जुदा नहीं होते?
0: तुम इस वक्त लाला रुख के खेमे में हो फराज।
2: ये सब झूठ है। तुम सब शहंशाह की लड़की को बदनाम करते हो। तुम नमक हराम हो। मैं लाला रुख को नहीं जानता।
0: फराज, तुम इस वक्त फौजियों की हिरासत में नहीं, मेरे खेमे में हो।
2: लाला रुख,
0: फराज, जालिमों ने तुम्हारे जिस्म को बुरी तरह उधेड़ डाला है। तुम सच ही कहते थे।
2: क्या
0: हदे उबूर करने के नतीज अच्छे नहीं होते?
2: तो तुम अपने किए पर पछतान हो?
0: नहीं, मेरी रूह और जिस्म के मालिक नहीं। मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैंने एक अजीम फनकार की जिंदगी को बर्बाद कर डाला।
2: जिंदगी गैर मुनकसिम है लाला रुख, वो कभी बर्बाद नहीं होती। आज तुमने सुर्ख लिबास पहन रखा है लाला रुख।
0: आज मेरी मोहब्बत की तकमील है फराज।
2: सुर्ख रंग मुझे खून की याद दिलाता है शहजादी।
0: और खून ही से मोहब्बत नशोनुमा पाती है।
2: मैंने कहा था ना कि जिंदगी की हदों से तजावज करना नामुमकिन है।
0: जिंदगी गैर मुनकसिम है। जिंदगी का धारा किसी भी रोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुलरुबा, गुलरुबा, शहजादी हुजूर, मेरी अच्छी रफीक, लाओ आबे हया। शहजादी साहिबा,
1: ये मेरा हुक्म है।
0: जी, और आपका हुक्म बजा लाना मेरा फर्ज है। फर्ज लीजिए। मेरी अच्छी गुलरुबा, खुदा हाफिज। अब मुझे अपने महबूब फन

0: 而已，也是没了份。李军，妈，你怎么没嫁接
1: 了？来了喽！人的给给还得叫那猪肉给，麻烦他俩不给，没人把你抱走来了喽。你这边可以回给送给大半的七八路啊，给你妈看给送没这些一直给好几好几块把来以后जान की किरने तुम्हारे बालों में टाकने के लिए सरदार से फूल चुन रहे हैं। देख रही हो लाला रुख?
0: देख रही हूँ मेरे देवता।
1: इन्हें पहचानती हो?
0: हाँ, ये मेरे सपनों के फूल हैं।
1: सपनों के फूल, कितने हसीन हैं ये फूल, लाला रुख। मंजिल आ रही है हमारे।

0: और इला अरुण की आवाजों में ये नगमा था लम्हे फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है एक चादर मैली सी, आवाजें शब्बीर कुमार और आशा भोसले की हैं।
1: लोग तो मंदिर मस्जिद

ये जल भरे पड़ास में मेरे सुर में शान मिला दे।

उदित नारायण और विभास शर्मा की आवाजों में इश्क फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपको सुनवाने जा रहे हैं जाने मन फिल्म से। आवाजें सोनू निगम और साधना सरगम की है।

उदित नारायण के साथ आपने अलका अनुराध पौडवाल को माफ कीजिएगा सुना फिल्म थी दिल। और अब सुनिए अलीशा शनोई के साथ कुमार सानू को फिल्म है इश्क विश्क।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में चमत्कार फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। ये थी हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आपकी मेहनत से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि क्लीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को सद दी जा सके। सरकार ने आबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तेहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तेजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। और खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे क्लीदी साझेदारी के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में

0: बाइडेन के मुताबिक सदर पुतिन ने अमेरिका के 250वीं यौम आजादी के मौके पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। अवामी जमहूरिया कांगो डीआरसी ने एबोला के 1528 केसों की तस्दीक की है। इनमें 492 अमवात भी शामिल हैं, जबकि इस दौरान मुल्क में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। अवामी सेहत आमा के इदारे की जानिब से मुल्क की ताजा तरीन सूरत हाल के बारे में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 239 मरीज सेहत याब हो गए हैं, जबकि 628 मरीजों का अलग थलग रखकर इलाज किया जा रहा है। खवातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने फिलेडेल्फिया में खेले गए एक सख्त मुकाबले में पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 17वें मिनट में पेनाल्टी पर किया। क्रोशिया में जारी ग्रैंड शतरंज टूर के दौरान बिलिट्स मरहले में मायूस का आगाज के बाद भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रमंदा चौथे मुकाम पर आ गए हैं। खास खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि केंद्रीय साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को सद दी जा सके। सरकार ने अपने हुरमुज के रास्ते रकीब कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तेहार हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ के नामवर पंडवानी गुलूकारा तेजन बाई का इंतकाल हो गया है। जमहूरिया नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। शाम के 5 बजने को है हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। रात 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: FM बैंड 103.6 MHz से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਕ ਮਾਹੀ ਦੀ।

0: रेडियो दाल सिराई की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते आज दा प्रोग्राम घिन के हाजर हाँ। के हाल चाल हिन तुहाडे? मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक हो सो। ते शुरू करें दे हाँ प्रोग्राम। आज मैं तुहा को सब तो पहला एक कहानी सुनने दी पई हाँ, जिसका नाम है कर्जा लह गया। कहानीकार हिन नीरू तनेचा।
1: आज मनीषा बहुत खुश है। आज ओ अपनी नवी कोठी का मुहूर्त जो करवावन वेंदी पई है। रस्ते विच सुधा दी कोठी है। बगैर रंग रोगन दी कोठी देख के हुंदी हसी छुट पई ते अपनी कोठी बनवावन दे बारे विच सोचन लग गई। शहर दे जेड़े महल्ले विच मनीषा रहंदी है उत्थां विचले दर्जे दे लोग रहंदे हन। सारे खांदे पींदे ते सिद्धे सादे लोग हन। खाली थींदे ही सारे बार आके बह वेंदे ते इडे उडे दी गल करन लग वेंदे। आपस विच बहु प्यार ते मेल मिलाप है सब दा। मोनू दी डाडी ते पूरे महल्ले दी डाडी है। सारे पड़ोसी हर काम विच हुंदी सलाह दिंदे हन। हुणे दा महल्ला तंग गलियां विच बनिया होया है। ही वास्ते उठो कोई साइकिल स्कूटर कहना लंघदी है। मोनू दी डाडी ते गली दे किनारे खट विछा के बह वेंदी। वल जेड़ी भी पड़ोसन खाली थींदी और चौकी या कुर्सी चाह के आंदी ते बह वेंदी। दोपहरे किंदे घर क्या बंदा पे ते राती क्या बंसी ए सारे पड़ोसियों को पता हुंदा है, क्योंकि सब्जी कट्टन ते दाल चुनन दे काम सब दे उथे ही बह के थींदे हन। सिलाई कढ़ाई ते बुनाई दा काम भी उथाई नेक दूजे दी सलाह।

पीस, मेकअप का समान देख के राकेश ने आख्या ए सारा समान गिनन दी क्या लोड़ है। विन्नी आख मटका के आखन लगी, पापा असा हुन कलोनी विच रहंदे पए हां, इत्थे ही ये सब चलसी, पहले आले समान कुते रिटायर समझ गिनो। इतने विच मनीषा आ गई ते आखन लगी, सुनदे पए वे, घर खर्च आले पैसे ते बाजार विच खर्च थी गए हैं, हुन होर पैसे दे दे उना। राकेश गुस्से विच आखन लग गया, तेको पता ते है साडे उते कितना सारा कर्जा चढ़िया पे, ए सारा समान कुछ टाइम रोक के ना गिन सकदी हमें। मनीषा हाथ मटका के आखन लगी, कुछ टाइम बाद तुहाडे कर्जा उतर वे सी क्या, कर्जा ते इवें चल जा रहा सी, हुन असा इत्थां आए हां ते इत्थां दे हिसाब नाल रामना भी ते पोसी ना। हुन राकेश क्या आखदा, कुछ होर दिहाड़े ते निकले होसन। राकेश घर आया ते बैठक विच एक सोफा देख के हैरान थी गया। हुको हैरान देख के सौरभ आखन लग गया, पापा जी अज मामा जी आए हन। आखन लगे, तुहाडी बैठक ते बहुत वड्डी है, इत्थां एक सोफा जचदा कहि नहीं पिया, साडे एक पड़ोसी शहर छोड़ के विंदे पए हन, हुने सोफा बहुत सस्ता विकदा पे, उकू मंगवा के अपनी बैठक सजा गिनो। मम्मी ने ते हा कर दिती ते मामा जी भी हूं वेले सोफा गिन के आ गए। राकेश को ते चक्कर आवन पै गए, हुकू लग्या ए कोठी ते हुकू खावे सी, खर्चे वधदे पए हन, जनानी ते बाल कलोनी दा वास्ता देंदे पए हन, ही करके ओ सवेर नाल दुकान ते वन बांदा ते राती देर तक बैठा रहंदा। इतनी मेहनत दे बाद भी जो कुछ कमेंदा हई ओ कर्जे दे सूद विच निकल वेंदा हई। कर्जा कड्डन उतर सी हिंदे ते कोई सीरा ही नजर कहना आंदा पिया हई, हिं चिंता दा असर हुंदी सेहत ते पै गया। डाक्टर कोल गया ते ए चंगा भला पैसा हुंदी कमाई ते लगन पै गया। एक दिहाड़े राकेश हस्पताल तो बाहर निकलदा पिया हई ते हुकू पुराने महल्ले आली मोनू दी डाडी दिख पई। राकेश को इवें लग्या जिवें कोई अपना दिख पिया होवे, ओ फट मन के डाडी को मिलिया। मोनू दी डाडी भी हुकू देख के बहुत खुश थई, दुआ उथई बह के एक दूजे दा हाल चाल पुछन लग गए। डाडी ने आख्या, राकेश तेको क्या थी गए, पहले को लो बहु कमजोर थी गए। राकेश आखन लग्या, ना भाभी तू सब बहु टाइम बाद डिठे ताई लगदा पे। डाडी आखन लगी, ना वे मैं तेको छोटे ला देख दी आंदी पई हां, हुन थोड़े जे महीने विच मेरी नजर धोखा नहीं खा सकदी, दस पुत्र क्या गल है, मैं तेरी मां वर्गी हां। राकेश दा मन भर आया ते आखन लग्या, क्या दसा भाभी, कोठी ते बनवा गिदी है पर कर्जा बहु चढ़ गए, सोचा है पुराना मकान वेच चले सा ते कुछ कर्जा लैवे सी, पर हुंदा ते कुछ रेट मिलदा ही कहनी पिया, इडो सारी कमाई ब्याज उतारन विच ही लगदी पई है, कर्जा उतरन दा ते कोई सिरा ही नजर कहनी आंदा पिया, क्योंकि कलोनी विच रावण नाल खर्चे भी वधदे पए हैं। डाली आखन लगी, तू ए दस जे तेडे कोल पैसा कहना है ते तू कोठी बनवाई क्यों है, तेडे कोल चंगा भला मकान ते है पिया ना। राकेश आखन लग्या, तू सा उथो चले गए, कुछ बे पड़ोसी भी चले गए ते असा सोचे, हुकू विचो ही टोक के डाडी आखन लगी, तू सोचे मैं भी एक कोठी दा खिडौना गिन गिना, कोठी को तू एक खिडौना ही समझा है, जेड़ा एक पड़ोसी ने गिदे ते दूजा भी गिन गिने। पोत्र बुरा ना मननी, नकल सोच समझ के करिंदी है, असा अगर कोठी बनवाई है ते पैसा मेरे पोत्र ने कह नहीं लाया, पुरखा दी जमीन वेच के साको कुछ पैसा मिलया है ताई असा कोठी बनवाई है, पर तेरा पियो तो कुछ नहीं छोड़ के गया, तेडे कोल ते बस एक दुकान है, हुंदे नाल तू घर भी चलावना है ते बाले दी अगो दी जिंदगी भी बनावनी है, बाला ने अगो वड्डी पढ़ाई करनी है, दी परनावनी है, कोठी दे चक्कर विच तू अपने आप को ते मुकेंदा ही पए, तू अपने बाला को भी ढंग नाल पढ़ा लिखा ना सकसे, ना ही छवेर को परना सकसे। पुत्र मेरी गल मान, तेरा पुराना मकान हले विक्या कहीं नहीं, तू कोठी को वेच के वापस उठाई चलावन ते अपना सारा कर्जा लहा दे, हिंदे विच तेडी ते तेडे परिवार दी भलाई है, लोग तेडी हसे भी जरूर उड़े सन पर तू परवाह ना करी, हसन आले तेरा कर्जा कहना उतरे सन, बस चार दिन हस के चुप जरूर थी वे सन, अगो तेडी मर्जी। इतना समझा के डांडी उथो चली गई। राकेश थोड़ी देर सुचेंदा रह गया, हुन हुकू लग्या कि हुंदा सिर दा बोझ हल्का थी गए, हुन हुकू दवाई दी भी लोड़ कई नहीं, और सीधा घर गया ते रोटी खा के मनीषा को आख दे, साडा कर्जा बहु जल्दी उतरन आला है। मनीषा खुश थी के हैरानी नाल पुछन लगी, सच्ची विच पर इतना पैसा कित्थों मिलदा पे। राकेश आखन लग्या, मकान वेच के। मनीषा हैरानी नाल बोली, कितने विच विकसी मकान। राकेश, जितना सारा कर्जा है मुंदे कोल भी ज्यादा, पर फर्क ए है असा ओ मकान ना वेच के ए कोठी भी चंदे पए हां। मनीषा रोमना जिया मुंह बना के आखन लगी, ए क्या आखेंदे पई हो, भला हुकू असा क्यों विचेसु। राकेश आखन लग्या, कर्जा उतारन वास्ते ताई ते बाल अगो वड्डी पढ़ाई कर सकसन ते चंगे घरां विच इना दा रिश्ता थी सी, ही कोठी विच रह के ते बच्चा दी अगो दी जिंदगी खराब थी वे सी, मैं भी दुकान ते ना मन के डाक्टरां कोलो चेक अप करविंदा रहवे सा। इतना आके राकेश डाक्टर दी पर्ची मनीषा दे अगो रख के समन चला गया। मनीषा काफी देर बह के सोच विचार करेंदी रही, वल इहो फैसला।

ए हरी साफिया मलिक टकाया की सिराई के प्रोग्राम इथा ही खत्म थींदा है। प्रोग्राम तो हाँ को किंजदा लगा साकू खत घर के दसो असी तो हडे खतां दी उडीक करसा। हरजीत कौर को इजाजत देवो।

अपने विचार पेश करन जा रही हां जो सिर्फ एक विशा ही नहीं बल्कि साड़ी जिंदगी अते मौत दा सवाल है। सदा अज दा विशा है जी स्वच्छ वातावरण सब दे लई जरूरी। बिल्कुल दोस्तो अज दे इस प्रोग्राम दे विच असी किसी फिलोसफी दी गल नहीं करनी बल्कि अजिही गल करनी है जो मेरी तुहाडी अते साडे बच्चियां दी सार अग नाल जुड़ी हुई है। अज असी गल कर रहे हां जी साडे आले दुआले दी यानी कि साडे वातावरण दी। पर गल शुरू करन तो पहला किसी शायर दियां दो लाइना तुहाडे नाल। धरती अंबर रुख ते पानी सब कुदरत दी अजब कहानी। धरती अंबर रुख ते पानी सब कुदरत दी अजब कहानी। जेकर इना नू दाग लगावांगे दसो फिर किथे जावांगे। साफ हवा जे मिले न सानू जिंदगी दी जंग असी ते हार जावांगे। बिलकुल जी सच्ची गल है कि जे स्वच्छ वातावरण नहीं तो फिर साडा कोई वजूद नहीं। जे सानू साफ हवा नहीं ना मिल रही फिर सच्ची मुची असी अपनी जिंदगी दी जंग जेड़ी है ना हार जानी है। दोस्तों वातावरण दा मतलब है कि साडा आला दुआला ओ हवा जिस च असी साह लैंदे आ ओ पानी जो असी पीने आ ते ओ मिट्टी जो सानू अन्न दिंदी है। जेकर सब कुछ साफ नहीं ना होवेगा तां धरती ते जीवन दी कल्पना करना असंभव है। साडे पंजाब दी धरती गुरुआं पीरां दी धरती है। साडे गुरु साहिबान उन्होंने सदियां पहला ही वातावरण दी अहमियत नूं समझ लिया सी। श्री गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी विच फरमाया है पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। बिल्कुल जी एदा भाव है कि हवा साडी गुरु है पानी साडा पिता है ते धरती साडी मां। रेडियो सुन रहे मेरे प्यारे दोस्तों जरा दिल ते हाथ रख के सोचो कि असी अज अपने गुरु पिता अते मां दा सत्कार कर रहे हां। बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि असी अखौती तरक्की दी दौड़ विच अन्ने होके अपनी मां वर्गी धरती नूं गंदा कर रहे हां पिता वर्गे पानी नूं जहरीला बना रहे हां ते गुरु वर्गी हवा विच प्रदूषण दा जहर घोल रहे हां। स्वच्छ वातावरण किसी एक व्यक्ति दी लोड़ नहीं है ए हर पशु पंछी रुख पौधे ते मनुख यानी कि समुची कायनात लई जरूरी है। वातावरण साडी जिंदगी दा आधार है। हवा पानी मिट्टी रुख पौधे ते जीव जंतु मिलके साडा वातावरण बनाउंदे ने। अज दे आधुनिक युग विच जिथे इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है उथे ही साडा वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। इसलिए सानू वातावरण दी स्वच्छता वल ध्यान देना चाहिदा है क्योंकि स्वच्छ वातावरण दे बहुत फायदे ने। चंगी सेहत कुदरती संतुलन मानसिक शांति हुण चंगी सेहत जिहड़ी है ना इह साफ हवा ते शुद्ध पानी नाल मिलनी है ना ते मनुखी सेहत लई इह सब तों लोड़ीदियां चीजां ने। जे वातावरण साफ होवेगा तां असीं साह चमड़ी ते पेट दियां भयानक बीमारियां तों बचे रहांगे। एक स्वच्छ वातावरण धरती ते जीवन दे संतुलन नूं बनाई रखदा है। रुख पौधे ते जंगली जीव सही तरीके नाल वधदे फुलदे ने जिस नाल मौसम दा चक्कर भी सही रहिंदा है ते हरियावल ते साफ सुथरा आला दुआला इंसान नूं मानसिक तणाव तों मुक्ति दिवांदा है ते ताजगी प्रदान करदा है। लेकिन अज वातावरण दे सामने इहनूं साफ रखण दे सामने बहुत सारियां समस्यावां भी ने। अज जदो असी सवेरे उठदे आ ना तां सानू ताजी हवा जिहड़ी है ओह नहीं मिल रही। सानू ताजी हवा दी जगह की मिलदा है जी धुआं। साडे वातावरण नूं तीन मुख बीमारियां जिहड़ियां ने ओह लग चुकियां ने हवा प्रदूषण जल प्रदूषण प्लास्टिक ते कूड़ा। हवा प्रदूषण बारे तां जी पता सारिआं नूं फैक्टरियां ते गड्डियां दा जिहड़ा धुआं है फसलां दी जिहड़ी पराली उहनूं लगाई जाण वाली अग इहनां सारी चीज़ां ने साडी हवा नूं इन्ना खराब कर दित्ता है कि अज साह लैणा वी औखा हो गया। फैक्टरियां दा कैमिकल वाला गंदा पाणी ते इह साडीआं नदियां नहरां ते जमीन दोज़ पाणी विच मिल रिहा है

0: लंघाइया
1: आजू आजू शिंगारा सिंह जी आजू बच्चे आलो आजू
0: जय हिंद जी रुलिया राम जी जय हिंद
1: जय हिंद जी जय हिंद जी शिंगारा सिंह जी बच्चे आलो की हाल चाल है तेडा
0: हाल चाल वाल ने जी तगड़े ने तुहा सुनाओ
1: हाल चाल तगड़ा देखो कई हरी ना हाल चाल तो तगड़ा हुंदा है वो जिदा कहते हैं ना दूजे का मूह लाल ते अपना लपड़ मार के लाल कर लेना साहब
0: की गल हो गई
1: है कि नहीं आम तौर ते अज असी अपने हिसाब नाल नहीं जूंदे दूजे के हिसाब नाल चलदे
0: सही गल
1: है कि नहीं वो भाई दूजे का हिसाब किताब अपना है उहदा बेत बहादुर ताकत सारा कुछ अपनी है
0: परमात्मा ने देखो दिमाग हरेक नु अपना दिता है उन्हें अपनी सोच मुताबिक जीना तुसी अपनी सोच मुताबिक जीना
1: शरीर का भी फर्क है
0: सही
1: शरीर जिदा कहने के स्ट्रक्चर जिदा मकान का हुंदा ढांचा
0: जी
1: जिहड़ा शरीर का ढांचा एक दूजे नाल मेल नहीं खांदा
0: नहीं खांदा जी
1: है कि नहीं तो इस करके जे किसी बंदे का शरीर का ढांचा ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਾਂ
0: ਜੀ
1: ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
0: ਪਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ
1: ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा

कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: वसोनी भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर है। देखिए जुलाई का महीना शुरू हो गया है और जुलाई का महीना जो खरीफ फसलों और सब्जियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और भाई जिन किसान भाइयों ने भाई देखे धान की नर्सरी लगा रखे है वो जुलाई के पहले दूसरे पखवाड़े में धान की रोपाई कर सकते हैं। समय उत्तम समय माना जाता है। और देखिए साथ ही भाई जो मध्यम और देर से पकने वाले किस्मों की रोपाई इस समय पूरी कर ले, कतारों में रोपाई करें और साथ ही खेत में जो उचित जल स्तर बना के रखे। जिन किसान भाइयों ने भाई देखे मक्का सोयाबीन और अरहर लगाना चाहते हैं और अभी बुआई नहीं की है तो भाई वो अभी इसमें देरी ना करें और जुलाई के पहले सप्ताह में ही अगर कर ले तो अच्छी रहेगी
1: जी।
0: और कम अवधि वाली दालों बाजरे की बुआई भी इस महीने की जा सकती है। साथ ही सब्जियों की अगर बात करें तो भाई इनकी जो नर्सरी तैयार होने के बाद खेतों में रोपाई टमाटर और बैंगन की कर सकते हैं। खीरे की अगर बात करें तो मचान विधि उठी हुई मेड का इस्तेमाल करके जिसमें बारिश में फसल गलने से बचे और अच्छी पैदावार हो। फूल गोभी और पत्ता गोभी बरसात के मौसम के लिए विशेष किस्में जैसे मानसून क्वीन उगा सकते हैं। और साथ ही बात करें तो भाई देखिए प्रबंधन की अगर बात करें तो जल निकासी भारी जो बारिश के कारण कई बार भारी बारिश हो जाती है तो भारी अगर बारिश होती है तो भाई खेतों में जल भराव की समस्या हो जाती है। खेतों की मेड़ों को मजबूत करें ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके। और खरपतवार नियंत्रण भी वही फसलों को समय से खरपतवार से बचाने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें। साथ ही देखिए मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित तो जो उर्वरक और जैविक खाद जो गोबर वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग करें। और कीट और रोग जो नमी में अधिक होते हैं तो भाई कीट और रोगों से भी फसलों को बचें।
1: और एक छोटा सा मैं भी यहाँ पर बोलना चाहूंगा सुनील भाई कि यहाँ पर अगर हम अधिक वर्षा की स्थिति में खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें ताकि फसल की जड़ों को नुकसान कम से कम पहुंचे। और वहीं पर खरपतवार नियंत्रण की बात हमारे सुनील भाई निकल रही है। और यहां पर ज्यादातर जो देख संभावनाएं हैं तना छेदक और फल और केला महुआ आदि कीट रोगों से उनके सावधान रहे हैं। और धान की नस्ल की बात जो ऑलरेडी उन्होंने निकल रही है और कम से कम सबसे महत्वपूर्ण जो जुलाई के महीने में ध्यान रखने योग्य बातें जो हमारे पशुपालक हैं वो अपने पशु

0: पशुपालक पशुओं को इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा लें, जिसमें टीकाकरण करना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान पर नजर रखें, उसी के अनुसार खेती के कार्यों में और योजना बनाएं और फसल बीमा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का भी समय पर लाभ उठाएं।
1: बिल्कुल, तो देखिए भाई, इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमने पहले बताया कि भाई जुलाई का महीना काफी महत्वपूर्ण होता है, तो सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और सुनिए भाई, बातचीत भाइयों से और भी करेंगे आज पत्रोत्तर लोक संगीत के साथ, कृषि पत्रोत्तर, तो भाई वो भी शामिल करेंगे
0: जी।
1: लेकिन पहले भाइयों का मनोरंजन कराते हैं और विनोद कुमार से सुनाते हैं उपदेश। और विनोद कुमार से उपदेश सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है वो मिली है नूर महल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज, सलत जहानाज और उनकी समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गुलाम रोड हरिगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से, सुरेंद्र संधु, अनिता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, सुरेश गरोवर, बेबी गरोवर, गौरव गरोवर और महेश और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है भाई, ये फरमाइश हमें मिली है जीटीबी मार्केट मंडी से, और भेजने वाले हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, हीना और उनका समस्त परिवार
0: जी। अगला पत्र मेरा है जामियाना गाजियाबाद गाजीपुर से है, ये सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति उनका पूरा परिवार वहीं पर। ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल और इनका पूरा परिवार। ये है गोयरा जलंधर से पत्र में भेजा है। ये एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है राय गांव नगरी छत्तीसगढ़ से पत्र है, ये खिलेश कुमार साहू, चित्रलेखा साहू, शुभम और उनका पूरा परिवार।
1: विनोद कुमार को ही सुनना चाहते हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। साथ ही फरमाइश मिली है अनारकली बाजार जगरो पंजाब से, ये भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक और जयपाल यादव
0: जी। एक और पत्र में हम जो सुनना चाहते हैं विनोद कुमार जी को, ये है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से पत्र लिखते हैं, ये इन्होंने अपना नाम लिखा है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और उनका पूरा परिवार। एफ एम एच ढाना नसाना भिवानी से पत्र में लिखा है, जगदीश चंडालिया, राजीव चंडालिया, सीता, सतीश चंडालिया, रितेश एन का पूरा परिवार। और
1: ये फरमाइश हमें मिली है सुनी भाई गांव टोरावाला से पंजाब से, उसको भेजने वाले गगनदीप थांदी, त्रिपता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी और उनका समस्त परिवार।
0: ये रघुनाथपुरा जिला श्री गंगाना राजस्थान से पत्र मिला है हमें, ये है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और उनका पूरा परिवार। और चाक एमडी पतड़ोड़ अनूपगढ़ राजस्थान से पत्र हमें मिला है, ये मंगला श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील और उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है धनौरी तेलीवाल उत्तराखंड से, और इसको भेजने वाले निशा सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। साथ ही हमें फरमाइश मिली है कनेरा मोला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, कर्ण बत्ता और उनके समस्त परिवार की तरफ से। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाइश मिली रजाक मोहम्मद, समीम बेगम और उनके परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कायल, कोयल मल्होत्रा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: शिवाजी कलोनी रोहतक से पत्र मिला है, ये पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और उनका पूरा परिवार। और यहीं पर जिला मुरादाबाद गांव दुपलापुरा उत्तर प्रदेश से पत्र मिला है, मुकेश कश्यप, सोनू और राजपाल, मांगी, लक्ष्य, मोहिनी और उनका पूरा परिवार। और एक ये है सनी भाड़ा महासुंदर छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है, जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिवांशु और उनका पूरा परिवार। और ये गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से पत्र मिला है, स्वर्ण गिल, दलजीत सिंह, रंजीत सिंह, गुरनेर लाल और अजीत काल उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है रामगढ़ कैंट से, और इसको भेजने वाले महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। चौधरीवास से फरमाइश मिली है राजू अग्रवाल, केशव, प्रियंका और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: ददरेंगी से ये पत्र मिला है, भगवत वर्मा, शांति देवी वर्मा, ललावती वर्मा, उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश में रेंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की
0: जी। ये पत्र एक और शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में, ये नारे वाले महाराज से पत्र मिला है, पीसी नेवाकर, निर्वाण नेवाकर और विशाल नेवाकर उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है पुराना तालाब डुमराव से, वली अल्लाह अंसारी से, बेगम सबरम राज और उनका समस्त परिवार।
0: जलालाबाद वेस्ट से पत्र मिला है जिन्होंने सुनना चाहे विनोद कुमार को, ये है सुनील कखनीजा, पूनम कखनीजा, विशाल प्रिया उनका पूरा परिवार। और ये

0: है दादा बाबू रोड ग्रे झारखंड से पत्र मिला है मोहम्मद यासी अंसाज और बाबू एहसाद फिरकी बेबी चाहत और उनका पूरा परिवार। विनोद कुमार से उपदेश सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव। साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से और भेजने वाले सज्जन जागड़ा राजबाला कार्तिक वेदांश
1: जी।
0: और ये लिखते हैं कि भाई एक जो ग्रामीण संसार का जो कार्यक्रम बहुत पुराना है वह मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि भाई ये कार्यक्रम को सुनते हैं।
1: जी बिल्कुल। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं हमारे भाई ने लिखा है ये पत्र आया है हमें ये है ये पत्र गांव तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से पत्र मिला है नाम है मिंटू और सुनील और इनका पूरा परिवार और यहीं पर एक और पत्र शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में ये है पवन खेड़ा महाराज से पत्र मिला अभिजीत गैवास्कर राही श्रीमती सरिता पंडिता अर्जुन गैवाकर और उनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमें मिली है गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई वेद मीडा और अलका मीडा की। और तो आइए अब सभी की पसंद पर सुन लेते हैं विनोद कुमार से ये उपदेश
1: जी।

0: कहना सुना अपने पसंद है विनोद कुमार को और अब हम बात इसके बाद हम एक पत्र में मिला है, ये पत्र में भेजा है क्या, ये जोधपुर राजस्थान से पत्र हमें मिला है। ये विनोद भाई ये पत्र लिखते हैं, लिख रहे हैं कि क्या मैं बाजरे की बिजाई इस समय कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ तो इस बिजाई में किस्में उन्नत किस्में क्या क्या हो सकती हैं, कौन सी भूमि उचित रहती है और इसके लिए हम बीज की क्या मात्रा ले सकते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं करें जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले।
1: तो विनोद भाई देखिए, आप बाजरे की बिजाई करना चाहते हैं तो वैसे तो इसका जो सही समय है वो जून व जुलाई के मध्य तक का समय माना जाता है। मध्यम अवधि वाली जो किसी जगह अगर बात करें 70 से 80 दिन में पक्के दिन वाली है तो वो 10 जुलाई तक उसकी जो बिजाई करना सबसे उचित माना जाता है। और सिगर पकने वाली किस्मों की बात करें तो भाई 20 जुलाई तक इसकी जो बिजाई करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो भाई समय अब खेत की अगर आपकी तैयारी है तो देरी ना करें, और जहां तक भाई खेत की तैयारी की बात की तो देखिए इसकी बिजाई के लिए 2 या 3 जुताई आवश्यक है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए गहरी जुताई करना बहुत ही अच्छी है। उन्नत किस्मों की बात करें तो भाई देखिए उन्नत किस्मों में स्कूल किस्मों की अगर बात करें तो आप राजस्थान से बात कर रहे हैं, राजा 171/82 से 87 दिन में जो पक्कर तैयार हो जाते हैं, CZP 98/274 से 82 दिन में पक्कर तैयार हो जाते हैं, ICTP 82/03 जो 70 से 75 दिन में, और MP 383/75 से 80 दिन में पक्कर तैयार हो जाते हैं। संकर किस्मों की अगर बात करें तो HHB 67/65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, GHB 538/70 से 75 दिन में, RHB 121/75 से 80 दिन में, और GHB 719/70 से 75 दिन में, ICMH 356 की बात करें तो 75 से 80 दिन में। जहां तक जब भूमि की आपने बात की, वैसे तो देखिए भाई उचित जल निकासी वाली सभी प्रकार के भूमि में बाजरा उगाया जा सकता है, लेकिन दोमट भूमि इसके लिए अच्छी तरह और उचित मानी जाती है। साथ ही भूमि में भाई जल निकासी का उचित प्रबंध होना बहुत ही जरूरी है। और बीज की मात्रा की आपने बात की तो जो बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सबसे उचित व उन्नत माना जाता है, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है। जहां तक भाई सिंचाई की बात है तो देखिए बाजरे की फसल सामान्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, फसल में सिंचाई की आवश्यकता विशेषकर फूल आते समय ही पड़ती है, यदि उस समय पर्याप्त नमी नहीं होता आवश्यकता अनुसार 1 या 2 सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। बुआई के 3 से 4 सप्ताह तक खेत में निराई गुड़ाई कर लें और आवश्यकता अनुसार दूसरी

0: बड़ा इसके 15 से दिन बाद 15 या 20 दिन बाद अवश्य कर ले। बाजरे के सिक्के जब हल्के भूरे रंग के बदलने लगे तब पूरा सूखने लगे तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, उन्नत किस्म लेंगे, समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे बाजरा फसल से भरपूर उत्पादन।
1: जी, हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं ओम वीर आर्य से। ये

फोन लगाइए तो भाई ने अपडेट सुना होंगे और अपने के कार्यक्रम के बारे में बता दे। कल 5:10 पर कार्यक्रम लोकरंजनी का आनंद ले सकेंगे। 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के बारे में और साथ ही चर्चा करेंगे बाबू जगजीवन राम स्मृति दिवस के बारे में। और भाई 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी दे देंगे, खरीफ फसलों में जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन और साथ ही भाई योजना के बारे में जानकारी देंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय भाई यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदल्ला। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं लीजिए अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजाए कार्यक्रम।

और सोनाली राठौड़ के युगल स्वरों में अभी आपने सुनी ये प्यारी सी गजल। और श्रोताओं, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा देते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, गजलों से सजा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Weg.
1: निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई चाहता है
2: शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की। दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 7 में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक वर्ष के लिए ग्रीन कैलेंडर तैयार किया। उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न जिलों में चयनित सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिशन कायाकल्प को जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सहयोग देने वाली संस्थाओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदाय के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकारी संसाधनों के साथ साथ समाज की भागीदारी से स्कूलों में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जो

0: शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी का एक प्रभावी उदाहरण है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मिशन कायाकल्प के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों में तेजी से बदलाव दिखाई देने लगे हैं। दक्षिण जिले के रामानुजन सर्वोदय कन्या विद्यालय महरौली में लगभग 48 लाख रुपए और सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में करीब 58 लाख रुपए की लागत से बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए हैं। वहीं पश्चिम जिले के मोहन गार्डन के सरकारी विद्यालयों में लगभग 77 लाख रुपए की लागत से व्यापक आधारभूत ढांचा सुधार कार्य और जनकपुरी में स्थित जीएसकेवी में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से आधारभूत मजबूती को बल दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी जिले के गोकुलपुर और शादरा के विद्यालयों में भी बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मिशन कायाकल्प केवल रंग रोगन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी स्कूलों के समग्र रूपांतरण का अभियान है। इसके अंतर्गत स्कूल भवनों की मरम्मत, दीवारों की पेंटिंग और व्हाइट वॉशिंग, जर्जर शौचालयों का नवीनीकरण, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ पॉइंट और वाटर कूलर की स्थापना की जा रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपए से अधिक की संयुक्त सब्सिडी देकर रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने पालम विधानसभा के द्वारका सेक्टर 7 स्थित एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स इंक्लेव में 500 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस योजना को केंद्र सरकार से 90 लाख रुपए और दिल्ली सरकार से 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ विकसित भारत जी राम जी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने 1 वर्ष का ग्रीन कैलेंडर तैयार किया है, जिसके अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। श्री चहल ने यह बात आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के 31वें संस्करण पर बीबी के दत्त कॉलोनी में सामूहिक वृक्षारोपण के आयोजन के दौरान कही। एक पेड़ मां के नाम पहल पर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल अभियान नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक उत्तरदायित्व का जन आंदोलन है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आगामी वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम स्थल के तैयारियों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को करेंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प राजधानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक ग्रीन, क्लीन और स्वस्थ बनाना है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय और पश्चिम दिल्ली के बीच जुड़ाव को अधिक बेहतर बनाने के लिए आज मोरी के टर्मिनल से खेड़ी बाबा पुल के बीच नई बस सेवा रूट 753 एक्सटेंशन की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट।
3: परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ये रूट जनकपुरी, विकासपुरी, हस्तसाल, शिव विहार, उत्तम नगर, हरिनगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सेंट्रल दिल्ली और मोरी गेट तक सीधा, किफायती और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्शन उपलब्ध कराकर आवागमन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। श्री सिंह ने कहा कि इस मार्ग का निर्धारण राजधानी में दफ्तर जाने वालों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वालों की सुविधा को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये रूट दिल्ली के सबसे व्यस्त अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट हब में से एक, मोरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डा और कश्मीरी गेट जैसे राजधानी के प्रमुख अंतर्राज्यीय परिवहन केंद्रों से सीधी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा ये रूट अंतर्राज्यीय बस सेवाओं और दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सुविधाजनक और किफायती कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र साउथ दिल्ली मेन पाइपलाइन के रखरखाव कार्य के कारण कल कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जल बोर्ड ने बताया कि इन इलाकों में कल सुबह 10 बजे से लेकर अगले 8 घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर जल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क करने की सलाह दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आज संसद भवन में देश के विभिन्न रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल, श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार और महामंत्री सुभाष गोयल भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने आने वाले मॉनसून सत्र के लिए सभी जरूरी इंतजाम और तैयारियां कर ली हैं। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत पूरी तरह से तैयार है।
4: एनडीएमसी की तो अपनी सत्र की तैयारी से पहले जो भी रखरखाव व्यवस्था सब चीजें हमारी पूरी तरह तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित नई दिल्ली हर जो तैयार है। मानसून की भी तैयारी हमने पूरी तरह करा।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की गति और व्यापकता को नई परिभाषा दी है और जन कल्याण को सुशासन का केंद्र बिंदु बनाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात आज रोहिणी सेक्टर 10 स्थित सांवरिया से टेंट में आयोजित सांस्कृतिक संध्या को संबोधित करते हुए कही। उत्तर स्वामी मलाई मंदिर का महाकुंभाभिषेक समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह श्री कांची कामकोटी पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन और उपस्थिति में आयोजित किया गया था। समारोह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तीजन बाई ने अपनी प्रतिभा और आजीवन साधना से भारतीय लोक परंपरा को नई प्रतिष्ठा दिलाई। साथ ही उनकी कला ने हमारे सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और अनगिनत कलाकारों को प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जाना भारतीय लोक कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तीजन बाई ने अपनी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। श्री मांडविया ने लोगों को फिटनेस की शपथ दिलाई और उनसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
5: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखते हैं। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों ना हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज केशवपुरम जोन के गुजरावाला टाउन स्थित एक पार्क का नामकरण प्रख्यात समाजसेवी

0: वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने एक वर्ष के लिए ग्रीन कैलेंडर तैयार किया और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हैप्पी बर्थडे बाय। मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
3: सेविंग करने की भी यही।
4: आई नो माँ, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
4: आरबीआई कहता है
6: उसे की शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: यह आकाशवाणी दिल्ली है। मुझे सुनिए, विगत 25 जून को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश कार्यक्रम का संचालन कर रही है प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया।

0: नमस्कार, आज हमारे युवा साथी हमारे साथ हैं अपनी रचनाओं को लेकर। हमारे ऐसे युवा दिल हैं जिनकी धड़कनें पन्नों पर शब्दों के रूप में धड़कती हैं। लिखना अपने आप में एक साधना है, आप इस बात को मानते होंगे, लेकिन अपनी लिखी हुई बात को पहली बार किसी के सामने सार्वजनिक रूप से पढ़ना, साझा करना, ये साहस की बात है। और हमारे युवा साथियों ने आज ये साहस किया है। आकाशवाणी ने युवा प्रतिभा को और बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और इनकी रचनाओं के बारे में जानने के लिए एक प्रतिष्ठित मंच उपलब्ध करवाया है। हमारे युवा साथी अपना लेखन आज हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आकाशवाणी में पहली बार मंच पर अपनी रचनाओं का पाठ करने जा रहे हैं हमारे ये साथी, तो जोरदार तालियों से एक बार सभी का स्वागत कीजिए, सभी का हौसला बढ़ाइए। और सबसे पहले मैं आशु को आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु सिंह, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं अभी MCA कर रहा हूँ, दूसरे वर्ष का छात्र हूँ मैं। और ज्यादा भूमिका न निभाते हुए सीधे सीधे मैं अपने रचना की तरफ आपको ले चलता हूँ। एक शेर देखिएगा कि समझना जरूरी है कि बिछड़ना जरूरी है, समझना जरूरी है कि बिछड़ना जरूरी है, मजबूरी ये भी है कि संभलना जरूरी है। और भूल तो जाऊं मैं उसे कुछ पल में शायद, भूल तो जाऊं मैं उसे कुछ पल में शायद, मसला ये है कम वक्त उसकी गली से गुजरना जरूरी है। और इतने की तरफ लेके चलता हूँ आप सभी को कि

0: ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लोगों के सुनने।
1: तो ये थे हमारे पहले रचनाकार आशु सिंह। जमीन से उठकर फलक को छूने का ख्वाब रखते हैं, ये नए परिंदे हैं, हौसले बेहिसाब रखते हैं। तो हमारे युवा साथी जो आकाशवाणी में आज पहली बार प्रस्तुति दे रहे हैं, इनके बहुत बुलंद हौसले हैं और उन हौसलों में आपने भी थोड़ी सी ऊंचाई फूंकनी है अपने तालियों के माध्यम से। हमारी अगली रचनाकार की डायरी के पन्ने भी खुलने को तैयार है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ स्वाति को। स्वाति स्वर्णकार शाश्वत। तो आइए सुनते हैं स्वाति हमसे क्या साझा करने जा रही हैं।
2: सर्वप्रथम माँ वीणा वाणी को नमन करती हूँ, अपने गुरुजन माता पिता को नमन करती हूँ, आप सभी के पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, अपने आराध्य देव को याद करते हुए पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। फलक

गौर कर माधव, ये दुनिया की सभी खुशियाँ एक दिन छोड़ कर माधव, तेरी बंसी की धुन पर मैं तेरे दर दौड़ आऊंगी। प्रेम के कुछ और पंक्तियाँ सुनेंगे।

0: चले जाएंगे। कुछ और मैं भी शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। उसके हिस्से न देखे इतवार मैंने, उसके हिस्से न देखे इतवार मैंने, न देखा कभी ऐसा किरदार मैंने। सारे जग ने श्रेष्ठ जिसे कहा अब तक, उसके देखे हैं लाखों उपकार मैंने। मेरे सारे गम भी उससे डरते हैं, उन हाथों में देखा है चमत्कार मैंने। जो देती रही सदा उजाले सभी को, देखा है उनका सिर्फ अंधकार मैंने। बसाती है दुनिया जो हमारी खातिर, बसाती है दुनिया जो हमारी खातिर, जीवन भर देखा समर्पण अपार मैंने। मुस्कुरा सब कुछ निछावर जो कर दे, न देखी माँ जैसी कोई दिलदार मैंने। बेवजह चूमे लो हाथ तुम भी उनके, बेवजह चूमे लो हाथ तुम भी उनके, देखे हैं आंखों ने हजार प्यारे हमने। ईश्वर की अनुपम छवि दिख जाए जैसे, ईश्वर की अनुपम छवि दिख जाए जैसे, घर घर में देखी ऐसी सरकार मैंने। शाश्वत ही है ये अवतारे उनका, शाश्वत ही है ये अवतारे उनका, आंचल में जिसके देखा संसार मैंने, आंचल में जिसके देखा संसार मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो स्वाति ने अपने भाव हमारे साथ साझा किए कुछ कहता है दिल कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने कहा कि आकाशवाणी के मंच पर इनकी प्रथम प्रस्तुति है, तो आवाज में थोड़ा संकोच हो सकता है, लेकिन कल्पना की उड़ान जो है

0: है वो कमाल की है और हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये उड़ान जारी रहेगी, इसी तरह से लेखन जारी रहेगा और हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे प्रोत्साहित करने का। मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ अब अमित कुमार यश को। अमित,
1: सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, पावन मंच को नमन करता हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे चार पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ, सुनिए।
2: के हो के मजबूर दूर जाता है, हो के

0: सब सुनाते हैं पीर राधा की, सब सुनाते हैं पीर राधा की, दर्द कान्हा का कौन गाता है, दर्द कान्हा का कौन गाता है।
1: माता एक गीत मैं जन्मदेवी माँ के चरणों में रखता हूँ, उसकी भूमिका में चार पंक्तियां कहता हूँ कि जैसे मानव जीवन में आदर्श जरूरी होता है, जैसे मानव जीवन में आदर्श जरूरी होता है, किसी लक्ष्य को पाने में संघर्ष जरूरी होता है, और काशी मथुरा हरिद्वार तो जाओ पर सबसे पहले, काशी मथुरा हरिद्वार तो जाओ पर सबसे पहले मात पिता के चरणों का स्पर्श जरूरी होता है, मात पिता के चरणों का स्पर्श जरूरी होता है, तब वो गीत पढ़ता हूँ सुनिए।
0: तो दर्पण निहारे सवारे सकल, तो

0: किया उसको माना नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा।
1: पहला बंद निवेद करता हूँ सुन।

0: का भजन कर लिया, इनके चरणों में सर को झुका ना सको, इनके चरणों में सर को झुका ना सको, कांधे कावड़ उठाने से क्या फायदा, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा।
1: दूसरा वंदन निवेद करता हूँ।

देवता घर के भूखे बिलखते अगर, देवता घर के भूखे बिलखते अगर, संत साधु जमाने से क्या फायदा, जिसने पैदा किया उनको मा

वंचित करे जो अमित, बाकी ममता से वंचित करे जो अमित।

0: दो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अमित कुमार। तो हमारे युवा साथी की ये रचना अलग अलग भावनाओं से जुड़ी हुई और माहौल में पूरी तरह भावुकता आपने भर दी है। हम आपके साथियों की जो तालियां बार बार आपको मिलती रही, इसने ये बताया कि आपके शब्द सबके दिलों को छू रहे थे। ऐसे ही होते हैं रचनाकार, कभी मोहब्बत, कभी इबादत, कभी शिकायत। और कैसी होती है रचनाकारों की दुनिया, कवियों की दुनिया, ये हमें बताएंगी अब हमारी अगली साथी। मैं मंच पर बुला रही हूँ मोनिका डागा को। मोनिका अपनी रचनाएं लेकर हमारे बीच आ रही हैं।
2: नमस्कार, मैं मोनिका डागा, राजस्थान विश्वविद्यालय की शोधार्थी। मेरी पहली कविता है कवियों की दुनिया। हम कवियों की दुनिया भी कितनी निराली है, हम कवियों की दुनिया भी कितनी निराली है, कभी ठंडा दूध तो कभी गर्म चाय की प्याली है। व्यंग्य अलंकारों से सजी शब्दों की यह शब्दावली है, अभिधा और लक्षणा तो जैसे आधी घरवाली ही है। कुछ वाक्यों की उलझन तो कुछ शब्दों की जुगलबंदी है, स्वर व्यंजन और मात्राओं की बस थोड़ी माथा फोड़ी है। कभी चांद की महफिल में करते अटखेलियाँ, कभी चांद की महफिल में करते अटखेलियाँ, तो कभी करते तारों संग यारी है, कभी गूंजते तालियाँ तो कभी तानों की प्रतिध्वनि सी है। कभी टूटा दिल तो बने खुद की ही मीत और पक्की सहेली है, कभी हुआ इश्क तो हर पंक्ति हर श्रृंखला एक पहेली है। कभी हुआ इश्क तो हर पंक्ति हर श्रृंखला एक पहेली है। हर अधूरी ख्वाहिश को लिखा हमने, हर अधूरी ख्वाहिश को लिखा हमने कि याद तेरी सताई है, भीड़ में रहकर भी लगता जैसे वर्णमाला बिना तो सिर्फ तन्हाई है, वर्णमाला बिना तो सिर्फ तन्हाई है। और ज्यादा क्या लिखूं, बस मुख में पान और एक तकिया कलाम, इतनी सी पहचान लाजमी है, इतनी सी पहचान लाजमी है। मेरी अगली कविता है किताब। सुंदर जिल से सजी किताब हूँ मैं, सुंदर जिल से सजी किताब हूँ मैं, बरसों से किसी के इंतजार में हूँ मैं। सुकून से पल भर बैठ कोई पढ़े तो मुझे, सपनों की सैर को तैयार हूँ मैं। हर दिल को छूलूं, हर दिल को छूलूं वो एहसास हूँ मैं, छोटे बड़े हर उम्र के लिए आजाद हूँ मैं। हर पन्ने में छुपे कई राज हूँ मैं, हर पन्ने में छुपे कई राज हूँ मैं, चुप्पी में भी बोलता अंदाज हूँ मैं। शब्दों की दुनिया का एहसास हूँ मैं, हर अकेले दिल का विश्वास हूँ मैं, हर अकेले दिल का विश्वास हूँ मैं। पर एक अरसे से बैठी अंदर बहुत उदास हूँ मैं, एक अरसे से बैठी अंदर बहुत उदास हूँ मैं। एक नई दोस्ती की चाहत को बेताब हूँ मैं, एक नई दोस्ती की चाहत को बेताब हूँ मैं। सुंदर जिल से सजी किताब हूँ मैं, सुंदर जिल से सजी किताब हूँ मैं। धन्यवाद।
1: अपनी रचना के माध्यम से मन में आशा जगाती ये थी मोनिका डागा। पहली बार मंच पर होने का डर भी आपकी रचना के तेवर के सामने कहीं टिक नहीं पाया। सराहनीय प्रस्तुति। लफ्जों में छुपी हुई हर बात समझ जाओगे, लफ्जों में छुपी हुई हर बात समझ जाओगे, तुम एक बार सुनो तो सही जज्बात समझ जाओगे। तो हमारे साथी आपके साथ साहित्यिक विधाएं साझा नहीं कर रहे, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं। और अभी

0: ये एक लंबा सफर इनके सामने है। शुरुआत आकाशवाणी के इस प्रतिष्ठित मंच से हो रही है, कुछ कहता है दिल में। अब मैं यहाँ इस मंच पर बुला रही हूँ नितिन वशिष्ठ को। आइए सुनते हैं नितिन अपनी कौन सी रचना हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं। नितिन,
1: मंच को नमन करता हूँ। मेरा नाम नितिन वशिष्ठ है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का थर्ड ईयर का छात्र हूँ। अपनी मुख्य रचना रखने से पहले चंद अल्फाज रखता हूँ कि मैं बनते जुनून से बनी राह पर हूँ, न जानू के जाने कहाँ जाऊंगा मैं। मैं बनते जुनू से बनी राह पर हूँ, न जानू के जाने कहाँ जाऊंगा मैं। मगर बात कहकर ये निकला हूँ घर से, न पीछे मुड़ूंगा न घबराऊंगा मैं। क्या किस्मत बताएगी नजरों को मेरी कि क्या इनमें पनपेगा अब ख्वाब बनकर। मैं जन्मा नहीं था किसी रोशनी में, मगर जी रहा हूँ आफ्ताब बनकर। हर हाल हालात ही हारते हैं, समझो कि ऐसी मेरी शख्सियत है। नवाबी चमक से न पहचान मांगू, मेरा आम होना मेरी खासियत है। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं अपने गीत की तरफ आता हूँ, जो मैंने अपने देश के ऊपर लिखा है।
2: ऊंचा हिमालय अंबर को चूमे गहरी

कुछ नया ही नजारा, देखे हर जगह का अलग बेस है। है कहानी अलग है, जबानी अलग।

को जिसने गोदी में अपनी है आंगन दिया। मिट्टी ये वो है ईश्वर को जिसने

0: मोहम्मद दावर स्वीकार।
1: बेहद रोमानी अंदाज में ये रचना नितिन वशिष्ठ ने हमारे साथ साझा की। अब इस कार्यक्रम की ये अंतिम रचना मैं मंच पर आवाज दे रही हूँ विपिन कुमार ओम को।
0: मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और इस मंच को नमन करते हुए अपनी गजल का मतला और चंगसार आपके सामने रखता हूँ। ये गजल पिता को समर्पित है। तो गजल का मतला कुछ यूँ है कि बयां अपने वो दर्दो गम नहीं करता, बयां अपने वो दर्दो गम नहीं करता, पिता दुख का कभी मातम नहीं करता। तो बयां अपने वो दर्दो गम नहीं करता, पिता दुख का कभी मातम नहीं करता। वो बच्चों के लिए चलता है जीवन भर, वो बच्चों के लिए चलता है जीवन भर, सफर अपना कभी भी कम नहीं करता। और फिर सुने के दबा लेता है तकलीफे वो सीने में, दबा लेता है तकलीफे वो सीने में, पिता रोए तो आंखें नम नहीं करता। हुए नासूर सारे जख्म देखो ओम, हुए नासूर सारे जख्म देखो ओम, असर कोई भी अब मरहम नहीं करता, असर कोई भी अब मरहम नहीं करता। गीत का शीर्षक है चंचल मन, दिल सुनेगा। अधर गुलाबी कमल नयन है, कोमल काया चंचल मन है, उसकी सूरत जैसे मूरत बोली कोयल सी कंचन है। अधर गुलाबी कमल नयन है, कोमल काया चंचल मन है। गीत का पहला बन सुनिएगा कि शब्द गढ़े हैं मोती जैसे छंद।

0: आई।
1: बिल्कुल ऐसे चंदन जैसे महक रहा उसका तन मन है, अधर गुलाबी कमल नयन है, कोमल काया चंचल मन है।
2: धन्यवाद।
3: तो ये थे हमारे साथी विपिन कुमार ओम, बड़ी सुंदर रचनाएं उन्होंने हमारे साथ साझा की और कुछ उपमाएं भी। आंखों के लिए झील हमने बहुत सुना था, आज आपने आंखों को मानसरोवर बताया, तो बहुत सुंदर। आज सफर की शुरुआत हुई है, मंजिल अभी बाकी है। आज सफर की शुरुआत हुई है, मंजिल अभी बाकी है, लिखी है बस कुछ पंक्तियाँ, पूरी किताब अभी बाकी है। तो अपने सभी युवा साथियों से हम यही कहेंगे कि आप मुस्कुराते रहिए, जीवन के अनुभव रचते रहिए, लिखते रहिए, साहित्य से जुड़े रहिए, और जो भी आप लिखते हैं आप उचित माध्यम से हम तक पहुंचिए, हमारे साथ अपनी रचनाएं साझा कीजिए, और अगर उपयुक्त लगी आपकी रचनाएं तो आकाशवाणी का ये प्रतिष्ठित मंच आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम है हमारा कुछ कहता है दिल, युवा लेखन श्रृंखला है। आप जिस भी विधा से लिखते हैं उस विधा में अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं, मार्गदर्शन भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा और प्रतिष्ठित साहित्यकारों के द्वारा समय समय पर। तो मैं नीलम मलकानिया कुछ कहता है दिल कार्यक्रम से अब आप सभी से यहाँ लेती हूँ अनुमति, इस वायदे के साथ कि आप लिखना पढ़ना जारी रखेंगे, पठन पाठन की ये परंपरा आकाशवाणी की प्रेरणा से यूं ही चलती रहेगी। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक मधुर धुन के साथ की थी, इसी धुन के साथ हम समापन भी कर रहे हैं।

अभी आप विगत 25 जून को आकाशवाणी दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित युवा लेखन श्रृंखला कुछ कहता है दिल के संपादित अंश सुन रहे थे। प्रतिभागी थे मानिका डागा, आशु सिंह, नितिन वशिष्ठ, अमित कुमार यश, विपिन कुमार ओम और स्वाति स्वर्णाकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी नीलम मलकानिया। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं कारवां फिल्म से लिया गीत। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने। लीजिए फिल्म संगीत में सुनिए ये पहला गीत।

श्रोता, हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो वादे से जुड़े हुए कई सारे गीत हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई सारे नगमे हैं जिसमें प्यारे प्यारे वादे का जिक्र है, तो कहीं ये सवाल भी कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

तो मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म से लिया गीत। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब जहां एक सवाल है कि क्या हुआ तेरा वादा, तो हम लता मंगेशकर की आवाज में आपको अगला गीत सुनाते हैं जो कलाकार या कहें कि गीतकार ने यह कहा है कि वादा ना तोड़।

0: श्रोता, इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माही और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज

0: शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: विद प्राइम मिनिस्टर अराइवल इन इंडोनेशिया,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर विवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यूकेएमटीओ ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हुआ।

जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलू का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए

0: करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम

0: अमेजोन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, तो ना हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड

88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:17 हो चुके हैं और अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 kHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और DD फ्री डिश पर। पेश है आज की इस तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे रात 9

बजकर 20 मिनट पर प्रोग्राम एक फनकार के तहत पंकज उदास की आवाज में गैर फिल्मी गजलें। रात 9:45 पर खबरें पेश होंगी और रात 9:55 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के तहत आंखों की आम बीमारियों के हवाले से कुछ जरूरी बातें। 10 बजे आप सुनेंगे मुशायरा और 10:30 पर नशो होगा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। और आप सुनेंगे इस प्रोग्राम के दौरान रात 11 बजे खबरें बड़े सगीर से और 11:30 पर नशर होगा प्रोग्राम सुर्खियों में। 11:45 पर आप सुनेंगे कव्वालियां, जिसके तहत आज आप सुनेंगे जाफर हुसैन मदायूनी कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां। रात 12 बजे आलमी खबरें नशर होंगी और 12:10 पर सुनेंगे आप इंस्ट्रूमेंटल मौसीकी के प्रोग्राम के तहत उस्ताद सईद जाफर खान और उस्ताद अख्तर हसन खान का सितारों तबले पर बजाया हुआ राग भीम। रात 12:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आखिर शब के तहत फिल्मी नगमे और 12:50 पर खबरें नशर होंगी। रात 1 बजे आज की 3वीं मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होंगी।

यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम एक फनकार। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में निदा फाजली, मुमताज राशिद और जमीर काजमी की लिखी हुई गजलें।

ऑल इंडिया सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में नीना फाजली की लिखी हुई गजल। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश पंकज उदास की आवाज में जमीर काजमी की ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में गैर फिल्मी गजलें। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमें नशा से मत करें मीडियम 1071 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और TD फ्री डिश पर। आइए अब सुनते हैं खबरें। असमली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने शिवपुरी में दफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लान का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रूपये है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल इजाफे से इतफाक किया है। और फीफा आर्मी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसा पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टाइगर जिले में पुलिस ने 10 से 12 सियाहों को खपोली के नजदीक अद्वशी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि

0: अगर आप कोई कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित हैं तो आप अपना तौलिया किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, और इसके अलावा आई कांटेक्ट, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप आंखों में सनग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें, जिससे कि आई कांटेक्ट से भी दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, तौलिए से, हाथ मिलाने से, ये सब कॉमन है। अगर आप इन सब से ग्रसित हैं तो बेहतर है कि अगर बच्चा है तो स्कूल उनको उसको ना भेजे, क्योंकि अन्य बच्चों के भी होने को संभावना रहती है। अगर आप कॉलेज या कोई नौकरी करने जाते हैं तो अगर एक दो दिन की आप छुट्टी ले लें तो बेहतर रहेगा कि आपके अपने जो कलीग है उनसे इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं।
1: अच्छा, ये आई फ्लू क्या होता है?
0: इसी का जिसको हम कंजक्टिवाइटिस को कहते हैं, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आई फ्लू के नाम से जाना जाता है।
1: जी, इसमें ज्यादातर देखा गया कि आंखें बहुत लाल हो जाती है।
0: जी जी जी,
1: चुभन होने लगती है,
0: आंखों में से डिस्चार्ज आता है, भारीपन, और आंखों में से कुछ महसूस होता है, भारीपन वगैरह का महसूस होता है इन चीजों।
1: जी जी। अच्छा, एक चीज और भी होती है, कभी कभी कहते हैं कि चुभन आंखों में होने लगती है अचानक, और जिसे रोहे किसी जमाने में कहा करते थे, उसे आमतौर पर कभी देख
0: आजकल के केस बहुत कम हो गए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं रोहे पुराने जमाने में वो करते थे, इसको हम उस बीमारी को हम ट्रकोमा के मेडिकल लैंग्वेज में ट्रकोमा के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होने के बाद आंखों में रोहे वगैरह, आंखों में लालीपन होता था। पर गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम की वजह से, जिससे कहते हैं ट्रकोमा एरेडिकेशन प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया हुआ प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो भी पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे जो कि 5 साल से कम है, उनको टॉपिकल एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन 1% दी जाती है, जिससे उनसे बचाव हो जाता है ट्रकोमा का, और आजकल के इनका इंसिडेंस बहुत ही कम हो गया पहले के मुकाबले।
1: अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी इस मौसम में हो सकती है? जैसे बरसात का मौसम है तो क्या आमतौर पर हाथ कहीं लगे, कुछ जरासीमों का मौसम होता है, इस पर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
0: जी जी, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कंजक्टिवाइटिस के बारे में, ये डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरियल के अलावा वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कॉमन है, इसके अलावा फंगल कंजक्टिवाइटिस, ये सारे इन्फेक्शन है जो कि बारिश के सीजन में आपके होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर हम जैसे कि डिस्कस करें कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया

0: जी, उसमें हम मेडिकल लैंग्वेज में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप कंप्यूटर या कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसको उचित दूरी पर रखें, एटलीस्ट आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पे उनसे बचाव बनाकर रखें, और आपका जो कमरे का इल्यूमिनेशन हो, प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो, ये सब चीज छोटी मोटी बातों का आप ध्यान में रख करके आप इस बीमारी से भी बच सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी दी आंखों की आम बीमारी इन्फेक्शन और वजूहत और बचाव और इलाज के हवाले से। यकीनन हमारे सामईन के लिए बड़ी मुफीद रही होंगी आज की ये जानकारियां।
2: ये अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब समाप्त करते हैं एक मुशायरा जिसमें शामिल होने वाले शोरा हैं इंतजार नईम, मतीन अमरोवी, पाउला मैठी और अतिकुल्ला।
3: सामीन, हम आपकी खिदमत में आज एक शेरी निशस्त लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें शिरकत फरमा रहे हैं जनाब इंतजार नईम, जनाब मदीन अमरोही, जनाब पॉपुलर मेरठी और जनाब प्रोफेसर अतिकुल्ला और हम कमाल जाफरी निजामत के फराज अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इस शेरी निशस्त के आगाज के लिए हम सबसे पहले दावत को सुखम दे रहे हैं उर्दू के मोहतबर शायर जनाब इंतजार नईम को कि वो अपने कलाम से आपको और हमें लुत्फ अंदोज फरमाए। जनाब इंतजार नईम,
4: मेरे पीछे करना
3: है। हौसला क्या है सफर की उसरतों का नाम है, हौसला क्या है सफर की उसरतों का नाम है, आतिशी माहौल में सरगर्मियों का नाम है, आतिशी माहौल में सरगर्मियों का नाम है, एक घरों दासाल बेसाहिल बनाना तोड़ना।
4: Thank you.

ठेके लियो का नाम से जिंदगी क्या है इन्हीं ठेके लियो का नाम है। जानो दिल सब कुछ लुटा कर अब शिकायत क्या करें। जानो दिल सब कुछ लुटा कर शिकायत क्या करें। जानते थे इश्क तो बर्बादियों का नाम है। जानते थे इश्क तो बर्बादियों का नाम है। जिनके होठों पर रखी थी पारसाई की कसम। जिनके होठों पर रखी थी पारसाई की कसम। हैफ अब उनकी जबानों पर उनकी जबानों पर बुतों का नाम है। पस्तियों की इंतहाएं रश्क के काबिल उरूज। पस्तियों की इंतहाएं रश्क के काबिल उरूज। ये हमारे मंजरों पस मंजरों का नाम है। ये हमारे मंजरों पस मंजरों

पहले दिल बस एक जस्ते आरज़ू का फैसला, पहले दिल बस एक जस्ते आरज़ू का फैसला, जिसको साहिल कह रहे हो हौसलों का नाम है, साहिल कह रहे हो हौसलों का नाम है। शायरी कहते नहीं लफ्जों के पैकर को नई, शायरी कहते नहीं लफ्जों के पैकर को

یادوں کے صدقے ہو گئے دل جگر دونوں تیری یاد

0: दिलदिगर दोनों तेरी यादों के सदते हो गए।
1: जवाब
0: दिलदिगर।

0: Dios,
1: आने से पहले एक तेरे जाने के बाद और इसे देखें भैसती होने की देरी ना रिवायत आज भी भैसती होने की देरी ना रिवायत आज भी खाक हो जाती है जल के शम्मा पर वाले के बाद
2: खाक हो जाती है जल के शम्मा पर वाले के बाद

माने के बाद और शेर ये भी देखेंगे सर झुकाना शर्त था साकी के पाए नाज पर सर झुकाना शर्त था साकी के पाए नाज पर और अब तो पैमाने ही पैमाने हैं पैमाने के बाद सर झुकाना शर्त था साकी के पाए नाज पर सर झुकाना शर्त था साकी के पाए नाज पर अब तो पैमाने ही पैमाने हैं पैमाने के बाद अब तो पैमाने ही पैमाने हैं पैमाने के बाद हादे साहब ये भी अजब फरते खुशी से हो गया।

रोया गया उसको यहाँ पाने के बाद मैं कहीं रोया गया उसको यहाँ पाने के बाद हादसा ये भी

बाद खाना दिल में मेरा खाना दिल मेरा यादों से तेरी आबाद है खाना दिल मेरा यादों से तेरी आबाद है वरना ये वीरान हो जाता तेरे जाने के बाद खाना दिल मेरा

बस्ती बस्ती सहरा सहरा उम्र भर करिया करिया बस्ती बस्ती सहरा स

بزم سخن پالمتی نے

0: एक्सेप्ट नहीं करता कभी हरगिज मेरा बाण। उनके माल को मगमूम शायर ने कहा, मेरो गालिब भी नहीं कुछ आपके दरबार में। मेरो गालिब भी नहीं कुछ आपके दरबार में, बुल्लियाते मेरो गालिब से गजल लाया था मैं। हाँ वो भी छपना भाई आपके और अगर चाहे तो चंद शेर प्रत्येक हफ्ते में अपना मुशायरा होगा,
1: अपना मुशायरा होगा।
0: खुदा है भाभी के बेटा मुशायरा होगा, भाभी के बेटा मुशायरा होगा। न ताजो रक्स की महफिल न बदन कवाली, न ताजो रक्स की महफिल न बदन कवाली, हमारी शादी में तन्हा मुशायरा होगा। होगा तुम ही बताओ गले बाल शायरों के बगैर,
1: बताओ
0: गले बाल शायरों के बगैर, अगर हुआ भी तो कैसा मुशायरा अगर हुआ। सुना है बाप बनेगा एक बच्चे का,
2: अच्छा
0: हमारे साले का साला मुशायरा होगा, होगा जो बदनसीबी से कल को मुलाकाम का अपने सहारा मुशायरा मुलाजमत सिकम का अपने सहारा मुशायरा होगा। उठे हजार सदाए मुशायरे के खिलाफ, दावा है होगा मुशायरा होगा, मुशायरा होगा। अब बिला बिला बिला बुलाए भी मुमकिन हुआ तो जाऊंगा,
1: बिला बिला
0: बिना बुलाए भी मुमकिन हुआ तो जाऊंगा। कहीं का होगा किसी का मुशायरा
2: होगा,
1: किसी
0: का मुशायरा होगा। हमारे शहर में है पॉपुलर बहुत शायर,
1: हमारे शहर
0: में सब आए तो कई दिन का
1: मुशायरा। मुख्तलिफ रंगों में अपने जरीफाना कलाम से, बाबाहिया कलाम से, तंजिया कलाम से नवाज रहे थे। आपने यकीन महसूस किया होगा कि उनकी शायरी सिर्फ तफरी की शायरी नहीं है बल्कि उसमें जिंदगी का पैगाम भी है। और अब आइए इस निशस्त के आखिर में उर्दू के मोहतबर नाकिब शायर और मुहक्किक नजमुल खास शायर डॉक्टर प्रोफेसर तुगुंदा सुंदर खास करते हैं, जो अपने कलाम से हमें नवाज
2: जी
1: हमसे खुश रंग जमीलों की खबर ले आकर, जमीलों की खबर ले आकर, वरना परियां न उड़ा लें कहीं तन्हा पाकर। जमीलों की खबर ले वरना परियां न उड़ा लें कहीं तन्हा पाकर। कौन कह सकता है कुछ देर में क्या हो जाए,
2: कौन कह सकता है कुछ देर में क्या हो जाएगा,
1: क्या क्या हो जाए,
2: क्या हो जाए,
1: कौन कह सकता है क्या हो जाए। कोई जाता है जरा देर मुझे ठहरा कर,
0: जाता है जरा देर मुझे ठहरा,
1: कौन कह सकता है क्या हो जाए। कोई जाता है जरा देर मुझे ठहरा कर, लोग तो खुद ही अमानत थे किसी जाबिर की,
2: लोग तो खुद ही
1: अमानत थे किसी जाबिर की, हम भी शर्मिंदा हुए दस्त तही फैलाते,
2: शर्मिंदा
1: रुदन का लहू की धार उलझती रही गुजर बगुजर,
2: गुजर बगुजर
1: लहू की धार
2: उलझती रही,
1: उलझती रही गुजर बगुजर, हुआ हूँ लहू की धार उलझती है फिर गुजर बगुजर।
2: अच्छा
1: खड़ा हुआ हूँ तेरी सरजमी पे क्या भी कर, खड़ा हुआ हूँ तेरी सरजमी पे क्या भी कर। मुलाजा फरमाइए, मैं आ गया था खुद अपने ही पाँव के नीचे,
2: अच्छा
1: मैं आ गया था के नीचे चला गया उमरी बेजबानियाँ लेकर, चला गया वो मेरी बेजबानियाँ लेकर। अभी तो वापसी बाकी है शोला बाजू।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 10:30 हो चुके हैं। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामीन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आप अपनी फरमाइशें में लिखकर भेज सकते हैं उर्दू सर्विस ESG@gmail.com के जरिए। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम की पहली पेशकश। आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

सामने अभी आप सुन रहे थे ये नगमा मुकेश की आवाज में अनाड़ी फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने और बोल थे शैलेंद्र के। और सुनना चाहा था शंभुदयाल खटक, विमला देवी खटक और दीपक कुमार खटक ने जाखो उधर राजस्थान से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे शमसुल कमर राही करंदवारा से, और सुनना चाहा था मास्टर विट्ठल सुरोशी सुषमा सुरोशी और मायरा सुरोशी ने महाराष्ट्र से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और सुनना चाहा था राजकोट से प्रभुदास कोटेजा, अंसा कोटेजा और ईश आशीष।

को टिचानी और सुनने के ख्वाहिशमंद थे बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान और रवनीत निशु मुक्सर पंजाब से। सुनना चाहता अहमद भाई फुलवाले, सदफ इकबाल फुलवाले मुंबई करजत से, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे बेगूसराय से शमीम अहमद, इमरान अहमद, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे योगेंद्र नायक कासगंज उत्तर प्रदेश से। सविया खानम, फरीदा शबनम और रईस उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक ने। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाह है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता और माला मिश्रा ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं संबल से छोटे अंसारी, और मेवा की यूएसए से वर्षा चावड़ा सुनना चाहते हैं, और आनंद जोशी, अंतनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं खंडवा से, और बिहारी कॉलोनी दिल्ली से सुनना चाहते हैं तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और रचिता मस्कीन, और उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, मंजू निम्मी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया सुनना चाहते हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां सुनना चाहते हैं रेलवे रोड आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया और सरोज चौरसिया।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये नगमा फिल्म इंसाफ से, जिसकी तर्ज बनाई थी उषा खन्ना ने और बोल थे अख्तर रोमानी के। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुना चाहा है जाकिर मुल्लानी, सुमैया मुल्लानी और सुबह

अनमोलानी ने फुलचिंचोली पंधरपुर से, और सुनना चाहते हैं लाल बाबू दीवाना दिव्य भारती उमराज दिल्ली से, और मत अजीज मतीन सुनना चाहते हैं तेलंगाना से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली, पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा झारखंड से, भोपाल राजस्थान से डबरिन छिपा, कबिल छिपा, पूजा परिहार सुनना चाहते हैं, तमकुआर भगत, श्वेता भगत, किशोता छुपाकुट झारखंड सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं अलीगढ़ अव्वली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, बाबूभाई भारतीय देवी उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और संजीव डागेराव, रसिका डागेराव, कौस्तुम डागेराव अकोट से सुनने का ख्वाहिशमंद हैं, सुनील पाठक, कमर पाठक, गव्य मल्होत्रा जगराव से सुनना चाहते हैं, उदयपुर से अशरफ खान, अफरीदा जब्बार और गोपाल तंबोली सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

एक गली में है खलबल के उनको तो बुलाओ।

सुनिए अभी आप सुन रहे थे काला बाजार फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने और बोल थे शैलेंद्र के। आगे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाह है टैगोर गार्डन ने दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा ने, और सुनना चाहते हैं अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह, राकेश कुमार जमशेदपुर से, पश्चिम चौक गंजड़वारा से मास्टर अलीम रजा सिद्दीकी, मास्टर मुनव्वर अंसारी, फैजुल अलीम सिद्दीकी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, जफर मोअज्जम शेख, फलक तबस्सुम शेख, बेबी अलीजबा शेख, रघुवीर नगर नई दिल्ली से सुनना चाहते हैं, और रेलवे रोड गंजड़वारा से

हजार बैरल से इजाफे से इत्तेफाक किया है और फीफा आलमी कप में आज रात न्यूजर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले चार दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बाकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से शदीद बारिश की पेशगोई है जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले दो से तीन दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसा पेश आए जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। डीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रूकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में डांग, नौसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। एनडी अहमदाबाद में सांसद प्रदीप शर्मा ने हमारा नामा निगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माहीगीरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अगले 5 दिन समुन्द्र में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामेंट उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रूपये की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से यह जिला सनअती तरक्की, दफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तस्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिजाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारिजा डॉ एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वे इस दौरे के दौरान कतर, बहरैन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जिसमें बिलखसूस तवानाई, तजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और आवाम का आवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों लीडरों ने कलीदी शराकतदारी को मजीद बढ़ाने के गरज से नए मौके की जस्तजू की। डॉ जयशंकर ने भारतीय बरादरी के तहफ्फुज और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाजा और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तहसीन की। डॉ जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमरीका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे जहां वो अकवामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉ जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमनसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से।

0: नष्ट की जा रही हैं। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अदायगी के बाद पेश किए जाने वाले इश्तहारों में बच्चों के जिंसी एतबार से इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मटेरियल पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हुक्म दिया है कि वह इस तरह के मटेरियल तक रसाई की सहूलत बहम पहुंचाने वाले और इस मवाद को फरोग देने वाले तमाम इश्तहारात को रोक दे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने इस सिलसिले में मेटा से 7 दिन के अंदर तफसीली वजाहत तलब की है। हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि प्लेटफॉर्म ने भारत की सालसी के तहफुजाती रहनुमा खतूत पर अमल किया है या नहीं। उन्होंने फिल्में और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक वीडियोज की तशहीर डिजिटल कवानीन के तहत भारत में एक मुजरमाना खिलाफ वर्जी है। इससे कबल वजारत ने इन रिपोर्टों की बिना पर कि इंस्टाग्राम कुछ ऐसे काबिल एतराज वीडियो दिखाता है जिससे बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल की तशहीर होती है, अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए उसने अफसरान को हिदायत जारी की थी कि वे इस सिलसिले में मेटा से जवाब तलब करें। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों के तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तफाक किया है। यह फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया। आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन ममालिक ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाखिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में मदद करनी है। उन्होंने एक मोहतात और लचकदार तरीकेकार के तहत अपने आजम को दोहराया जिसमें मार्केट के हालात पर इन्हिसार करते हुए तेल की पैदावार में इजाफे, इसे रोक देने या इसे कम कर देने के मुतबादिल भी शामिल हैं। तेल की पैदावार वाले इस ग्रुप ने कहा है कि वह आलमी तेल मार्केट पर करीबी नजर रखता रहेगा। ग्रुप ने पैदावार के उन निशानों को भी पूरा करने की यकीन दहानी कराई जिन पर रजामंदी की गई। हुकूमत ने अब नए हुर्मुज के रास्ते एलएनजी लाने ले जाने के अमल की बहाली के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आए हंगामी बंदिशें खत्म कर दी हैं। यह बहाली मगरबी एशिया तनाजे में जंगबंदी के बाद हुई है। इस सिलसिले में हंगामी हालात, हंगामी अहकाम लाजमी अशिया के कानून के तहत इस साल मार्च में जारी किए गए थे जब अब नए हुर्मुज के रास्ते एलएनजी लाने ले जाने वाले जहाजों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई थी। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात न्यूजर्सी में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 पर खेला जाएगा। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको सिटी में कल सुबह 5:30 पर इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। आज सुबह फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में फ्रांस ने पैराग्वे पर 0-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के कप्तान ने वार की तरफ से मिलने वाली स्पॉट किक पेनल्टी पर मैच के 70वें मिनट में वाहिद गोल किया। एक और क्वार्टर फाइनल में मराकश ने ह्यूस्टन में कनाडा को 3-0 से शिकस्त देकर 8 टीमों में जगह बना ली। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने शिवपुरी में दफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है जिसकी लागत 2500 करोड़ रूपये है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यूमिया 188,000 बैरल से इजाफे से इत्तफाक किया है और फीफा आलमी कप में आज रात न्यूजर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिल इरशाद मोहम्मद शाहरुख के साथ। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में।

समझ में अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से ये नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे साहिर लुधियानवी के। और सुना चाहा था शब्बीर गांधी बाग अकोला से रमेश कटंगर, वैशाली कटंगर और धनंजय कटंगर ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे चंडीगढ़ सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा बुलदाना से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे प्रकाश बोरवानकर, सुषम बोरवानकर, सोहम बनर्जी, संभाजी नगर से। और सुना चाह था कल्पना ताई लोखंडे, लक्ष्मण राव लोखंडे ने यवतमाल महाराष्ट्र से। सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना।

और लव आरव खुराना एमएलबी रोड ग्वालियर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुना चाहते लाल बाबू दीवाना दिव्या भारती उमा राज ने जेल रोड नई दिल्ली से। नजा सलमानी बेबी आलिया धनोरी तेलीवाला से सुनने के ख्वाहिशमंद थे। और सुना चाहता नासिर शेख नाजिना से साजिश शाहिद ने श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे काजल शर्मा मीरा शर्मा बिहार से। हाजिर है इस प्रोग्राम की अगली पेशकश शमशाद बेगम की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है चवन पार्क गिरडी झारखंड से हीना साबरी और इम्तियाज इमाम ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं प्रभा जयपुरिया छत्तीसगढ़ से और गौरैया जालंधर से अशोक जाटव। सुनना चाहते हैं पूजा वर्मा दीप्ति वर्मा प्रभा वर्मा जेल रोड से और मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना साजिद अली और रुखसाना खातून। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रोहित चौहान मोहित और देवी चौहान छत्तीसगढ़ से और सहारनपुर से कैफी आजम तबस्सुम परवीन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। बॉबी खान और मोहम्मद नियाज खान काजगंज से सुनना चाहते हैं। राजकोट से राकेश पटेल प्रमिला पटेल सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। और सुनना चाहते हैं धीरज गुप्ता ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता रुद्र प्रताप गुप्ता।

हाँ, अभी आप सुन रहे थे दिल्लगी फिल्म से नगमा सुरैया और श्याम सुंदर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने और बोल थे शकील बदायूनी के। हाजिर है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म अल हिलाल से, जिसको सुनना चाह रहा है सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रितेश संधू ने कुलम रोड हरगोविंद नगर नवाज शहर से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राजकोट से मोहम्मद लखानी, जुबैदा लखानी और विहान लखानी, और सुनने की ख्वाहिशमंद है चने सरगोट से हमारे रमेश पार्वती, मास्टर किशन लाल खत्री, और सुनना चाहते हैं भुवनेश्वर से सिराज, रोमा हीना विहान और रूबी जूबी रोमा, अनाड़ी मंडी जामनगर से महेश वत्सपाल और चंदू भाई बारदान सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, हुसैनी चौक से रामनाथ पारा, अहमद हसन अजमेरी, लियाकत अजमेरी, मुइन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं दोन दिगेस्त्रो विलिस दिगेस्त्रो और विलिस दिगेस्त्रो सहारनपुर से, और गोलू कांगड़ा, आशिका बोत, तमन्ना कांगड़ा चौबीसी से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, कुमार रोहित कुमार देव।

दास, मुद्राज करवाल, कन्हैया रानी, गीतिका दिल्ली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आशा रामेकर और सुनना चाहते हैं दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर महाराष्ट्र से, भाटापारा से बचकमल मोतीलाल बसंत भृगु सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, प्रकाश राय, ओशर राय और अमित कुमार राय नारायणपुर से सुनना चाहते हैं, केतल से जयवीर सिंह ठाकुर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं कानड़ा बंदर कस्य जगदीश चोरी और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, मनील अंसारी, आसमंद अंसारी, डुमरा बिहार से और बक्सर से राज अंसारी और फातिमा राज अंसारी सुनने के ख्वाहिशमंद हैं और सुनना चाहते हैं डॉक्टर सोना, डॉक्टर अलीमा, चवन पार्क, नई दिल्ली से, जालंधर से सुनना चाहते हैं रोशन जा, पुलिया परवीन और कमर बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मंजू कटीला, नई दिल्ली से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
1: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में आज हम चर्चा करेंगे उस क्षेत्र की जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करने वाला है, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियां। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई के उद्घाटन के बाद ये विषय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार
1: सुबिमल जी, हमारे कई श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और आज के डिजिटल दुनिया में इनका इतना महत्व क्यों है?
2: देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिलिकॉन के माध्यम से बनाया जाता है और इसमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और कॉम्पिटिशनल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये आज के डेट में एक एसेंशियल ड्राइवर बन गए कि स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देख रहे हैं जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आगे आ रहा है, तो हर काम में आज में ये चिप्स की महत्व इतने बढ़ गए है, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ गए है। और इसके जो बेस होते हैं ये होते हैं कि ये सिलिकॉन की एकदम पतला सा स्लाइसेस होते हैं जिसको वेफर्स कहा जाता है और ये स्लाइस प्यूरिफाइड क्वार्ट्ज से बनता है और इसके बाद फैब्रिकेशन के माध्यम से ये जितने जो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके जो सर्किट्स होते हैं उसको रेगुलरली एच किया जाता है ये इसी वेफर के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिथोग्राफी। और हम सोच सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो फ्लैट है, लेकिन एक कॉमन चिप जो हमारे सामने होते हैं जो एक मिलीमीटर थिकनेस जिसके होते हैं इसमें करीब 30 माइक्रोस्कोपिक लेयर्स कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने दिखने में छोटा सा और आसान सा लगता है उसके अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं और इसी से हर तरीका की आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स, आपकी डिफेंस की इक्विपमेंट्स और हमारे घर के किचन के भी इक्विपमेंट्स को ये चिप्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं और इससे काम करते हैं वो।
1: जी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में एक नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उसकी परिकल्पना से निर्माण तक की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: 20 साल पहले शायद उससे भी पहले मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली, कुछ कंपनियों से बातचीत भी की और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना उस समय नहीं हो पाया लेकिन अब हो रहा है, तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कई देशों से साझेदारी भी हो रही है।
3: सीजी सेमीकाई प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।
1: सुंदरल जी, पीएम ने अभी जिस साझेदारी की बात की है, कुछ देशों के नाम लिए उन्होंने, उससे सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भारत को किस तरह का लाभ होगा उस साझेदारी से?
2: देखिए, प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शिता है, इसीलिए उन्होंने उसी समय 20 साल पहले ये सोचा था कि किस तरीके से ये चिप्स की मदद रहेगा और

0: आज जब देश में इनकी सरकार ने 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रखे हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में है, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कई सारे कंपनीज कई सारे देशों से इसमें जुड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि भारत जापान थाईलैंड ये सीजी सेमी की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक पहलू था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे किस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ाए। तो मैं समझता हूं कि ये जो साझेदारी है ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग देशों की, इससे जो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होते हैं, देखिए हम तो काफी देर से शुरू किए हैं, लेकिन इसके प्रोसेस में जितने सारे चीज है जैसे लिथोग्राफी, इसके साथ सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें से ये चिप्स की फैब्रिकेशन होते हैं, और इसके बाद जो पैकेजिंग होते हैं उसमें और किसी कंपनी के और किसी देश की कैपेबिलिटीज होते हैं। तो ये जो होल ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की जो प्रयास है उसमें हमें ऑपरेशन के माध्यम से चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने सारे देश इसमें लगे हुए हमारे साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। अब कुछ महीना पहले आपने देखा था कि नेदरलैंड्स की कंपनी ASML, जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये चिप्स बनाने के लिए, उन्होंने भी टाटा के साथ एग्रीमेंट की कि ये हमारे साथ इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी देंगे। तो मुझे लगता है कि यही माध्यम से ये कोऑपरेशन जो है, ये साझेदारी, ये कई सारे देशों का बीच में भारत के साथ चलेगा। और ये जो एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है कि आप किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सस्टेन करे, और उसको सिक्योरिटी की तरफ से भी अगर देखा जाए, उसके क्रिटिकलिटी की तरफ से भी देखा जाए, तो ये पार्टनरशिप में भारत एक देश बन रहा है पूरी दुनिया के सामने कि हम भी इस पूरे इकोसिस्टम में जुड़ गए।
1: प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन हमारे देश को कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चीफ पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
1: सुबोल जी, क्या लगता है जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, और अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इस परिवर्तन के लिए देश को किन नीतिगत और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता होगी?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े कम समय में भारत ये जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन होते हैं एडवांस फैब्रिकेशन की तरह, उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है। जैसे कि अब हम इस वक्त सीजी सेमी ओसेट की बात कर रहा है सनाट गुजरात में, जो प्रधानमंत्री जी ने कल इनोग्रेट किया, लेकिन इसके अलावा एक टाटा का प्लांट भी ओसेट की आसाम की जगीरोड में, इसमें भी काम हो रहा है, और इस साल के अंत तक इसका भी चिप प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये जो अक्रॉस द कंट्री जिस अप्रोच से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को दिशा दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी और फंडिंग की तरफ से भी काफी अच्छा स्केलिंग अप हुआ। अभी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बताया गया था कुछ महीना पहले, और जिसमें से हमारी जो 2026-27 की बजट में 8,000 करोड़ रुपए की बात आई थी ये सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। तो ये मुझे लगता है कि पॉलिसी की सपोर्ट, जितने सेमीकंडक्टर सेटअप्स आए उसमें और पॉलिसी सपोर्ट किस तरीके से सरकार की तरफ से दिया जाए, और फंडिंग अवेलेबल रहे चाहे सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, बहुत सारे संस्था इस और बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आज ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इकोसिस्टम जो शुरुआत में एक क्रिएशन की तरफ थे, आज वो कंसोलिडेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें से ये ISM 2.0 का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आपके महत्व दिया गया है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी, प्लस एक सोवरेन चिप IP की जो प्रयास हो रही है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा।

0: डिजाइन टैलेंट हमारे देश में है, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरह और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिंक्स, ये सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी जो चिप्स में काम कर रहे हैं ग्लोबली, उनके R&D सेंटर्स हमारे देश में, जैसे इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। और इस सब को देखते हुए नीति आयोग के जो 10 साल के एक रोड मैप रखा गया है कि 120 से 150 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हमारा 2035 होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि जो पॉलिसी सपोर्ट जिस दिशा में जा रहा है और प्रधानमंत्री का खुद का इस क्षेत्र के ऊपर नजर है, और इसके साथ साथ जो फंडिंग अवेलेबिलिटी हो रहा है, ये पूरे वैल्यू चेन में मुझे लग रहा है कि हम इसमें कामयाबी ले सकते हैं। तो ये सस्टेन तरीके से ये सपोर्ट दोनों क्षेत्रों में रहना चाहिए।
1: जी, आपने जैसे बताया कि ये चिप डिजाइन में भारतीय प्रतिभाएं काफी समय से जानी जाती है, विख्यात है, और अब इसके निर्माण में भी कदम बढ़ाने से हमारे ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें कोई स्थान मिल सकता है। अगर आगे हम देखें, तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है भारत में?
0: यह जरूर, सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा कहा गया है कि आप इस क्षेत्र में बहुत देर से आए, लेकिन अगर देर से भी आए लेकिन स्टडीली जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हाथ दिए है, जिस तरीके से इसको डिफ्यूजन की तरह सारे देश में लेके गए, और जो डिजाइन की तरफ में जो हमारा एक प्रयास रहा है, अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी एक गोल दिया गया है कि 100 से ज्यादा एडवांस डिजाइन IPs इस देश में अगले कुछ साल में करना है। तो मुझे लगता है ये जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये जो डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, जिस तरीके से हम क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च जापान और EU के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्षेत्र में बहुत मैं समझता हूँ कि चेंजेस आएंगे बड़े कम समय में, क्योंकि इसमें फोकस तरीके से देखा जा रहा है। तो अभी बात रह जाती है कि हमारी जो स्किलिंग है इस देश में और हम किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेन मैन पावर उसी स्किल सेट के हिसाब से हम प्रयास करें, और उसमें भी कई सारे संस्था आज कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो यंग फोर्स है जो अपने हो सकता है पढ़ाई दूसरे क्षेत्र में कराएं, इसमें जो स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इनको दे और वो भी एम्प्लॉयबल रहे ये सारे प्रयास में। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच और होल ऑफ द सेक्टर अप्रोच से जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हमारे एक अर्ली स्टेज एफोर्ट बहुत अच्छा रहे और उससे कंसोलिडेट करते करते आके हम इस क्षेत्र में अपना नेसेसिटी के अलावा भी ग्लोबली हम एक सिक्योर सप्लायर भी चिप्स के लिए बन सकते हैं।
1: जी, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश और नवाचार करते रहेंगे, सुबिमल जी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को सरल और सारगर्भित ढंग से आपने समझाया, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IT एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं जाफर हुसैन बदायूनी कव्वाल और साथियों की आवाज में कव्वालियां।

मैंने अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सईद जाफर खान और उस्ताद अख्तर हसन का सितार और तबले पर बजाया हुआ राग भीम। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब। सामने की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। हाजिर इस प्रोग्राम की पहली पेशकश श्रीमती फिल्म से गीता दत्त की आवाज में।

हमको छोड़ के कहाँ जाओगे, या तुम बड़ा दुख पाओगे। अब जान भी लो, पहचान भी लो, नजरें ये क्या थी। हमको छोड़ के कहाँ जाओगे, या तुम बड़ा दुख पाओगे। अब जान भी लो, पहचान भी लो, नजरें ये क्या थी। हमको

हमको छोड़ के कहाँ जा।

हमको छोड़ के कहाँ जाओगे, या तुम बड़ा दुख पाओगे। अब जान भी लो, पहचान भी लो, नजर दे प्यार की, हमको छोड़ के कहाँ।

मैंने अभी आप सुन रहे थे सोनी महिवाल फिल्म जैन अकबर मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश दिले नादान फिल्म से तरत महमूद की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे आखिर शब प्रोग्राम के तहत तफरीमी नगमे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। पूरे भारत में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में योमिया 188,000 बैरल इजाफे से इत्तफाक किया है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में कशीदगी के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुबैना तौर पर मुजाहिरीन पर गोली चलाए जाने के वाकये में एक शख्स हलाक और दीगर मुतअद्दिद जख्मी हो गए। और फीफा आलमी कप में आज न्यूजर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नार्वे से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ

0: को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 2 अलग अलग अभियानों में कोडीन आधारित 1 कप सिरप की 1 लाख से अधिक शीशियां जब्त की हैं। DRI ने अगरतला में रेलवे सुरक्षा बल और असम राइफल्स की सहायता से अभियान चलाकर 55,000 से अधिक शीशियों की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अन्य अभियान में अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के डंकुनी स्थित एक गोदाम की तलाशी में कोडीन आधारित कफ सीरप की 56,000 से अधिक शीशियां बरामद की। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अमरीका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह पोत यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 और सेल फोर्थ 250 समारोहों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। हडसन नदी पर आयोजित परेड ऑफ सेल के दौरान 3 मस्तूलों वाले इस प्रतिष्ठित पोत ने गर्व से भारतीय तिरंगा फहराया। INS सुदर्शनी की यह यात्रा 10 महीने के ट्रांसोनिक अभियान लोकायन 2026 का हिस्सा है। यह समुद्री सहयोग को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का निर्माण करने और सहयोगी नौसेनाओं के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli today. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much-needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation.

0: Milestone of a defense manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhia said a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
1: Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly, and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia.
0: Mr. Sindhia said the project will connect the district to industrial development, defense production, and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from today till 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia. Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashwani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakravarti, said celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister S. Jaishankar began his official visit to West Asia yesterday, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassami Al Thani. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, Dr. Jaishankar said they explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Dr. Jaishankar thanked Mohammed bin Abdul Rahman for ensuring the safety and well-being of the Indian community and appreciated his sharing of assessments on the West Asia conflict and its impact. And Home Minister Amit Shah and Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy yesterday reviewed the situation of illegal coal mining and coal theft in a high-level meeting in New Delhi. During the meeting, the Home Minister expressed concern over the worsening situation of illegal coal mining and theft in Dhanbad and nearby areas. The Home Minister issued several important directions, including adoption of the Zero Coal Leakage Plan. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। यह समय होता है बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, जी हां, गीत सुनहरे। गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत, ओल्ड हिंदी फिल्म्स सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। दोस्तों, आज गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। शुरुआत कर रही है एक बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत गीत के साथ। और ये गीत क्योंकि बहारों का मौसम आ गया है, अन्य राज्यों में, कई राज्यों में बारिश भी हो रही है और रिमझिम फुहारें भी हो रही हैं और वाकई बहुत ही खुशनुमा जो साथी, जो जितने भी साथी हैं देश के, कहीं ना कहीं बारिश भी हो रही है और धूप से बड़े पीड़ित हो रहे थे और काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बारिश होना शुरू हुआ तो अब पूरा, लगभग पूरा देश थोड़े से ठंडक का एहसास महसूस कर रहा है। ऐसे में बाहर के गीत अगर मिल जाए तो वाकई बहुत ही सुंदर लगने लगता है, मन को सुकून भी मिलता है। ऐसे गीत जब हम प्ले करेंगे तो वाकई लगेंगे वाह क्या बात है, है ना। तो सुनते हैं आज के कार्यक्रम की, यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम की पहली और बहुत ही खूबसूरत रचना, कुछ खुशनुमा, कुछ ठंडक का एहसास दिलाता बहारों का मौसम, जी हाँ, बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत। और ये गीत आना है दोस्तों, ये गीत है बहार के दिन फिल्म हमराही से। हमारी फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है और सिंगर बिनोटा बोस आरसीडी से।

जी हाँ दोस्तों, दिन है बहार के आए, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। उठते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत है वो चले झटक के। जी दोस्तों, वो चले झटक के ये बहुत ही प्यारा गीत है, और ये गीत सही मायने में वो चले झटक के फिल्म हमरा ही से ही है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में बहुत ही सुंदर रचना। ये फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है, फिल्म हमराही, और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को शंकर जय किशन ने। तो सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

सुबह सुबह के बहुत ही प्यारा सुंदर खूबसूरत गीत भी आप सुन रहे थे। इमाम मदरवी साहब की आवाज में वो चले झटक के दामन, वाकई बहुत ही प्यारा गीत भी सुन रहे थे आप। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। बहुत ही सीरियस और बहुत ही गमगीन गाना है। जी हाँ, जिंदा हूँ इस तरह की जिंदगी नहीं। जी हाँ, फिल्म आग से ये बेहतरीन रचना। आग फिल्म 1948 प्रदर्शित फिल्म रही। मुकेश साहब की आवाज में बहुत ही शानदार गीत अभी आप सुनने को मिलेंगे आपको, और इस गीत को सजाया है संगीत से राम गांगुली ने। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गमगीन, बहुत ही मार्मिक और खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, फिर चाहे तो ना आना। यह फिल्म बेकसूर से जो 1950 प्रदर्शन फिल्म रही, राजकुमारी की आवाज में सुंदर रचना, गीत आरजू लखनवी के और संगीत से सजाया है अनिल विश्वास और हंसराज महल ने। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

खूबसूरत गीत की ओर ये गीत आ रहा है, याद करूं तोरी। जी हाँ, याद करूं तोरी, और ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा है और मिस्टर लंबू फिल्म से ये गीत है। और मिस्टर लंबू फिल्म 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है और आवाज सुरैया की है और सिंगी से सजाया है ऊपे नैयर ने। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर अनोखा खूबसूरत गीत है।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। ये रात भीगी भीगी बहुत ही सुंदर बेमिसाल खूबसूरत रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत मेरे ख्याल से सभी को ही पसंद आने वाला है। आज सजन मोहे अंग लगा लो, फिल्म प्यासा से गीता दत्त की आवाज में बेहतरीन रचना। फिल्म प्यासा 1957 प्रदर्शन फिल्म रही। गीत साहिर के हैं और संगीत SD बर्मन का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी साथियों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। रात कितनी हसी, दोस्तों रात कितनी हसी, कितनी खूबसूरत। बादल और बिजली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मुबारक बेगम और तलत महमूद की आवाज में बादल और बिजली फिल्म 1956 प्रदर्शित फिल्म रही। संगीत से सजाया था इस खूबसूरत गीत को विपिन बाबुल ने। और बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम और बहुत ही खूबसूरत रचना के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी रचना है। इससे पहले आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, बहुत ही प्यारा और बेहद खूबसूरत गीत आ रहा है और ये गीत वाकई ऑल टाइम फेवरेट गीत है। जब सुने तब बहुत ही खूबसूरत लगता है। पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में, फिल्म चोरी चोरी से। फिल्म चोरी चोरी 1956 प्रदर्शित फिल्म रही। लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत रचना। गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को शंकर जय किशन ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम खूबसूरत रचना।

0: बेहतरीन गीत के साथ आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम समाप्त होता है। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: विद प्राइम मिनिस्टर्स अराइवल इन इंडोनेशिया,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: अराउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू

बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कानूनी बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। कल रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज नुवान पहलगाम बेस कैंप का दौरा किया। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक तीन मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। कोफोएबे लिचफील्ड ने 48 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, इसी गीत के साथ गीत बाहर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। 3 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्राइम मिनिस्टर अराइवल इन इंडोनेशिया,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। असम मंत्रिमंडल ने विधानसभा के आज से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले आज आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले कई विधेयकों को मंजूरी दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री

0: मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। मंत्रालय ने सभी लोगों से सोशल मीडिया पर इस तरह की फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला मकान गिरने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि 1 व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है और उसे खोजने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ सहित कई एजेंसियां संयुक्त अभियान चला रही हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, गोवा, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और राहत तथा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के निर्धारित 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some more parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some more parts of Rajasthan during next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state yesterday, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall today has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather yesterday, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav yesterday laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said, a new chapter is being written in Shivpuri's history yesterday.
2: Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly, and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia.
1: Mr. Scindia said the project will connect the district to industrial development, defense production, and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from today till 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's 4th visit to Indonesia. Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister's visit, Indonesia will launch 15-month-long

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गजल गुलशन की फकत।

इसके साथ ही गजलों का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं गायन कलाकार हैं सुधा रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कम्बोजी जो आदिताल में निबद्ध है। संगीत दिया है मुथुस्वामी दीक्षितर ने और आपके साथ वायन प्रसंगत किया है KVS मैंने और मृदंगम पर साथ दिया है एरांथो जैन पीदास ने। तो आइए सुनिए सुधा रघुरमन का गाया रागम कम्बोजी।

Paga pataça, não vou pagar pataça.

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम आद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे गायन कलाकार सुधा रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया रागम कंबोजी जो आदिताल में निबद्ध था। आपके साथ वायलिन पर संगत किया KVS विनय मृदंग ने और मृदंगम प्रसाद दिया एंथोर जयान प्रियदास ने। संगीत दिया था मुथुस्वामी दीक्षितर ने। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीएम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। कुछ देर में यानी 5:10 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम आयोग करें। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति संगीत का। 5:30 सुनिएगा हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक का ध्रुपद गायन। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। इसके अंतर्गत आज होंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के विचार। 6:45 पर सुनिएगा रामचरित मानस से पाठ। आज प्रस्तुत होगा बालकांड का भाग 108। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। आज आप सुनेंगे संजय झा के गाये भजन। 7:30 सुनिएगा गीतो वेरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम। 6:00 संगीत कार्यक्रम स्वर गंगा का समय रहेगा 8:45। इसके अंतर्गत आज प्रसारित किए जाएंगे गायन। कलाकार होंगे राकेश पाठक। सुनेंगे राग शुद्ध सारंग। 9:15 का समय रहेगा कार्यक्रम आवर गैस का। आज का विषय रहेगा एन इंटरेक्शन विद एनवायरमेंटलिस्ट ज्योति। 9:30 सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। प्रस्तुत करेंगी जसपाल कौर। 10:10 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा। 10:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम

हमारी बेड़ियां, तो उसके बाद सुनिएगा सबरस। 11:30 बजे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी होगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे कृष्णजीत रॉय का सितार वादन और प्रस्तुत करेंगे राग गौर सारंग। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन सुनिएगा 12:10 पर, आज ये प्रस्तुत करेंगे मंजुला प्रसाद। 11:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनिएगा, इसमें आज की फिल्म होगी आशिकी। साथियों, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, समय के 5 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

सबका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा दी साहिब तहां तहां रचिया रियायत बेगत फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बल बोलो जी।

सबको सुत क्यों कर रखी है सुत पवेर सोए नानक सुत क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे तो।

बदे जमपुर जाए महला पहला सबो सुत परम है दूजे लगे दास जमन मरना हुकुम।

कलश चाप होए से बैठाया है सुचे अगे रखियो को न पिटियो जाए सोचा के जवे लगा पन सलो